पता है, मैं हमारे स्टूडियो की खिड़की से बाहर देखता हूँ तो इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, इतने हरे भरे, मतलब आकाशवाणी में इतने पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छे मतलब लगता है। विंडो से देखो तो और भी अच्छा व्यू आता है। और ये बात मैंने इसलिए बोली कि अगर हमने प्रकृति और पानी को नहीं बचाया ना, तो सिर्फ अच्छे मौसम और पानी के वीडियोज जो हैं वो हमें यूट्यूब पर ही देख कर काम चलाना पड़ेगा। और देखिए, आज 29 मई है, 1 तारीख को सोमवार है, यानी जून का महीना शुरू हो जाएगा। और जून जुलाई की झुलसाने वाली गर्मी में जो है, हम सावधानी से पानी का इस्तेमाल करें, बिजली बचाएं और अपने घर के आसपास और अपने घरों में भी खूब सारे पेड़ पौधे और जो है हरियाली लगाएं। अब पता है, जब हमारे घर में खूब सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं तो एक तो वो ठंडा रहता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में भी है, एक नीम का, एक आम का है और एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, देख कर ही बहुत सुकून मिलता है। भोर सुहानी शो में मैं पंकज आपके साथ हूँ और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो ठंडे ठंडे गाने सुनाऊं जिससे कि आपको थोड़ी सी ठंडक फील हो। सुबह के 5:33 अभी दिल्ली का मौसम जो है थोड़ा सा हल्का सा ठंडा है, तो मतलब अभी आप बाहर घूम सकते हैं, अपना बढ़िया ताजी हवा ले सकते हैं, साथ ही साथ आप इन गानों का मजा लीजिए। लेकिन फिल्म से लता जी की आवाज में ये रहा।

पता है हमारे स्टूडियो की अभी मैं विंडो से देख रहा हूँ तो एकदम है ना सनराइज हो रहा है, धीरे धीरे सूरज उग रहा है, तो बिल्कुल एकदम क्लियर सूरज दिख रहा है। इतना प्यारा व्यू लग रहा है स्टूडियो से, मैं क्या बताऊँ। इसलिए मतलब मैं स्टूडियो से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन क्योंकि स्टूडियो से बाहर जाना मतलब मेरे लिए मानो गानों के समंदर से बाहर निकल के वापस जाना हो, और मैं नहीं चाहता लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। खैर, आकाशवाणी की FM गोल्ड चैनल को मैं गाड़ी में सुनूंगा, फिर घर जाते ही रेडियो ऑन करके अपना फेवरेट चैनल सुनूंगा। अब क्योंकि भोर सुहानी शो का टाइम पूरा होने वाला है और अगले घंटे आप सुनेंगे नेक्स्ट शो अर्पण बबीता शर्मा के साथ, तो इन गानों के बाद आप सुबह 6 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और सुबह 6:10 पर अर्पण शुरू होगा। तो मैं पंकज आपसे दोबारा जल्दी मिलूंगा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्ते।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है और आइए अब आपको बता दें आज आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण बबीता शर्मा के साथ। सुबह 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान बालकांड भाग 75। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात जिसमें बबीता शर्मा आपके साथ रहेंगी। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन उर्दू में। सुबह 8:45 पर म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम रहेगा जिसमें बबीता शर्मा आपके साथ रहेंगी। फिर सुबह 9:10 पर म्यूजिकल दिल लगी ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे और साथ ही साथ इसमें आप स्वच्छता और अपने शहर की सभी गतिविधियों की जानकारी भी जान पाएंगे। साथ में विषय भी रहेगा गर्मियों के मौसम में कैसा हो आहार। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी रेखा रानी। सुबह 10:30 का समय रहेगा कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स। ये रिक्वेस्ट बेस्ड शो है, इसमें आप अपने गाने सुन सकते हैं पसंदीदा। साथ में इसमें आपके साथ रहेंगी रेखा रानी। सुबह 11:10 का समय रहेगा कार्यक्रम तस्वीर का जिसमें आज विषय रहेगा वारंगल तेलंगाना के बारे में। दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर, इसमें प्रियांशी भटनागर आपके साथ रहेंगी। इस कार्यक्रम में बहुत सारे विषय रहेंगे, साथ ही साथ कुछ विषय आपको बता दें कि उम्र को रखें दराज में, उम्र दराज ना बने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप और अन्य जानकारी आपको इसमें मिल जाएंगी। दोपहर 1:10 पर प्रियांशी भटनागर आपके साथ रहेंगी, कलाकार बेमिसाल। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे कलाकार पृथ्वीराज कपूर के बारे में। दोपहर 2:30 का समय रहेगा कार्यक्रम उन्नत किसान का, प्रियांशी भटनागर इसमें आपके साथ रहेंगी। दोपहर 3:10 पर हेमा खन्ना आपके साथ रहेंगी कार्यक्रम मन भावन में। शाम 4:10 का समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म सॉन्ग्स का, इसमें हेमा खन्ना आपके साथ रहेंगी। शाम 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। 4:30 का समय रहेगा कार्यक्रम परिक्रमा का। 5:10 पर हेमा खन्ना आपके साथ होंगी कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं। शाम 6:10 पर आप सुन पाएंगे संजीव अग्निहोत्री के साथ का कार्यक्रम सदाबहार गीत जिसमें आप अपने पसंदीदा गीतों का आनंद ले सकते हैं। शाम 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम सुर्खियों में का जिसमें संजीव अग्निहोत्री आपके साथ रहेंगे और फिर 7:25 पर सांझ ढले में आप भूले बिसरे गीतों का आनंद ले सकेंगे। रात्रि 8:10 पर संजीव अग्निहोत्री आपके साथ रहेंगे मधुरिमा में। 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का। तो ये थे आज आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह के 6 बजने वाले हैं, आपसे कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandavia, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. He said, keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports

शुक्रवार की इस सुहानी सुबह में आइए अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं अर्पण के जरिए। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज साथ हूँ मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

हमें याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा हमारा प्रेरणा का स्रोत हमारा विश्वास है, क्योंकि जिस चीज में हमें विश्वास होता है

ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहें, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 6:30 आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नदी जब निकलती है कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहाँ है, बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है। इसलिए कर्म करते रहिए, नक्शा तो परमात्मा पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमें तो सिर्फ बहना है।

बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।

अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान, और आइए अब सुनते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: शैलीं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणां उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलम्पिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्वरक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां, विशेषतः महिलानां, निर्धनानां, बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य एकत्रिंशत् दिनांकपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशद् वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां षट्त्रिंशदधिकैकशताधिक विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतिताप घटनायां अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्ति चक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्ध सप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लों वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a 3-day visit to Karnataka, Goa and Keralam beginning today. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Davanagere, Karnataka. The CBI has arrested Giribala Singh in the Twisha Sharma death case. Giribala is Twisha's mother-in-law and a retired district and sessions judge. The arrest was made in Bhopal yesterday. Earlier, a CBI team questioned and searched Giribala's home for nearly 7 hours, following which she was arrested. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandavia, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting.

कभी चिलचिलाती धूप, कभी कड़कड़ाती ठंड और कभी बारिश की रिमझिम फुहारे, इन सभी चीजों को महसूस करते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति निरंतर करवटें बदलती रहती है और यही वो क्रम है जो हमारे जीवन में बदलाव तो लाता ही है, साथ ही साथ एक निरंतरता भी बनाए रखता है। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात और आज

कल शाम मौसम ने पलटी मारी और गर्मी झेल रहे हम सभी ने राहत की सांस ली और इससे तापमान में भी गिरावट महसूस की गई। अनुमान है कि ऐसी स्थिति कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। फिलहाल आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सूर्य उदय हो चुका है 5:24 पर और उसके अस्त होने का वक्त होगा शाम 7:12 पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स

0: पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वक्त हुआ है 7:26:55। आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर। और ये अगला गीत जो आप सुनेंगे वो है 1965 में रिलीज हुई फिल्म गाइड से, और जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। इजाजत दीजिए बबीता को और आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभात का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार। आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा, इतिहास के पन्ने, खेलों की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और आज का दिन क्यों खास है, इन सब के साथ स्टूडियो में मैं मौजूद हूं नवीन सक्सेना। और आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं रेणु कटारिया को। नमस्कार रेणु।
1: नमस्कार नवीन, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। और नवीन, बहुत कुछ है हमारे पास आज अपने लिसनर्स को देने के लिए, तो आप बताइए कि शुरुआत पहले न्यूज हेडलाइन से की जाए।
0: रेनु, कोशिश करेंगे कि हम तमाम पॉजिटिव खबरें आपको सुनाएं, क्योंकि मौसम बदल चुका है
1: जी।
0: कल शाम की जो फुहारें थी, उनकी ठंडी ठंडी जो हवाएं चली उसके बाद, वो आज सुबह तक मन को बहला रही है, मन को लुभा रही है। तो एक कप चाय ले लीजिए, अपने रेडियो का वॉल्यूम तेज कर दीजिए, क्योंकि हम बोलते बोलते आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, है ना। हमें सुनते रहिए और सुनिएगा अगले आधे घंटे तक, क्योंकि आज के इस आधे घंटे के प्रोग्राम के बाद आप दिन भर के लिए तैयार हो जाएंगे। चाहे आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कोलकाता में हो, चेन्नई में हो, बेंगलुरु में हो, या फिर हैदराबाद में हो।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि इन सब की खबरें

0: also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
1: बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करें.
2: Mr. Shah said committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary, he said. Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. The Home Minister said the centre is determined to identify and expel every ghuspaithia or infiltrator from the country. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
3: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
2: Mr. Doval also highlighted the urgent need for reforms in the structures and institutions set up after the end of the Second World War in 1945 to make them effective in dealing with contemporary international security threats.
4: रेणु पश्चिम एशिया में संघर्ष समय जारी है. भू राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई है. ग्लोबल अनसर्टेनिटी है. इसीलिए एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन की सीमा जो है वो बढ़ा दी है. इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर अपनी उड़ानों का परिचालन रद्द कर दिया था. एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.
2: Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. He said in line with this, review meetings were held in Ahmedabad regarding the progress of sports infrastructure and related projects. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics.
4: वहीं खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे. वो इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे. श्री मांडविया इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल अवसंरचना विकास तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा से संबंधित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. वो युवा कार्यक्रम विभाग के एक विचार विमर्श सत्र में भी शामिल होंगे.
2: And Naveen, the next news that I have is a little alarming. The World Meteorological Organization, WMO, has said that global temperatures are likely to hit near record highs over the next 5 years. According to a new WMO report, annual global mean near surface temperatures during 2026-2030 are predicted to range between 1.3 and 1.9 degrees Celsius above the 1850 to 1900 average. According to the report, there is an 86% chance that at least 1 year between 2026 and 2030 will surpass 2024 as the warmest year on record. There is an El Nino predicted for the end of 2026, which increases the chances of 2027 becoming the next record-breaking year, said Dr. Leon Hermansen, lead author of the report.
4: ये एक चेतावनी भरी खबर है कि देखिए जिस तरह से globally weather prediction हो रहा है और जिस तरह से मौसम बदल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा जब तापमान इतना तेजी से बढ़ना.
2: एंड आई एम श्योर नवीन, जिस तरह हमारे फादर्स ग्रैंडफादर्स इस बारे में अपने बच्चों के लिए इसकी चिंता करते थे, हम भी अपने आने वाली जनरेशन के लिए यही चिंता करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं.
4: तो यही आज से प्रण कीजिए कि एक पेड़ जरूर लगाएं, और अगर एक पेड़ नहीं लगा सकते तो एक पेड़ को जरूर बचाएं,
2: जी
4: कटने से जरूर बचाएं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस धरती को बचाने के लिए, इस पूरी दुनिया को बचाने

0: के लिए, पर्यावरण बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को कम रखने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है।
1: और ये एक हमारा एक छोटा सा कदम है उसके
0: बहुत छोटा सा कदम है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 यानी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। एनटीए ने बताया है कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बात क्रिकेट की, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आईपीएल को फॉलो कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा और इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। और अब जानते हैं कि आपके खास शहर की खास खबरें क्या हैं। रेणु
1: जी, बिगनिंग विद चेन्नई मेट्रो। नवीन, रिसर्चर्स हैव फाउंड रेड बैक स्पाइडर्स आल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन ब्लैक विडोज इन इनोर क्रीक ऑन द नॉर्दर्न एज ऑफ चेन्नई। दिस इज द फर्स्ट टाइम द वेनमस स्पीशीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सिटी एंड इन अ कोस्टल लोलैंड एरिया ऑफ तमिलनाडु। Earlier, the species had been found in Coimbatore, Madurai and parts of the Eastern Ghats. Researchers believe the warm and dry conditions of the old fly ash pond in Ennore may support the spider spread, while nearby salt marsh vegetation suggests it can adapt to coastal environments. Moving on to you, Naveen, what do we have from Delhi Metro?
0: दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। वहीं दिल्ली के महापौर प्रवेश वाक ने कल स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने अमर कॉलोनी वार्ड की नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। अगली खबर दिल्ली की। दिल्ली को जाम मुक्त और आधुनिक परिवहन नेटवर्क्स युक्त बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई बड़ी सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में एक्सप्रेसवे, सुरंग और एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं।
1: मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन विल अटेंड द 45th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन एट द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इन बेंगलुरु टुडे। अर्लियर दिस मंथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो अटेंडेड द सेलिब्रेशंस एंड द 70th बर्थडे ऑफ फाउंडर श्री श्री रविशंकर। ड्यूरिंग द इवेंट द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्यूरेटेड द न्यू मेडिटेशन हॉल ध्यान मंदिर एंड लॉन्च्ड ईयर लॉन्ग कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आफ्टर द बेंगलुरु इवेंट द वाइस प्रेसिडेंट विल अटेंड द प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन दावणगेरे बिफोर लीविंग फॉर गोवा ऑन हिज नेक्स्ट ऑफिशियल विजिट।
0: रुक करते हैं मुंबई के समाचारों का। मछली भंडार के संरक्षण और मछुआरों के जीवन और आजीविका की रक्षा के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने मॉनसून के दौरान मौसमी मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मत्स्य विभाग ने 1 जून से 31 जुलाई तक तटरेखा से 12 समुद्री मील के भीतर मशीनीकृत और मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों के संचालन पर रोक लगा दी है। उधर मुंबई महानगर क्षेत्र में मेट्रो 5 परियोजना के विस्तारित चरण को मंजूरी मिल गई है। मेट्रो 5A के अंतर्गत कॉरिडोर का विस्तार ठाणे, भिवंडी और उल्लासनगर को जोड़ने के लिए किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
1: एंड द लास्ट न्यूज दैट आई हैव इज फ्रॉम हैदराबाद मेट्रो। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी हैज डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू डेवलप अ वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट। द कार्ड विल इंक्लूड डिटेल्स ऑफ ऑल वेलफेयर बेनिफिट्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो ऑर्डर्ड अ स्पेशल ड्राइव टू कलेक्ट डिटेल्ड इंडिविजुअल एंड फैमिली डेटा विच विल फॉर्म द बेसिस ऑफ एन AI बेस्ड प्रोफाइलिंग सिस्टम। ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड the IT department to issue the unified card centrally instead of different

0: departments issuing separate cards. The unified card will include information from various schemes such as Arogya Shri, the Chief Minister's Relief Fund, fee reimbursement programs, labour welfare and education services. The aim is to simplify access to welfare benefits and improve delivery for poor and vulnerable sections of the society.
1: और अब रुख करते हैं कोलकाता का। पश्चिम बंगाल सरकार जनगणना की तैयारियां शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना सभागार में प्रधान जनगणना अधिकारियों के एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें तैयारियों की समीक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करना और जनगणना के लिए सरकार के दृष्टिकोण को साझा करना शामिल है। इस कार्यक्रम के दौरान जनगणना 2027 के शुभंकरों, प्रगति और विकास का भी अनावरण किया जाएगा। तो ये थी आपके शहर की कुछ खास खबरें। खबरों के बाद अब पलटते हैं आज सवेरे का एक और पन्ना, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि घर से निकलने से पहले आप जानना चाहेंगे कि आपके शहर का मौसम कैसा है। और इनु पूरे देश में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि कहीं बादल गरज रहे हैं तो कहीं समंदर की हवाएं झूम रही हैं।
0: जी।
1: तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं देश के तीन सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। आज यानी शुक्रवार 29 मई 2026 तो मौसम का मिजाज कुछ यूं है दिल्ली वालों के लिए। बहुत खुशखबरी है दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि तेज गर्मी से राहत कल मिल चुकी है, है ना। और रेणु की मुस्कुराहट बता रही है कि उन्होंने कल की बारिश का बहुत मजा लिया है।
0: बहुत ज्यादा पकौड़ों और चाय के साथ।
1: यस। और ये दश्ते आज भी दस्तूर जारी रहेगा। मौसम विभाग कहता है आज दोपहर के बाद धूल भरी आंधी चलेगी और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। तापमान 34 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 24 डिग्री। ये बहुत सुहाना मौसम है। 41, 42, 43 से सीधा 34 डिग्री।
0: देखो नवीन, समटाइम्स आई थिंक जिस तरह यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश में है, इसी तरह हमारे मौसम में भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है।
1: और मुझे स्टूडियो के बाहर से एडिटर साहब इशारा कर रहे हैं कि शाम को छाता साथ रखना बॉस, वरना दिल्ली का ट्रैफिक और बारिश दोनों मिलकर भिगो देंगे। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली वालों, अगर आप बाहर निकलेंगे। मुंबई का मौसम अब धीरे धीरे मॉनसून को आहट दे रहा है। समंदर की लहरें तेज हो चुकी हैं। आज दिन भर आकाश में घने बादल छाए रहेंगे और शाम होते होते ठंडी समुद्री हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद है।
0: एंड यू नो व्हाट नवीन, जब मॉनसून बॉम्बे या महाराष्ट्र की तरफ पहुंच जाता है तो चाहे कितनी भी गर्मी हो दिल्ली में, एक दिल में एक खुश होना हमारे लिए बहुत जायज हो जाता है कि चलो अब महाराष्ट्र पहुंच गया है तो दिल्ली आने में अब दूर नहीं है मॉनसून को।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र और विशेषकर अगर मुंबई की बात करें, मौसम हमेशा ही अच्छा रहता है। थोड़ी सी उमस हुई तो बूंदाबांदी हो जाती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री। और मेरी और रेनू को यही सलाह है, अगर आप इस समय मुंबई में हैं तो शाम को मरीन ड्राइव
0: जी,
1: है ना, एक काली सी कप चाय विदाउट शुगर, अगर आप सेहत का ख्याल रखते हैं।
0: और गाना सुनिए,
1: हाँ, रिमझिम गिरे
0: सावन।
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, बादलों ने अपना डेरा डाल दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ आज भारी बारिश की संभावना है। अधिकतम 33 डिग्री न्यूनतम 26 डिग्री तापमान। और यहाँ की क्या खास विशेषता है रेणु? सीधी सीधी झालमुड़ी और बारिश का परफेक्ट कॉम्बो, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।
0: यस। And moving on to the other metros, Naveen, Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and the maximum will be around 40 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum will be around 33 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius.
1: यानी कुल मिला के हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मौसम लगभग लगभग सुहावना बना हुआ है। चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि आज का दिन क्यों खास है हमारे लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल और सिनेमा का हिसाब से।
0: And let's start begin with the International Day of UN Peacekeepers, which is being observed every year on this day, that is May 29, to honor the professionalism, dedication and courage of military, police and civilian personnel serving in the United Nations peacekeeping missions around the world. And the theme for this year is Invest in Peace. And Naveen, the United Nations General Assembly established this day in 2002, choosing this day because on this date, that is

0: May 29th in 1948, the first UN peacekeeping mission, United Nations Truce Supervision Organization, was created by the UN Security Council in the Middle East. And India here has played a significant and long-standing role in the UN peacekeeping. It is one of the largest and most consistent troop-contributing countries, having deployed over 290,000 personnel across more than 50 UN missions since the 1950s, reflecting the country's commitment to global peace and security.
1: और रिनु आज का दिन इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के नाम से भी जाना जाता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था. माउंट एवरेस्ट पर पहली फतेह आज के दिन 1953 में हुई थी. भारतीय नेपाली मूल के जाबाज पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ मिलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कदम रखा था. और इस गौरवमय घटना को याद में आज का दिन माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है.
0: और अगर हम इसको थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं नवीन, तो देयर वर न्यूमरस अटेम्प्ट्स टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, मोस्टली फ्रॉम द चाइनीज साइड, बट एडमंड एंड टेंजिंग अटेम्प्टिंग फ्रॉम द नेपाली साइड सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द सदर्न नेपाली साइड.
1: और एक और घटना जो जुड़ी हुई है आज के दिन से, और वो है दारा सिंह से. इसलिए नहीं कि दारा सिंह बहुत बड़े चैंपियन थे, बल्कि इसलिए कि आज ही के दिन दारा सिंह विश्व चैंपियन बने थे. उन्होंने दुनिया भर में भारत की ताकत का लोहा मनवाया. आज ही के दिन 1968 में दारा सिंह ने मुंबई में कुश्ती में अमेरिका के मशहूर पहलवान लाओ थेस को हराकर विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था. तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से. और अब उन व्यक्तियों को याद करेंगे जो जुड़े हैं आज के दिन से. तो सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस कर लीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो हम कराते हैं, क्योंकि आज जन्मदिन है उस व्यक्ति का जिसको हंसने के सिवा कुछ आता ही नहीं था. नाम हुल्लड़ मुरादाबादी. आज के दिन उनका जन्म हुआ था. प्रसिद्ध व्यंग के कवि थे, एक व्यंग्यकार में उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की, शायद कम पड़ जाए उनके बारे में बताने. कुछ रचनाएं हैं, इतनी ऊंची मत छोड़ो, क्या करोगे चांदनी, ये अंदर की बात है. लेकिन हम अपनी बात को थोड़ा सा विराम देते हैं और सीधे हुल्लड़ मुरादाबादी से आपको जोड़ते हैं.
0: जी.
2: एक हमारे मित्र हैं, बड़े ही विचित्र हैं, नाम है बनवारी. 45 साल के हो गए पर अब तक है अखंड बाल ब्रह्मचारी. एक दिन हमने उनसे कहा, गुरु सिंगल से डबल हो जाओ, इधर उधर घास चरते फिरते हो, एक फूटे से बन जाओ. मित्र बोला, शादी की बात मत करना, शादी से मुझे नफरत है. 20 साल पहले एक लड़की देखने गया था, लड़की ने देखते ही मुझे नापसंद कर दिया. उस दिन से ऐसा सदमा पहुंचा कि मैंने शादी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया. मैंने कहा, बनवारी लाल झक्की, इस बार तुम्हारी शादी हमने कर दी है पक्की. लड़की वालों ने हाँ कह दी है. अगले दिन हम बनवारी को लेकर लड़की वालों के घर गए, सोफे में बैठ गए बनवारी. लड़की की माँ ट्रे में चाय लेकर पधारी, बनवारी को देखते ही उसके छक्के छूट गए, ट्रे नीचे गिर पड़ी, प्याले व्याले सब टूट गए, बेचारी का सर चकराया. और इधर बनवारी के माथे पर भी पसीना आया. वो मुझसे बोला, हुल्लड़ ये तो मुझे कहाँ ले आया. लड़की की माँ की जब बेहोशी टूटी तो मुझे अलग ले जाकर बोली, भाई साहब अब आपसे क्या छुपाना, मेरा सर तो इसलिए चकराया था क्योंकि ये तो मुआ वही है जो 20 साल पहले मुझे देखने आया था.
1: तो देखिए, आई ना आपके चेहरे पर हंसी. अब दिन भर हुल्लड़ मुरादाबादी को खोजिएगा.
0: जी बिल्कुल. एंड मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पर्सनालिटी टुडे इज मेल बी, हु इज एन इंग्लिश सिंगर, सॉन्ग राइटर, रैपर, टेलीविजन पर्सनालिटी, एक्ट्रेस एंड ऑथर. एंड शी रोज टू प्रोमिनेंस इन द 1990s एज अ मेंबर ऑफ द गर्ल ग्रुप स्पाइस गर्ल्स, इन विच शी वॉज निकनेम्ड कैरी स्पाइस. And here we're going to listen to her singing the song Tell Me, which topped the UK chart top 5. So let's listen into Tell Me by Mel B.

आज जयंती है किराना घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हीराबाई बारोतकर की। कला के क्षेत्र में 1970 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया और खास बात यह है कि 1947 में हीराबाई ने अपने जीवन की सबसे खास प्रस्तुति दी। 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ तो उन्हें लाल किले पर खास तौर पर आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था। सुनते हैं उनके स्वर में ये खूबसूरत राग।

0: Tributes to Bob Hope, who was an English-American stand-up comedian, actor, singer, dancer, athlete, and author. With a career that spanned nearly 80 years, Hope appeared in more than 70 short and feature films, with 54 feature films with Hope as star, including a series of 7 road musical comedy movies with Bing Crosby as Hope's top build partner. And here we're going to listen to his song Thanks for the Memory, which was his signature tune. And Hope retired in 1997 and died at the age of 100 in 2003. And this song is a popular song with music composed by Ralph Ranger and lyrics by Leo Robin. It was introduced in the 1938 film The Big Broadcast of 1938 by Bob Hope and Shirley Ross. So let's listen into this captivating nostalgia. Thanks for the memory.
1: And no harm done. So thanks for the memory of crap games on the floor.
2: Nights in Singapore. You might have been a headache, but you never were a bore.
1: I thank you so much.
3: कला और संस्कृति के क्षेत्र में आज का दिन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आज पुण्यतिथि है उस व्यक्ति की सिनेमा में जिसकी आवाज ही काफी थी, जो हमें एक ऐसे फकीर की याद दिलाता है जिसने पर्दे पर शहंशाह का ताज पहना था. आज हिंदी सिनेमा के भीष्म पितामह पृथ्वीराज कपूर की पुण्यतिथि है. आज के दिन 1972 में अभिनय का ये बुलंद सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया था.
4: उसे तड़पने दीजिए लेकिन रोने न दीजिए. वो सब माएं भी अगर आपकी तरह रो पड़ी जिनके बच्चे आपके बेटे के साथ मैदान जंग में हैं, तो हिंदुस्तान आंसुओं में डूब जाएगा.
3: ये रोबीली आवाज पृथ्वीराज कपूर की ही थी. साल 1931 में आई भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा से अपने अभिनय का जादू उन्होंने बिखेरा था. भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभिनय की जो अनमोल विरासत वो दुनिया को दे गए, आज भी बॉलीवुड की धड़कन बनकर धड़क रही है. पद्म भूषण और सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पृथ्वीराज कपूर को नवाजा गया है.
4: यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती. नस्ले तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम ससीम शान तख्त ताज हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे. मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की बाजें बनाना चाहते हो.
0: Very true, Naveen. Some voices, you know, they just stay there and these legends can never be forgotten.
3: ये वो आवाजें हैं कि अगर आप इनको देख नहीं रहे, अगर सिर्फ सुन भी रहे हैं ना, तो भी महसूस कर सकते हैं.
0: You can feel those dialogues, you know, you can picturize the whole movie in front of you when you're listening to these dialogues.
3: और अभी कैसे कलाकार की बात करेंगे जो देखने में भी अच्छा दिखता है अभिनय में और बातें भी अच्छी करता है.
0: जी बिल्कुल. एंड नवीन, व्हेन वी टॉक ऑफ हिंदी आर्ट हाउस सिनेमा स्पेसिफिकली, सम नेम्स इमर्ज एज द मोस्ट पॉपुलर फेसेस. अगर कुछ नामों की हम बातें करें तो ओम प्रकाश हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट पंकज कपूर, हु इज एन इंडियन थिएटर, टेलीविजन एंड फिल्म एक्टर, एंड टुडे इज हिज बर्थडे. पंकज कपूर इज ह्यूजली गिफ्टेड एंड इज वाइडली रिस्पेक्टेड फॉर हिज कमिटमेंट टू गुड सिनेमा. ही हैज कार्व्ड अ नीश फॉर हिमसेल्फ विद हिज वर्सटैलिटी एंड क्रिएटिव एंडेवर्स. एंड हियर वी आर गोइंग टू लिसन इन टू हिज पावरफुल कंक्लूडिंग मोनोलॉग एज अ पंडित फ्रॉम द 2000 मूवी धर्म.
5: आज हमें ज्ञात हुआ धर्म केवल साधना नहीं, कर्तव्य भी है, कर्म भी है, एकता और सद्भावना है, भेदभाव को त्यागना है धर्म, मानवता है धर्म.
3: आज मैं और रेणु जब हिस्ट्री का सेक्शन खोज रहे थे तो हमें एक ऐसे गीतकार पर नजर पड़ी जिसके गीत दिल को छू लेते हैं. इतने खूबसूरत गीत और इतने सीधे साधे गीत कि आप दिन भर गुनगुनाएंगे. बात हम कर रहे हैं योगेश की, जिन्होंने आनंद का ये खूबसूरत

योगेश जी के लिखे गीत सीधे दिल में उतरते थे और इन्हों उनके गीतों में बनावट नहीं, आम इंसान का सीधा साधा जीवन झलकता था। चाहे वो ये फिल्म आनंद का ये गीत हो या रजनीगंधा का कई बार यूं भी देखा है।

0: कहते हैं कि फिल्म आनंद के लिए जब ऋषिकेश मुखर्जी को गानों की जरूरत थी तो रेणु गुलजार साहब ने उन्हें योगेश का नाम सुझाया। ऋषिकेश जी ने योगेश को बुलाया, फिल्म की कहानी सुनाई और कहानी सुनकर योगेश जी इतने प्रभावित हुए कि वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने कुछ लाइनें लिख दी और वो लाइन थी, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए।
1: कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
0: और दोस्तों जानते हैं जब बारिश के गीतों की बात होती है तो बहुत से गीत आपके जहन में आते होंगे, लेकिन योगेश का लिखा ये गीत आज भी उतना ही पॉपुलर है जिस वक्त वो लिखा गया था। तो मैं और रेणु इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रखे हैं। इस गीत को सुनिए, दिन भर गुनगुनाइए और उम्मीद करिए कि आपके शहर में तो सावन जरूर गिरे।

0: उम्मीद है कि आपको आज का संस्करण बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में बस इतना ही।
1: एंड स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM एंड हैव अ सुपर्ब डे डियर लिसनर्स।
0: नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने

0: का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
0: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का

0: पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटन्स पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह सेज सेंटर्स हाई लेवल कमिटी ऑन आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंजेस टू ऑल्सो असेस रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ टू टैकल द इश्यू। National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.

0: And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Sunil. The resignation of Siddaramaiah as Karnataka Chief Minister is the top news in many dailies. Siddaramaiah makes way for D.K. Shivakumar in Karnataka leadership shift, headlines Hindustan Times. Amid suspense on whether Chinese President Xi Jinping will attend the BRICS summit in India in September, the two nations held constructive talks on the LSE and border row, writes the Asian Age. To ensure foolproof conduct of the NEET UG again, the government is mulling to seek logistical support from the Indian Air Force to transport examination material, reports the Tribune. In its editorial piece titled Death Blow to Online Gaming, the Asian Age welcomes the Supreme Court's decision upholding GST on the full amount deposited by online gaming participants, seeing it as a strong step to curb betting and its damaging social consequences. The paper argues that the distinction between skill-based and chance-based betting is too blurred to be meaningful in practice and says the ruling could severely hit the industry. At the same time, it notes that retrospective taxation, though legally upheld, creates uncertainty for business. Dailies have paid tributes to poet Bashir Badr, who died yesterday. Bashir Badr, master Urdu poet of love and melancholy, passes away, headlines the Times of India. In the next 5 years, the earth is likely to surge again and again past the international climate threshold set as safe, according to new United Nations climate projections, reports the Statesman. And finally, in a landmark development for wildlife conservation in Himachal Pradesh, forest officials in Chamba have captured the first ever video evidence of brown bear in Siabehi Wildlife Sanctuary, reports the Tribune. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah says Centre's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirements of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents of Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end. Amid continued geopolitical uncertainties in West Asia, and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all important Qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. Aadab, khabarname ke saath main Neetika Tyagi. Pehle is waqt ki khas khas khabrein. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज़ की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी ज़रूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरतेहाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। जनाब शाह ने कहा कि ये कमेटी मुल्क भर में हो रही मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों की वजूहात का भी जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि वो जरूरी इस्लाही इकदाम पर तबादला ख्याल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या किसी मखसूस कानून की अमलदारी लाजिमी है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
2: वजीर दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती

0: लिए उनकी सहायता भी करे।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैनुल अक्वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो ओपी टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह का 6 माह के अंदर ये कच्छ का दूसरा दौरा है। उन्होंने गुज़श्ता बरस नवम्बर में BSF के कौमी योम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए भुज का दौरा किया था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। रूस में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार मुमालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों की मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निमटने के लिए फैसलाकुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेजबानी रूसी फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी को लाहिक चैलेंजों और खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी ने पंजाब हरियाणा दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के नए सदर मुकर्रर किए हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने मशरिकी दिल्ली के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का सदर मुकर्रर किया। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की सरबरा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का नया सदर मुकर्रर किया गया है। अभिषेक देब्रोय त्रिपुरा के बीजेपी सदर होंगे। इन तकर्रियों के साथ जनाब नवीन ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेर सदारत रियासती वुजरा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी बूथ को मजबूत करने अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
2: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी मार्फत मार किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे सभी सदस्य है दो दो दिन के प्रवास पर कुछ विधानसभाओं के अंदर रहेंगे जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिल सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूद पर बामानी तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज से कर्नाटक गोवा और केरलम के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद अजां दिन में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवांगिरी में BDT यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी सियासी जुग्राफियाई खैर यकीनी सूरतहाल के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों को मुअत्तल रखे जाने में जुलाई के आखिर तक तौसी दे दी है। इससे कबल एयरलाइंस ने तेल अबीब दिल्ली के रास्ते पर परवाजों को जून महीने के आखिर तक मुअत्तल किया था। एयर इंडिया के एक आला एहलकार ने बताया कि ऐसा खित्ते में जारी सियासी जुग्राफियाई सूरतहाल के मद्देनजर किया गया है। मगरबी एशिया जंग की वजह से एयरलाइंस को

0: ईंधन की कीमतों में इजाफा और फजाई हदूद से मुतालिक पाबंदियों समेत मुतादिद चैलेंजों का सामना है, जिसकी वजह से कार्रवाई जाती अखराजात में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने त्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और एक रिटायर्ड जिला और सेशंस जज हैं। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। इससे कबल सीबीआई की टीम ने गिरिबाला के घर की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले की संगीनी, सबूत और तहकीकात के मरहले को मद्देनजर रखते हुए गिरिबाला को जमानत देना मुनासिब नहीं है। त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्रिशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है, जबकि त्रिशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: इम्तिहानात के निकात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2026 इम्तिहानात में शामिल होने वाली तमाम मरकजी और शरीक यूनिवर्सिटियों को इम्तिहान की नई तारीखें और एडमिट कार्ड्स जारी किए हैं। ये इम्तिहानात अब इस माह की 31 तारीख और आइंदा माह की 6 और 7 तारीखों को होंगे। ईद उल अजहा की वजह से कल होने वाले इम्तिहानात की नई तारीख तय की गई है। एनटीए ने बताया कि इतवार के रोज होने वाले इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की सरकारी वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हब्स के हालात से राहत मिली। IMD के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ आंधी आने का इम्कान है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। केरलम में चंद इलाकों में भारी बारिश के इम्कान के मद्देनजर कुल 14 अजला में से 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से केरलम और लक्षद्वीप में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मराकज पर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जनूब मगरबी मॉनसून का सरकारी ऐलान आज या कल होने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह पैनुलक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। गुजरात टाइटन्स की टीम क्वालिफायर 1 में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्स फोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 बैन अल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। दूसरा T20 बैन अल-अक़वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा।

0: ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नजर राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबारात मंजर आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबारात की कुछ अहम शह सुर्खियां इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धारमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबारात ने अपने सफाए अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धारमैया ने डी के शिवकुमार के लिए राह हमवार की। सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने एलएसी और सरहद से मुतालिक तनाजे पर तामीरी बातचीत की। इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबारात की नुमाया खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की शह सुर्खी है, इश्क रुमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, इसलिए हालातों को पीछे छोड़ वक्त के साथ चलिए, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। जी हाँ, हमें भी वक्त के साथ चलना है और वक्त हो गया है म्यूजिकल दिल लगी का। तो आइए चलते हैं आज के सुरीले सफर पर। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज साथ हूँ मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से।

0: तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। आकाशवाणी को 90 साल पूरे करने पर बहुत बहुत बहुत बधाई। 90 साल का कामयाब सफर तय करना कोई आसान बात नहीं है। आकाशवाणी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। आपने मुझे आज तक अपने साथ जोड़ कर रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन की हर पड़ाव, सफलता, मेरे जीवन के संघर्ष, कोई भी चीज़ आपसे छुपे नहीं। आपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से मुझे कई अवसर दिए कि मैं देश भर के श्रोताओं से जुड़ी रहूं। आप मेरी आवाज़ बने, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ।

वक्त तो है 8:54 और 23 सेकंड। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और आइए घरौंदा फिल्म का ये गीत सुनते हैं रोना लैला की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हर घुसपैठ की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। गृहमंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पश्चिम एशिया में जारी

0: राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने होगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said, responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
2: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
1: In a social media post, the Indian Embassy in Moscow said Mr. Doval participated in the first International Security Forum and the 14th meeting of High Representatives for Security Matters in Moscow. On the sidelines of the forum, Mr. Doval held a meeting with his Russian counterpart, Shoigu. During the meeting, the parties reviewed the current state of cooperation in the areas of defense, security, energy and trade economic ties. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's High-Level Committee on Artificial Demographic Changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
1: On the second day of his Gujarat tour, Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically sensitive areas along the international border in Kutch today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. Air India's extended suspension of

0: दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हर सुबह आपको दो विकल्प देती है, सोते रहो सपने देखने के लिए या जाग जाओ सपने पूरे करने के लिए। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा, क्रिस्टल वॉइस। म्यूजिकल दिल लगी शुरू करूं, इससे पहले आपको बता दूं कि अभी जो गीत मैं लेकर आई हूं वो है लता जी और किशोर दा की आवाज में। वेल, ये गीत तो आप सुनिए, लेकिन बातें बहुत सारी हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस सफर में, क्योंकि सफर काफी लंबा है लेकिन काफी खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं।
1: दोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

दोस्तों, आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर चुका है और 8 जून 1936 को इसी दिन भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर अखिल भारतीय रेडियो यानी AIR कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है, जब एक ऐसी आवाज का जन्म हुआ जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। स्वतंत्रता के बाद AIR का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 के करीब स्टेशनों का संचालन करता है, जो भारत की

करीब करीब 99% आबादी तक पहुंचता है और 23 भाषाओं और 146 बोलियों में भी प्रसारण करता है। जन जन की बात करने वाला आकाशवाणी प्रधानमंत्री के मन की बात का प्रसारण भी करता है। तो चलिए अब बारी है आपके लिए एक सवाल की, आज के सवाल की। सही जवाब देने वाले लकी श्रोता से हम बात करेंगे सीधे फोन लाइन पर म्यूजिकल दिलगी के इस सफर में। देखते हैं कौन होते हैं आज के लकी श्रोता। तो आज का सवाल सुनिए, आकाशवाणी से प्रधानमंत्री की मन की बात के कितने एपिसोड्स प्रसारित हो चुके हैं? आपको हमें इसका जवाब भेजना है कहाँ? 9868867535 पर, यानी 9868867535 पर, या फिर fmgoldair@gmail.com पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी हाँ, fmgoldair@gmail.com इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपना जवाब अपने नाम, शहर के नाम के साथ और अपने फोन नंबर के साथ ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से भेज दीजिए, देखते हैं आज किसे मैं कॉल लगाती हूँ। अब इससे पहले कि कुछ और बातें करूँ, ये गीत सुनते हैं यहूदी फिल्म से लता जी की आवाज में, खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी @90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। 9:26 और 16 सेकंड हो चुके हैं और फिलहाल आपको बहुत सारी काम की बातें मैं बता रही हूँ म्यूजिकल दिल लगी के सफर में। तो दोस्तों, एक वक्त होता था जब हम पैसे ना होने की वजह से पढ़ाई के लिए बड़े अच्छे ऑप्शंस को नहीं चूज कर पाते थे। परिवार में कहीं ना कहीं अगर आर्थिक तंगी होती थी तो हम सोचते थे कि हम वो पढ़ाई का ऑप्शन चुने या वो कोर्स चुने जिसमें हमें ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। कभी कभी ऐसी तकलीफें भी हमने देखी हैं, सामना किया होगा किसी ना किसी ने ज़रूर। लेकिन अब ऐसी दिक्कतों का सामना किसी भी स्टूडेंट को ना करना पड़े, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसके बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय शिक्षा ऋण योजना है जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बिना जमानत के ऋण प्रदान करना है। अगर मैं बात करूं इस योजना की खासियतों की तो छात्रों को बिना किसी गारंटर या संपत्ति को गिरवी रखे शिक्षा ऋण दिया जाता है इस योजना के तहत, और करीब 7.5 लाख तक के ऋण पर सरकार 75% के क्रेडिट गारंटी देती है। और इसके अलावा जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख तक है उन्हें 10 लाख तक के ऋण पर मॉरेटोरियम अवधि के दौरान 3% यानी 3% की ब्याज सब्सिडी यानी छूट प्रदान की जाती है। छात्र को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की सूची में शामिल देश के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए।

और ये एक पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया है। छात्र आधिकारिक माई स्कीम पोर्टल के माध्यम से लोन और ब्याज सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो भाई अगर आप चाहते हैं इस योजना का लाभ लेना तो जाइए माई स्कीम पोर्टल पर और जाकर यहाँ पर आप रजिस्टर कीजिए, आवेदन कीजिए। हो सकता है कि आपको भी इस योजना का लाभ जरूर मिले। वेल, अब और कुछ बताओ, फिलहाल एक गीत सुना देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको इसका इंतजार है। तो ये रहा लता जी और रफी साहब की आवाज में एक प्यारा सा गीत आपके लिए।

0: बुआ ये पंखा के खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: गर्मी का जो मौसम है वो जो महीना चल रहा है अभी मिड मई से मिड जुलाई तक का है, इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं और जो शरीर पर पड़ती हैं तो पानी को सोख लेती हैं। तो शरीर में पानी जब कम होगा तो खुश्की आएगी, डिहाइड्रेशन होगा, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी और साथ में लू लगना जैसे सनस्ट्रोक बोलते हैं या उल्टी दस्त, ये सब बीमारियाँ ऐसी आ जाती हैं आदमी को। खसरा वगैरह इस मौसम में ज़्यादा निकलता है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कफ है शरीर का कम हो जाता है, जो शरीर की ताकत है वो घट जाती है, शरीर दौरबल हो जाता है और जो वात है वो बढ़ता है, तो वात फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे मौसम के हिसाब से, तो परेशानियां ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए गर्मी में हमें खास ध्यान रखना चाहिए उससे बचने के लिए, तो उसकी प्रिकॉशन जैसे मैं आपको बतलाऊंगा कि भाई आप गर्मी में अगर बाहर जा रहे हैं तो पानी पी के जाएं पहले, तो उसके बाद सिर पे कोई कपड़ा रखें और छाते का प्रयोग करें। छाता लोग आमतौर पर जो छाते मिलते हैं ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक जो है वो कलर जो है हीट को खींचता है अपनी तरफ, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप व्हाइट कलर का छाता हो, जो व्हाइट है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है। इसलिए जो कपड़े हमारे पहनने वाले हैं वो भी लाइट कलर के हों या व्हाइट हों, वो डार्क कलर के ना हों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कम से कम गर्मियों में दो बार स्नान भी करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं। और खाने में आजकल जो सीजन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल तरबूज आया हुआ है, नींबू है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा पकौड़े समोसे इस तरह की जो चीज़ें, बाजार का जो खाना उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि हम स्वयं अपने आप को बचाएंगे तभी बच पाएंगे। ये जो ग्रीष्म ऋतु है, ये जो महीना हमारा चल रहा है अभी मिड मई से मिड जुलाई के बीच का है, इस टाइम जो सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और जल को सोखती हैं बॉडी के, उस जमीन पे भी जल होगा उसको भी सोख लेती हैं, जो आपको देखते हैं कि पानी की कमी हो जाती है। अब जो भी ठंडी चीज़ें हैं वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ठंडी जगह में रहना चाहिए, खाना पीना ठंडा खाना चाहिए, कोई भी गर्म मसाले मिर्चें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप जो सीजन की चीज़ें हैं, जैसे आपका मैंने बताया था आपको अभी तरबूज पैदा हो रहा है वो खाइए आप, खरबूजा खाइए आप, नींबू का पानी पीजिए आप, दही की छाछ पीजिए आप, स्किंजी बना के पीजिए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। खस का जो है उसका शरबत पी सकते हैं आप, है ना, संतरे का जूस पी सकते हैं आप, अनार का जूस पी सकते हैं, ये चीज़ें लीजिए आप, तो इससे जो है आपको बॉडी आपकी ठीक रहेगी, संतुलन बना रहेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेचुरल खाने पीने का अपना पथ्य का प्रयोग सही करें आप और अपथ्य का सेवन ना करें आप। दूसरा, लाइफस्टाइल अपना ठीक रखें। भूख जैसे कम लग रही है तो भूख के लिए आप थोड़ा सा नमक और जो है आपका थोड़ा सा काला नमक डाल लें, थोड़ा सा अजवाइन डाल लें, थोड़ा अदरक डाल लें, उसको नींबू में भिगो कर रखें, उसको खाएं तो आपकी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। पानी बार बार पीते रहें आप, ये बहुत जरूरी है।
7: तो भाई ये थे आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत सिंह डबास, जिन्होंने जानकारी दी कि गर्मियों के मौसम में कैसा हो आहार व्यवहार। और आपको ये भी बता दूं कि हीट वेव से अगर आप बचना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए, जैसे आपको सही समय चुनना है घर से कब निकलना है इसका, यानी 11 बजे से शाम 4 बजे तक अगर हो सके तो धूप में जाने से आपको बचना चाहिए, ये समय जो है सबसे खतरनाक होता है। हल्के कपड़े, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, सूती ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, सफेद सबसे बेस्ट है, सिर की टोपी, गमछा या छाते से जरूर आप अपने आप को ढके। और इसके अलावा सनग्लासेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आंखों को यूवी से बचाने के लिए, चश्मा और स्किन के लिए SPF 30 से ज्यादा का सनस्क्रीन आपके पास होना चाहिए, 30+ का सनस्क्रीन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पानी ही जीवन है, ये तो आप जानते ही हैं। प्यास न लगे तब भी हर 30 मिनट में आप पानी पी लीजिए, दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना

आज के मौसम में बहुत जरूरी है, जो आजकल मौसम चल रहा है। हालांकि आज थोड़ी सी ठंडक है हवा में, लेकिन ये सिर्फ एक दो दिन की बात होती है और उसके बाद हमें फिर से गर्मी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना ख्याल अच्छे से रखें। कुछ चीजें हैं जिनको आपको खाने से परहेज करना चाहिए, जैसे तला भुना मसालेदार ज्यादा प्रोटीन वाला खाना या फिर अल्कोहल, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ये पानी की कमी को पूरा नहीं करते बल्कि बढ़ा देते हैं। और खाने में आप खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, प्याज, पुदीना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं, जो आपके शरीर को ठंडा रखती हैं। पर्दे जो हैं वो घर के, वो थोड़े से बंद रखें ताकि घर में लू ना पहुंचे। दिन में खिड़की दरवाजों पर मोटे पर्दे डालकर रखें ताकि धूप अंदर ना आए। सुबह शाम जब ठंडी हवा चले तो खिड़कियां आप खोल सकते हैं। खिड़की पर गीली चादर टांग सकते हैं। कूलर में बर्फ डालकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी को आप 24 डिग्री पर चला सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तो भी ये नुकसानदायक हो सकता है। तो 24 डिग्री टेम्परेचर सही है जिसे आपको रखना चाहिए करीब करीब। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं को होता है। बाहर काम करने वाले मजदूर, किसान, रिक्शा चालक और बीमार लोग, इनका ख्याल रखना जरूरी है। इन्हें अकेला ना छोड़े, इनका ख्याल ज्यादा रखें। लू लगने के लक्षणों को आपको पहचानना बहुत जरूरी है। तेज सरदर्द हो, चक्कर आए, उल्टी, जी मिचलाना, शरीर का तापमान अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास इसके ऊपर पहुंच जाए तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। पसीना आना बंद हो जाए, स्किन लाल या सूखी लगे और बेहोशी या दौरे जैसी आपको समस्या दिखाई दे तो फिर डॉक्टर को जरूर मिलें। लू लग जाए तो तुरंत आपको क्या करना है, किसी ठंडी जगह पर लेकर जाएं व्यक्ति को और एसी या पंखे के नीचे छांव में लेटा दें। तंग कपड़े उसके उतार दें, उसे ढीले कपड़े पहनाएं, गीले कपड़े से पूरा शरीर पोंछें और बर्फ की ठंडी पट्टियां उस पर रखें। अगर होश में हो तो ORS, नींबू का पानी, नल का पानी धीरे धीरे उसको पिलाएं और इसके अलावा तुरंत की अस्पताल पर लेकर जाएं। लू जानलेवा हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ा मंत्र है, पानी पियो, छांव में रहो, धूप से बचो। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपका ख्याल हमेशा रखते हैं आप। इसी तरीके से अगर आप बाहर काम करते हैं तो हर एक घंटे में 5 मिनट में छांव में जरूर बैठ जाएं। किसी भी गंभीर स्थिति में डॉक्टर को मिलें, यही सबसे जरूरी है। और स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसे ना भूलें। तो ये तो हुई बात आपकी सेहत की। फिलहाल एक गीत सुनाती हूँ और मुझे पता है कि आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, लेकिन साथ साथ अगर मनोरंजन ना हो तो मजा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो चलिए गीत सुनाती हूँ आशा जी रफी साहब की आवाज में, ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: तो भाई आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सारी काम की बातें हम बताते रहेंगे। वेल आज है क्या, आज है 29 मई और आज का दिन इतिहास में कई वजहों से दर्ज है। जैसे कि अगर आज के दिन की बात करूं तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि हर साल 29 मई को मनाई जाती है। उनका निधन आज ही के दिन 1987 में हुआ था। उन्हें देश के ग्रामीण विकास और कृषि सुधारों में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए याद किया जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नई दिल्ली में उनके समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भूमि सुधार और जोत अधिनियम 1960 लागू करने में खास भूमिका निभाई थी। उनका मानना था कि असली भारत गांव में बसता है और जब तक वो भारत किसान मजदूर की बात करें तो सशक्त नहीं होगा अगर तो भारत का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने सत्ता मिलते ही सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन कर गांव के विकास और उन्हें पहचान दिलाने का काम किया। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कई किताबें भी लिखी और इन किताबों की अगर बात करें तो जमींदारी उन्मूलन, भारत गरीबी और उसका समाधान और किसानों की संपत्ति, ये सभी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी है। इसके अलावा भी कई और किताबें। अगर मैं बात करूं आज के दिन की तो एक और खास बात है आज के दिन में। 29 मई का दिन हर साल संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। और अगर बात करूं आज के दिन की तो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपनी व्यावसायिक समर्पण और साहस के लिए सेवा करने वाले और सेवा जारी रखने वाले पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने और शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों की स्मृति का सम्मान करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो 29 मई की तारीख 1948 के अरब इसराइल युद्ध के बाद युद्ध विराम की निगरानी के लिए 1948 में संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन की स्थापना की वर्षगांठ को भी चिन्हित करती है, जो कि पहला संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन था। इसके अलावा यूक्रेन शांति रक्षक संघ और यूक्रेन सरकार के संयुक्त राष्ट्र महासभा से आधिकारिक अनुरोध के बाद और पहली बार 2003 में इसे मनाया गया था। और कुछ बताऊंगी जरूर, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं? जिन्होंने आज का सही जवाब दिया था। मैंने सवाल आपसे पूछा था कि मन की बात के कितने एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं आकाशवाणी से, और सही जवाब क्या था, चलिए इन्हीं से जानते हैं कौन है, देखते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: मैं यादव बोल रहा हूँ।
0: उग्रसेन यादव जी, तो आप पहले तो हमें सवाल का जवाब बता दीजिए कि क्या जवाब है, कितने एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं।
1: मैम ये 133 एपिसोड, 133 एपिसोड हो चुके हैं।
0: क्या बात है, 133 एपिसोड्स।
1: 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, जो लास्ट अप्रैल गया है।
0: काफी जानकारी है आपके पास। विल अभी मैं आपसे अगर बात करूं तो क्या आप आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुनते हैं हमेशा?
1: बहुत बहुत सुनते हैं, जब भी टाइम मिलता है मैं रेडियो से ही लगा रहता हूँ।
0: कितने सालों से सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम गोल्ड?
1: मैम तो 1985 से मैं शुरू किया था। वैसे तो ये खाली भीड़ भाती उस टाइम था, उसी को सुनते थे, बाकी का तो फिल्मी गाने वगैरह कम सुना जाता था, परिवार का दबाव था।
0: अच्छा, आपको रेडियो इतना पसंद क्यों है?
1: रेडियो पे जो चीज, मतलब हर प्रकार की बातें आती। देखिए आप अभी डॉक्टर की बात कर रही थी, आप इतने सारे प्रिकॉशंस बता रहे थे गर्मियों की, ये चीजें मिलती है, न्यूज मिलते हैं, गाने जो अपनी पसंद का वो गाने चलते हैं। मतलब ज्यादा शोर शराबा नहीं होता इस चैनल पे, इस वजह से हमें बहुत पसंद
0: है। क्या बात है, मतलब काम की बातें होती हैं और साथ में मीठा संगीत होता है और इसीलिए आपको ही पसंद है।
1: आप लोगों का प्यार है बस, आप लोग जैसा मतलब आप ये प्रस्तुतिकरण देते हैं ना, बहुत लाजवाब है। सारे आरजे बहुत बढ़िया प्रस्तुति देते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, सभी आरजे की तरफ से मैं आपको शुक्रिया बोलती हूँ। और उग्रसेन जी, अगर आपको आज क्योंकि जरिया मिला है, आप अपने श्रोताओं को जो भी आपको सुन रहे हैं कोई एक अच्छा सा मैसेज दे सकते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं से?
1: मैं अपने श्रोताओं से, मैं पहले बार सारे श्रोताओं को, सुनने वालों को, जो मेरे बड़े या छोटे हो, सबको मैं प्यार और आशीर्वाद नमस्कार बोलता हूँ
0: जी।
1: और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आप एफएम गोल्ड से या आकाशवाणी जहाँ पे भी आपका कोई भी चैनल आ रहा हो उससे जुड़े रहें, क्योंकि उससे जुड़ने से क्या है, आपको नित्य नई नई जानकारियां मिलती हैं। पहली बात तो आपको इससे ज्यादा सुकून देने वाला चैनल है जो एफएम गोल्ड है, इससे मीठे मीठे गाने सुनते हैं। मेरे सारे श्रोताओं और सारे भाइयों से ये निवेदन है, बहनों से निवेदन है कि आप नित्य दिन सुनते रहें।
0: क्या बात है, तो भाई उग्रसेन यादव जी कह रहे हैं कि आप रोजाना इसे सुनते रहें, जानकारियों का खजाना है रेडियो। तो उग्रसेन जी, अब जब इतनी बातें कर ही ली हैं तो आपकी पसंद का गीत आज सुना देते हैं, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे आप खयाम जी की, मैं जो म्यूजिक है मैं थोड़ा बहुत पसंद करता हूँ
0: जी,
1: और रजिया सुल्तान का गाना सुनवा दीजिए, दिले मैदान।
0: ए दिले नादा, क्या बात है। तो भाई अपने नादान दिल को ऐसे ही जोड़े रखिए एफएम गोल के साथ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आज रेखा क्रिस्टल वॉइस आपको प्रणाम करती हूँ कि आप इतनी शिद्दत से सुनते रहते हैं गोल्ड को, और ऐसे ही सुनते रहें, ऐसे ही जुड़े रहें। फिलहाल आपकी पसंद का
1: गीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

तो भाई अब आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप थोड़े से फ्री हैं, थोड़ा सा समय है आपके पास, तो आप जा सकते हैं कल शाम 7 बजे स्टाइन सभागार में इंडिया हैबिटेट सेंटर में, यानी 30 मई को शनिवार को शाम 7 बजे, जहां पर होने जा रहा है एक नाटक का मंचन, हाँ मैं सावरकर हूं। तो ये ऐतिहासिक लाइव नाटक आप देखने के लिए जा सकते हैं जो देशभक्ति से उत्प्रोत है, और अगर आप इस नाटक को देखना पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो जरूर पहुंच जाइए कल शाम 7 बजे। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि आज है शुक्रवार, आज का वक्त रहता है पानी पर लिखी कहानी का। तो आज शाम को 5:10 पर सुनिएगा जरूर पानी पे लिखी कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं, और इसे लिखा है कुसुमलता ने, परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकृति जी का। तो ये काम भी आपको जरूर करना है। अब क्योंकि सफर में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूं और फिर से मिलूंगी 10:30 लेकर दिल का मेल बॉक्स। इस बीच आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार और बहुत सारी खबरें, तो जुड़े रहिएगा। फिलहाल ये गीत आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों के लिए जांच की गठित समिति उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरीबाला

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। अमरीका, मैक्सिको और कनाडा ने फीफा विश्व कप 2026 से पहले इबोला वायरस संक्रमण के मद्देनजर यात्रा संबंधी प्रतिबंध जारी किए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ सकता है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 38 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में गोलमेज बैठक में भाग लिया। उन्होंने 50 से अधिक व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं से बातचीत की। ये बैठक भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी मंच के सहयोग से आयोजित की गई थी। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने बैठक में भारत की मजबूत आर्थिक विकास स्थिति, सुधार आधारित व्यापार माहौल और वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते अवसरों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आर्थिक सुधार तेजी से हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में सैन्य ठिकाने पर हमला किया। हालांकि अमरीका ने कहा है कि उसने मिसाइल और ड्रोन को नाकाम कर दिया। पिछले तीन दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान में कार्रवाई की है। अमरीका का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। बढ़ती सैन्य कार्रवाई से अमरीका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर अनिश्चितता बढ़ गई है। अमरीका के विदेश विभाग ने ब्राजील के दो बड़े आपराधिक गिरोहों फर्स्ट कमांड ऑफ द कैपिटल यानी पीसीसी और रेड कमांड यानी सीवी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों गिरोहों के कुल सदस्यों की संख्या 50,000 से अधिक हो सकती है। ट्रंप प्रशासन लैटिन अमरीका में ड्रग तस्करी और संगठित अपराध पर सख्ती के तहत इस तरह के कदम उठा रहा है। अमरीका के डलास शहर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में हुए भीषण विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई। डलास फायर रेस्क्यू के प्रवक्ता जेसन इवांस ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आग पर कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला संक्रमण के बीच अमरीका, मैक्सिको और कनाडा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और यात्रा उपायों पर एक संयुक्त बयान जारी किया है। तीनों देशों ने कहा है कि ये समन्वित कदम नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान आने वाले लाखों पर्यटकों, खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जबकि सीमाओं पर यात्रा और व्यापार जारी रहेगा। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इबोला को देश में फैलने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उधर पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा ने इबोला के प्रसार को रोकने के लिए बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घिब्रेसस ने कहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला प्रकोप बेहद जटिल स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में संघर्ष, असुरक्षा, लोगों का विस्थापन, खाद्य संकट और सामुदायिक अविश्वास जैसी समस्याएं संक्रमण नियंत्रण के प्रयासों में बड़ी बाधा बन रही हैं। श्री टेड्रोस ने कहा कि उनका उद्देश्य प्रभावित समुदायों को यह संदेश देना है कि वे अकेले नहीं है और WHO उनकी सहायता के लिए मौजूद है। WHO की टीमें पहले से ही पूर्वी इटूरी प्रांत के बुनिये क्षेत्र में काम कर रही हैं। अब तक प्रकोप में 1000 से अधिक संदिग्ध मामले और 238 संदिग्ध मौतें दर्ज की गई हैं। 17 मई को WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इसे महाद्वीपीय आपात स्थिति बताया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 से 2030 के बीच वैश्विक औसत तापमान के वर्ष 1850 से 1900 के स्तर से 1.3 से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
3: रिपोर्ट में बताया गया है कि 86% संभावना है कि इस अवधि में कम एक वर्ष अब तक के सबसे गर्म वर्ष 2024 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार 2026 के

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 10:31 और 11 सेकंड हो चुके हैं और ये वो टाइम है जब आपकी पसंद के गीत हम आप तक पहुंचाते हैं। जरिया तो आप जानते ही हैं, 9868867853। जी हाँ, 9868867853। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है मुझे अपने पसंद के गीत, और आप ईमेल भी कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। लेकिन ये याद रखिए, सिर्फ एक ही चीज़ काफ़ी है, दोनों जगह पर मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों मैसेजेस मेरे पास पहुंच रहे हैं, तो आप जिस भी जरिए मुझे अपनी बात कहें पहुंच जाएगी। कोशिश करिए एक ही मैसेज करें, ताकि बार बार आप ही के मैसेजेस में स्क्रॉल करती ना रह जाऊं, नए नामों को भी शामिल कर पाऊं। और इसके अलावा, क्योंकि नाम तो मैं एक ही बार लूंगी, भले आप 10 बार मैसेज कर दें, तो सिर्फ एक मैसेज करिए काफी है। और अब मैं आपको कुछ नामों को शामिल करके बता दूं कि किस किसने हमें मैसेज भेजे हैं। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू ने मैसेज किया है। और मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक ने हमें मैसेज किया है। गांव खारिया ढाणी से, जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजारनिया ने हमें मैसेज किया है। और हमें लिखा है गगन थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम और वामिका, बेबी वामिका और वाणी ने पंजाब नवा शहर से। और अनिल जैन, जैन साहब, संयम, मुस्कान, जीवियम और हमें सभी ने लिखा है मालियान सरथना मेरठ से। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अकसान, आजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब हसन का हमें सहारनपुर से मैसेज पहुंचा। लाल बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, मुझे लगता है ये दोबारा से मैसेज आया क्या मेरे पास, प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या साहू का छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज मिला है। और इसके अलावा महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश, प्रीतेश और पूरे संघई परिवार का मैसेज हमें मिला है परभणी से। और हमें लिखा है गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता ने।

एक मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना ने सनावद मध्य प्रदेश से और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप ने, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, मुकेश कश्यप और शीतल कश्यप ने दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मैसेज भेजा। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने खरगोन एमपी से, और ये संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भारत, कमल और सभी ने लिखा है हमें पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर पंजाब से। ये मैसेज हमें मिला है कहां से, देखें जरा, राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष ने हमें मैसेज भेजा। और इसके अलावा चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल और जमशेदपुर से हमें ये मैसेज भेज रहे हैं। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा का मैसेज भोपालगढ़ राजस्थान से। उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और पूरे परिवार का मैसेज बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने हमें लिखा है नई दिल्ली जनकपुरी से। रमेश अरोड़ा बाजार सीताराम दिल्ली से लिख रहे हैं और अनु बटजात्या ने मुंबई से हमें मैसेज भेजा। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय का मैसेज। और तेलंगाना निजामाबाद से हमें लिखा है शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना ने, और ये मैसेज हमें लिखा है कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान फारिया और ताहिरा ने। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का मैसेज। कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल कुनाल का मैसेज हमें दादरी गेट भिवानी से मिला है। तो भाई और मैसेजेस को भी जरूर शामिल करती चलूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे का क्रिस्टल वॉइस, और अगला गीत जो मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं, इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी और डॉक्टर प्रियम थांदी ने, बेबी वामिका और वाणी थांदी के साथ नवा शहर पंजाब से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत फिल्म धरती कहे पुकार के, लता जी और मुकेश साहब की आवाज में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार।

होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ। 10:44:48 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं दिल का मेल बॉक्स के बहाने, अपनी फरमाइशें हमें भेज रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और कुछ मैसेजेस को शामिल कर लेती हूं। तो हमारे पास मैसेज मिला है मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका का, श्री गंगानगर राजस्थान से, और हमें लिखा है किसने, देखें जरा भाई, बहुत सारे मैसेजेस हैं। ओम प्रकाश तेगचंदानी ग्रेटर कैलाश दिल्ली से हमें लिख रहे हैं, और हमें लिखा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ने शांतिनगर सोनीपत से, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से लिख रहे हैं अजीत कसाना के साथ। और इसके अलावा हमारे पास महेश अग्रवाल, मीरा अग्रवाल का बहादुरगढ़ से मैसेज, पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं, हमें लिखा है ये मैसेज किसने, भाई आपके नाम बहुत ढूंढे नहीं मिलते, मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से हमें लिख रहे हैं। और सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का अलीगढ़ से मैसेज पहुंचा, साथ ही हमें लिखा है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि नोकेलाल, और इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ भाटापारा से, रोशन लाल देवांगन, हिमलता देवांगन, कौशल्या देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, रिजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का राजस्थान से मैसेज, और राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार गांव फ्रांसी हिसार से, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और इड्डा भाटिया का मैसेज, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का राजस्थान सीकर से मैसेज, और तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, मेघा मस्कीन, चैतन्य चंडीगढ़, राहुल से चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना, भाई पूरे लगता है कि पूरे कस्बे का आपने नाम लिख दिया है। कोशिश करिए कि एक ही मैसेज में इतनी जगह से नाम ना लिखें, क्योंकि हमें दिक्कत होती है समझने में कि कहां से मैसेज आया है। योगेश शर्मा फरीदाबाद से हमें लिख रहे हैं, सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश, प्रणाली सर्वत सानवी और कल्पना का मैसेज हमें मिला है जाफराबाद से, और हमें लिखा ये किसने, तिलंगपुर कोटला से मधुबाला का मैसेज हमें मिला, विजय नारंग नन्हे पहलवान का बाजार सीताराम से, भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव का दिवेंदु भूषण संस्कृति पुरुष के साथ व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से मैसेज, और रवि लता प्रिया विनी का भिलाई से मैसेज, ये मैसेज हमें मिला है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार का, रामदेवरा से दिनेश चौहान का, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा का मैसेज, और हमें लिखा है बांगड़ा सिवान बिहार से अकबर हुसैन ने और बाल बांगड़ा ने, ओके सिवान बिहार से हमें लिख रहे हैं। और इसके साथ हमें ओमकारिणी गुप्ता, शशि गुप्ता, ओमांशी गुप्ता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल, कुणाल का हमें दादरी गेट भिवानी से मैसेज मिला, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान, फैजान आबाद का मैसेज गंजुंडवाड़ा से, और दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू का मैसेज, और ये सीता कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा का मैसेज, एकता कॉलोनी रोहतक से हमें लिखा है सुनील गायकवाड़, राजवीर, सुषमा और अनन्या ने कहां से ये तो नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा हमें हेमा गुड़गांव से लिख रही हैं और सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी से ये मैसेज, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनास, राधा नामदेव का लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमें पहुंचा, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का रिंगनी छत्तीसगढ़ से मैसेज, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन वक्त रहा तो जरूर कोशिश रहेगी सभी को शामिल करने की। बेबी आलिया, आयान बाबू, नौशाद सलमानी का मैसेज हमें मिला है निसार सलमानी के साथ, कहां से, तेलीवाड़ा धनौरी से, और एक मैसेज और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर अंसारी, मेहराज जहां, आजाद नगर से हमें लिख रहे हैं, लक्सर हरिद्वार से, बाकी के मैसेजेस को भी कोशिश करूंगी शामिल करूं। फिलहाल एक गीत शामिल करती हूं और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है किसने, ये गीत हमें लिखा है इसकी फरमाइश हमें भेजी है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना ने, खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, और सुदामा नगर खंडवा से हमें लिखा है किसने, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋषु, मुकेश, जगताप ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत। फिल्म बातों बातों में
और आशा जी और अमित कुमार की आवाज़।

भैया वक्त बहुत कम बचा है और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गीत आप तक पहुंचे, इसलिए कुछ मैसेजेस और शामिल कर लेती हूँ। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का मोहाली चंडीगढ़ से मैसेज, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का कालका से मैसेज हमें पहुंचा, गांव नथाना से हरजिंदर छिंदा, शस्वीर जस्सी, सीता और गीता का मैसेज, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, नसरीन अंसारी, राशिद हुसैन अंसारी का जैन मंदिर वाली गली कुरावली से मैसेज पहुंचा, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मैसेज, चंडीगढ़ सिटी से सतीश, अनीजा बिमला, अनीजा का मैसेज, राशिद हुसैन अंसारी का मैसेज हमें पहुंचा है, कहां से नहीं पता। और इसके अलावा हमें गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी का मैसेज, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, वसंत राव भोजने, पी एस नहावकर का मैसेज, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का मैसेज, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, बन्ना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का मैसेज, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधुनायक का पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से मैसेज, गंज डुंडवाड़ा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा अदनान खान, अनु खान का मैसेज और जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल विलिस का मैसेज, जनकपुरी सहारनपुर से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या भाई, सुच्चा सिंह पाठक का अनारकली बाजार जगराव से और नई बस्तीगंज डुंडवाड़ा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद खलीम अंसारी का मैसेज, उमेश कुमार का भी मैसेज हमें मिला है और बहुत सारे मैसेजेस लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कोशिश तो रहती है कि सभी को शामिल करें पर समय की कमी रहती है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान रजान अबान और पूरे परिवार का मैसेज बुलंदशहर से हमें पहुंचा है और हमें लिखा है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवाड़ा से अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, आफ्ताब ने और इसके अलावा राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, शुभचंद्र का मुल्लापुर दाखा से मैसेज हमें मिला, उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार का खयाला से, भागवत वर्मा, शांति वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा का दत्तरेंगी से मैसेज हमें पहुंचा है और इसके अलावा हमारे पास मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान उस्मान यासीन का मैसेज गंज डुंडवाड़ा कासगंज से, सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव का डाबकी रोड अकोला से ये मैसेज हमें मिला है, संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपा डिंगिया का बागपत उत्तर प्रदेश से और कुछ लोग थोड़े से सयाने हैं ज्यादा ही कि वो एक ही नाम को कई मैसेजेस में भेजते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, एक ही मैसेज भेजिए काफी होगा। शाहरुख फारूक, शबनम, शहनाज का जय विहार नजफगढ़ से मैसेज पहुंचा है और हमें लिखा है बेबी, ये मैसेज भी हम ले चुके हैं और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेज हैं लेकिन वक्त बहुत कम है। उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और पूरे परिवार का मैसेज हमें बुंदेलखंड से पहुंचा है और अब मैं एक गीत शामिल कर लेती हूँ। इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है, चलिए देख लेते हैं। ये गीत हमें लिखा है कस्बा गनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा ने और इस गीत को सुनना चाहा है कस्बा गनौर यूपी से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत कंचन जी और शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ में।

0: और अब जल्दी से कुछ नाम और शामिल कर लूं। दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब लड्डू ने हमें लिखा है रघुवीर नगर से। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा है देव शंकर तामुरिया का, और साथ ही अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डोली बेबी पूजा तामुरिया का, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश यूपी से लिख रहे हैं तिलक राज अरोड़ा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस सफर से इतना ही। इजाजत देती हूं, आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। फिर से मिलूंगी 11:10 पर लेकर तस्वीर। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी CEPA समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है।

जी हाँ, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 11:11 और 6 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस। तस्वीर का ये सफर जिसमें हर दिन हम आपको किसी न किसी खूबसूरत जगह की सैर पर लेकर चलते हैं। तो आज कहाँ ले चल रही हूँ बता दूँ? चलिए आज हम चलेंगे तेलंगाना के ऐतिहासिक शहर वारंगल घूमने के लिए। बेहतरीन जगह है ये, हैदराबाद से वीकेंड पर घूमने के लिए ये एक लोकप्रिय स्थान है और वारंगल में इतिहास, सांस्कृतिक जीवंतता, वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां और मनमोहक प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हैदराबाद से करीब करीब 148 किलोमीटर की दूरी पर है ये वारंगल शहर। देश के बाकी हिस्सों से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। 12वीं से 14वीं शताब्दी तक काकतीय शासनकाल के दौरान सत्ता का केंद्र रहा है वारंगल। अब एक धरोहर शहर है जहां अनगिनत दर्शनीय स्थल हैं और वारंगल किला, कुश महल ऐसी कई इमारतें हैं जो अतीत के निशान प्रदर्शित करती हैं। या आज भी कहें तो अतीत को आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं हजार स्तंभ मंदिर, रामप्पा मंदिर जैसे कई प्राचीन मंदिर भी यहां पर मौजूद हैं जो आध्यात्मिक वातावरण से यहां आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और अगर मैं बात करूं यहां के पर्यटन की तो यहां का जो प्राकृतिक अनुभव है, जो पर्यटक यहां आकर प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, ये भी अपने आप में बहुत खास है। समृद्ध जीव जंतुओं और वनस्पतियों को देखने का मौका भी आपको यहां पर मिलेगा। झीलें, वन्य जीव अभयारण्य और मनमोहक चट्टानी संरचनाएं प्रकृति प्रेमियों को यकीनन अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य कला की उत्कृष्टता से भरपूर वारंगल पर्यटन प्रेमियों के लिए एक बहुत ही यादगार जगह है या पर्यटन है और अतीत की भव्यता और प्रकृति की सुंदरता दोनों के बीच कुछ दिन बिताने के लिए अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो वारंगल से बेस्ट आपके लिए और कुछ तो नहीं मिलने वाला है। जल्दी से वारंगल की यात्रा आप प्लान कर सकते हैं अगर आप यहां पर जाना चाहते हैं। सब कुछ बताऊंगी इस जगह के बारे में, लेकिन पहले ये बता दूं कि आप हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ। तस्वीर के इस सफर में वारंगल की यात्रा पर निकले हैं आज हम और आप। तेलंगाना का ये शहर, ऐतिहासिक शहर वारंगल, सब कुछ बताऊंगी इसके बारे में, जुड़े रहिएगा। लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं इस सफर को इस गीत के साथ और ये गीत जीवन मृत्यु फिल्म से रफी साहब और लता जी की आवाज में। ये रहा आपके लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में

0: बाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
5: नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरविंदर मांकड़, एक राइटर, एक कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर। आप मुझे मेरे करैक्टर मोटू पतलू से अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 50 साल से मैं उसे लिख रहा हूं और ड्रा भी कर रहा हूं और टीवी पे भी आ रहे हैं। संपत चंपत शेख चिल्ली और ना जाने ऐसे 500 करैक्टर्स आप सबके मोहब्बत और प्यार से इस दुनिया में मशहूर हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आकाशवाणी के बारे में। जी हाँ, मेरा बचपन जिसके साथ बीता, आज 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी अपना 90 वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था, उसके अंदर एक प्लास्टिक की तार जैसी एक लाइन होती थी और एक गोल स्विच होता था जिसको हम मैनुअल घुमाते थे और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता था। लेकिन मुझे आकाशवाणी की जो सबसे सुंदर लगती थी सुबह सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून आती थी सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले, यकीन माने कि मैंने एक एक प्रोग्राम को नोट किया हुआ था, जैसे कि 9 बजे ये आएगा, 6 बजे ये आएगा। मुझे आज तक याद है कि 9 बजे हवा महल आया करता था, 7 बजे फौजी भाइयों का फरमाइशी प्रोग्राम आता था, चित्रमाला आता था और इसके अलावा बहुत सारे और बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों के कार्यक्रम, विविध भारती का अपना एक अलग मजा था क्योंकि टीवी होता नहीं था, रेडियो एकमात्र साधन था। तो एक ट्रांजिस्टर मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था जो मैं रात को हवा महल जिसपे सुना करता था। समय बीता, मुझे याद है ये 1977 की बात है, मैं 12 या 13 साल का था। तो उस समय धर्मवीर फिल्म रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई की और जहां तक मुझे लगता है पहला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, प्रायोजित गाना रोज सुबह 9:30 के आसपास बजता था मोहम्मद रफी की आवाज में, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। तो मैं कहीं भी खेल रहा होता था, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम होता था कि अब 9:30 हो गए, मैं भागता हुआ घर आता था और मोहम्मद रफी साहब का वो गीत, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ये सुना करता था। इतना पसंद था मुझे। और बहुत सारे किस्से आकाशवाणी के साथ मेरे, हर दम रेडियो का दीवाना हुआ करता था मैं। बेशक आज टीवी आ गया है, बेशक आज बहुत कुछ आ गया, मगर आज भी मेरी जो पसंद है वो विविध भारती होता है या आकाशवाणी का गोल्ड होता है, क्योंकि पुराने गाने बजाते हैं, संस्कारी गाने बजाते हैं और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उलझुल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।
6: जी हाँ, ऐसा कौन है जो आकाशवाणी से प्यार नहीं करता? आप भी तो करते हैं, तभी तो जुड़े रहते हैं हमारे साथ। इतना हम चाहे ब्रेक लें, चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन आप कहीं नहीं जाते, आप हमेशा दिन में 24 घंटे, रात में, दिन में, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। फिलहाल 11:28:23 हो चुके हैं और बातें बहुत ज़्यादा नहीं करूंगी। जल्दी से आपको बता दूं कि हम घूम रहे हैं वारंगल, और वारंगल तेलंगाना जो राज्य है इसका ज़िला मुख्यालय है। ये राजधानी हैदराबाद से 148 किलोमीटर की दूरी पर है। दक्कन पठार के पूर्वी भाग में बसा वारंगल शहर खासतौर से पहाड़ियों और अलग अलग प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं से बना है। भारत सरकार की विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत शहर को 12 विरासत शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। वारंगल को पहले ओरुगलु के नाम से जाना जाता था। ओरु का अर्थ होता है एक और गलु का अर्थ है पत्थर या पहिया। ओरुगलु या ओरुकलु नाम से ये संकेत मिलता है कि वारंगल शहर एक ही पत्थर या पहाड़ी पर बसा हुआ है और इसे टोलिनी कोरनकुला अक्षली नगरम और वोराकली नामों से भी जाना जाता था। रघुनाथ भास्कर द्वारा रचित साहित्यिक कृति अराबिन कोसम में इसका उल्लेख एक शिला नगरम के रूप में भी मिलता है। वारंगल का इतिहास 12वीं से 14वीं शताब्दी के काकतीय शासनकाल से जुड़ा है। काकतीय शासनकाल में शहर ने काफी तरक्की की। उस काल के स्थापत्य अवशेष वारंगल के गौरवशाली अतीत की झलक पेश करते हैं और इसी काल में वारंगल किला, हजार स्तंभ मंदिर, रामप्पा मंदिर आदि जैसी प्रसिद्ध संरचनाओं का निर्माण भी हुआ था। काकतीय शासन के अंतिम शासक प्रताप रुद्र द्वितीय थे। काकतीय शासन का अंत हुआ 1323 में। वारंगल दिल्ली सल्तनत के अधीन आया और बाद में इस पर मुसुनुरी नायकों का कब्जा हुआ जिन्होंने 50 सालों तक यहां शासन किया और एक संधि के माध्यम से वारंगल बहमनी सल्तनत और आखिरकार गोलकोंडा सल्तनत के अधीन आ गया। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा बना और हालांकि राज्य के विभाजन के बाद वारंगल शहर तेलंगाना का हिस्सा बन गया। तो आज हम इस जगह की सैर पर निकले हैं और इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगी मैं आपको, लेकिन फिलहाल आपको इंतजार है गीत का। तो चलिए एक खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाती हूं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस सफर में। जुड़े रहिएगा मेरे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और हम आज निकले हैं वारंगल की यात्रा पर। दोस्तों, वारंगल तेलंगाना में मौजूद एक खूबसूरत शहर है जहां घूमने के लिए आपको जरूर कभी ना कभी प्लान करना चाहिए। वारंगल में देखने के लिए बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जिनको देखकर सचमुच आप यहां के इतिहास का, यहां की बहुत सारी कह सकते हैं कि अलग अलग चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समृद्ध है अपने आप में ये शहर। वारंगल देखने अगर आप जाएं तो इसे पर्यटकों का अगर पसंदीदा शहर कहूं तो कई वजह हैं यहां पर जिनकी वजह से ये यहां आने वालों के लिए काफी पसंद किया जाता है। किले से लेकर मंदिर, झीलें और अभयारण्य तक वारंगल में कई ऐसे पर्यटन स्थल मौजूद हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। वारंगल में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक हजार स्तंभ मंदिर है जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और इस मंदिर में त्रिकुट लयम समर्पित है और ये भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की पूजा के लिए यहां पर जाना जाता है। ये मंदिर हमनकोंडा में स्थित ये मंदिर आज भी अपनी प्रभावशाली

वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है और इसका निर्माण राजा रुद्रदेव ने करवाया था, जिसकी वजह से इसे श्री रुद्रदेव स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शहर के बाकी प्राचीन तीर्थ स्थलों में भद्रकाली मंदिर, समक्का सरलामा मंदिर और रामप्पा मंदिर, जिसे राम लिंगेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये सभी शामिल हैं। आप यहाँ पर जा सकते हैं। वारंगल में घूमने लायक और महत्वपूर्ण जगहों की बात करें तो यहाँ का किला है, जिसका ऐतिहासिक महत्व भी उतना ही है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था और अब किले के कुछ अवशेष ही यहाँ बचे हैं, जो इसकी स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। 14वीं शताब्दी में निर्मित और बाद में कुतुबशाही वंश के गवर्नर शिताब खान द्वारा उपयोग किया जाने वाला खुशमहल भी अपनी भव्य संरचना से आपको प्रभावित करेगा। आप यहाँ भी जा सकते हैं। वारंगल इतिहास प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हालांकि अगर आप शांतिपूर्ण अवकाश की तलाश में हैं, छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो वारंगल की कई झीलों में से एक पर जाकर सुकून के पल आप बिता सकते हैं। वारंगल की सबसे लोकप्रिय झील लखनवरम झील है। 10,000 एकड़ भूमि में फैली ये झील अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता से यहां आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। हरे भरे वातावरण से घिरा विशाल जल का ये क्षेत्र और उस पर बना झूलता हुआ पुल, जिस पर चलकर आप यहां की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, एक यादगार अनुभव आपके लिए हो सकता है। बाकी झीलें भी उतनी ही सुंदर हैं यहां पर, जैसे कि पाखल झील, जिसका निर्माण काकतीय शासनकाल के दौरान 1213 ईस्वी में हुआ था। वारंगल से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित एतुर नगरम वन्य जीव अभयारण्य ये भी देखने लायक एक जगह है। और वारंगल की यात्रा के दौरान घूमने लायक एक और जगह है कावेरी नदी के किनारे स्थित ये वन्य जीव अभयारण्य। समृद्ध वनस्पति और दुर्लभ वन्य जीवों से भरपूर है, तो आपको यहां पर भी जरूर जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं वारंगल यात्रा के दौरान घूमने के लिए काकातिया रॉक गार्डन की, तो ये भी बहुत खूबसूरत है, या फिर काकातिया म्यूजिकल गार्डन, वारंगल प्लैनेटेरियम, वन विज्ञान पार्क, रामप्पा झील, घनपुर मंदिर समूह और पद्मक्षी मंदिर, कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। और एक और आकर्षण है यहां पर, जो हाल ही में यहां पर ऐड हुआ है, जिसे क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र वारंगल के तौर पर जाना जाता है, यहां पर भी आप जा सकते हैं। तो बहुत कुछ है इस जगह पर घूमने के लिए और ये शहर आपको हर तरह से एक यादगार अनुभव देगा। एक सैलानी के तौर पर आप यहां जाएं, इस जगह को, शांति को, इसकी खूबसूरती को महसूस करें और यहां कुछ समय बिताएं, तो सचमुच आपके लिए ये बहुत ही यादगार ट्रिप होने वाला है। अभी तो एक गीत सुनाती हूं आपको और गीत के बाद कुछ और जानेंगे इस जगह के बारे में। संगम फिल्म से मुकेश साहब की आवाज में ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो भाई वारंगल पहुंचना कैसे है ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। वारंगल में अपना मुख्य रेलवे स्टेशन है और इसके अलावा काजीपेट जंक्शन भी है यहाँ पर, जो बहुत पास है। हैदराबाद से वारंगल के लिए रोजाना लगभग दर्जनों ट्रेनें यहाँ के लिए चलती हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस, कोणार्क एक्सप्रेस और शताब्दी जैसी प्रमुख ट्रेनें उपलब्ध हैं। यात्रा में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है अगर आप हैदराबाद पहुंचते हैं तो वारंगल जाने के लिए, और बाकी शहरों से ये स्टेशन जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों से भी चलने वाली कई नियमित ट्रेनें यहां पर अच्छे से समय पर पहुंचती हैं। तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है ट्रेन से, तो आप इसके अगर आप यहां पहुंचना चाहते हैं तो बाय ट्रेन आप यहां पहुंच सकते हैं। अगर सड़क की बात करूं तो वारंगल शानदार सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए आसपास के शहरों और राज्यों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है और राज्य की राजधानी हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप अपनी गाड़ी, कैब या तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन बसों के जरिए NH 163 होते हुए 3 से 3.5 घंटे में यहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं बाय एयर यहां पहुंचने की, तो वारंगल के लिए कोई कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है। अगर आप हवाई जहाज से यहां पहुंचने की प्लान कर रहे हैं तो सबसे करीबी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। यहां पर आप पहुंच सकते हैं और अपने किसी भी शहर से आप यहां के लिए फ्लाइट लेकर आसानी से पहुंच सकते हैं। और इसके बाद वारंगल की जो दूरी है इस एयरपोर्ट से वो 180 किलोमीटर के करीब है, तो यहां से आप टैक्सी या फिर किराए पर कोई भी कन्वेंस लेकर यहां पहुंच सकते हैं। जैसे ट्रेन या बसेस के जरिए भी आप वारंगल आसानी से पहुंच सकते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सबसे अच्छे समय की अगर मैं बात करूं तो यहां पहुंचने का या यहां जाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के महीने। कई पर्यटक मानसून के मौसम में भी वारंगल घूमने की योजना बनाते हैं, तो ये जो मौसम है ये बहुत ही खूबसूरत रहते हैं यहां पर, आपको इन मौसमों में ही यहां जाने की कोशिश करनी चाहिए वैसे। और अगर मैं बात करूं इस जगह की, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने के लिए हैं, जैसे काकतीय वास्तुकला, जो ऐतिहासिक धरोहर और वास्तुकला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह है जो आपको मिलेंगी। वारंगल किला, हजार स्तंभ का मंदिर, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल रामप्पा मंदिर, ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ अगर मैं बात करूं तो तेलुगु संस्कृति बहुत ज़्यादा है, यहाँ की मुख्य भाषा तेलुगु है, जिसके साथ उर्दू भी काफ़ी स्तर पर बोली जाती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो काफ़ी धार्मिक सद्भाव यहाँ देखने के लिए मिलता है, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कला और शिल्प की, तो यहाँ पर वारंगल के पास पेम्बारती और अपने उत्कृष्ट पीतल के हस्तशिल्प धातु की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। पेम्बारती एक कला है जो कि यहाँ पर काफ़ी जानी जाती है, पेम्बारती पीतल के बर्तनों के लिए। और इसके अलावा चरियाल पेंटिंग्स का भी यहाँ पर आप चलन देखेंगे, चरियाल स्क्रॉल पेंटिंग भी यहाँ पर काफ़ी मशहूर है, कहानियों और चित्रों के जरिए ये लोक कला को दर्शाती है, यहाँ की स्थानीय लोक कला को। इसके अलावा शहर अपने हैंडलूम, रेशम की बुनाई और हथकरघा उत्पादों के लिए भी जाना जाता है, तो आप ये सब यहाँ पर देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। और इसके यहाँ के अगर प्रमुख त्योहारों की बात करूं तो माथुकम्मा तेलंगाना का ये प्रसिद्ध फूलों का त्योहार है जो वारंगल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं रंग बिरंगे फूलों से देवी का सम्मान करती हैं। और इसके अलावा समक्का सरलम्मा जतारा, वारंगल जिले के मेदराम में लगने वाला ये मेला भारत का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार माना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। यहाँ के व्यंजन भी बहुत ही चटपटे और स्वादिष्ट होते हैं, हैदराबादी बिरयानी, मिर्ची का सालन और अलग अलग तरह के शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन आपको यहाँ की संस्कृति में अहम हिस्सा नजर आएंगे और आप इनका स्वाद भी यहाँ पर चख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो खादी और सूती वस्त्र, पीतल के बर्तन जैसा कि मैंने कहा, काकतीय शैली के पत्थर के खिलौने और स्थानीय मसाले आप यहां से खरीद कर अपने घर भी ला सकते हैं, तो ये भी बहुत खास है इस जगह पर। और अभी क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं, जैसे लेपाक्षी हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम है यहाँ, और इसके अलावा DW CRA बाजार है जो कि यहाँ हस्तशिल्प के लिए काफी मशहूर है, और इसके अलावा यहाँ का काकाजी मार्केट या फिर JPN रोड पर एक अच्छा मार्केट है जो कि आप यहाँ से बहुत सारे आभूषण या परिधानों को खरीद सकते हैं और अपने घर ला सकते हैं, या गिफ्ट के तौर पर भी आप इन्हें लेकर आ सकते हैं किसी को देने के लिए। तो भाई वारंगल में क्या नहीं है, बहुत कुछ है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो वारंगल आपको किसी भी तरीके से निराश नहीं करेगा, आपको एक बार वारंगल की यात्रा जरूर करनी चाहिए। फिलहाल एक और खूबसूरत गीत आप तक पहुंचा रही हूं, उसके बाद आगे क्या है जरूर बताऊंगी।

तो दोस्तों तेलंगाना के वारंगल की यात्रा में तो आज इतना ही, लेकिन इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आज के लिए विदा। फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात जरूर होगी। इस गीत के बाद आप सुनेंगे समाचार हिंदी अंग्रेजी में। जुड़े रहिएगा 24/7 FM गोल्ड के साथ। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में

0: London.
1: कभी आपने गौर किया है कि घर के किसी शांत कोने में बैठा एक चेहरा बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। वो अनुभव, वो अपनापन जो सिर्फ हमारे बुजुर्गों के पास होता है। बुजुर्ग ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जिसमें बचपन की उंगली थामे हुए यादें हैं, डांट में छुपा हुआ प्यार है और हर मुश्किल में दिया गया सुकून है। हम अपनी जिंदगी की रफ्तार में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बार उन्हीं कदमों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। शायद जरूरत है बस थोड़ा सा ठहरने की और एक छोटा सा कदम उठाने की उनकी ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर हमारा कार्यक्रम घर आंगन, और आज है शुक्रवार, यानी ये है वो खास दिन जो हमने पूरी तरह समर्पित किया है हमारे बुजुर्गों को। जी हाँ, आज का कार्यक्रम है एक कदम बुजुर्गों की ओर। साथ ही दोस्तों, आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर पर। और आज आपके साथ इस सफर की हम सफर हूं मैं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए करते हैं आज के कार्यक्रम का आगाज।

फिल्म दो रास्ते में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और देखिए, दिल ने दिल को पुकारा तो मुलाकात तो होनी लाजमी है, और ये मुलाकात आपके साथ हमारी हो रही है। कहाँ? जी हाँ, कार्यक्रम जो शुक्रवार को हम विशेष तौर पर अपने बुजुर्गों को समर्पित करते हैं, तो ये कार्यक्रम है एक कदम बुजुर्गों की ओर। और देखिए, हम आपके साथ में हर दिन बहुत एक बेशकीमती बात आपके साथ साझा करते हैं। किस बारे में? जी हाँ, हमारी संस्था आकाशवाणी के बारे में। इस वर्ष ना आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण कर रही है। 9 दशकों की इस यात्रा में आकाशवाणी ने केवल समाचार, संगीत और कार्यक्रम ही नहीं दिए, बल्कि भाषा, उच्चारण और संवाद की एक समृद्ध संस्कृति भी विकसित की है। आकाशवाणी को लंबे समय से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की शुद्ध उच्चारण और संतुलित प्रस्तुति के लिए एक आदर्श संस्था माना जाता रहा है। स्पष्टवाणी, संयमित शब्द चयन और गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति इसकी विशेष पहचान रही है। एक समय था जब लोग शब्दों का सही उच्चारण सीखने के लिए आकाशवाणी के समाचार और कार्यक्रम ध्यान से सुना करते थे। वैसे वो काम आज भी किया जाता है, है ना? और बोलने की शालीनता और भाषा की सादगी ने इसे श्रोताओं के मन में एक विशेष स्थान दिलाया है। आज जब संवाद के माध्यम तेज और अनौपचारिक होते जा रहे हैं, है ना, तो ऐसे समय में आकाशवाणी हमें यह याद दिलाती है कि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और संवेदनशीलता का भी परिचय है। शब्द जब शुद्ध हो, स्वर जब संयमित हो, तो संवाद केवल सुना नहीं जाता, सम्मान के साथ स्वीकार भी किया जाता है ना?

0: आकाशवाणी एट 90।
1: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। और देखिए, हम लोगों का आपके साथ जो रिश्ता है वो कायम होता है आपकी ईमेल के माध्यम से। और ईमेल आप हमें कहाँ भेजते हैं? जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com। इंतजार है आपकी बातों का, आपकी राय का, आपकी शिकायतों का और आपकी प्यार भरी बातों का। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, है ना। कुछ लोग उम्र गिनते रहते हैं और कुछ लोग हर उम्र में जीना सीखते रहते हैं। सफेद बालों के साथ भी जिनकी आंखों में चमक बची रहती है, वही लोग सच में जीवन का आनंद लेना जानते हैं। बढ़ती उम्र जीवन का अंत नहीं बल्कि एक ऐसा पड़ाव है जहां इंसान धीरे धीरे खुद के और करीब आने लगता है। जिम्मेदारियों की भागदौड़ थोड़ी कम होती है और मन छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस करना सीखता है। आज अनेक वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं दोस्तों जो इस उम्र में भी ना पूरे उत्साह के साथ जीवन जी रहे हैं। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है बुजुर्गियत की, कि आप अपनी उम्र को स्वीकार करना सीखते हैं। आप जिस भी उम्र में हो, अपनी उम्र को स्वीकार करें, गरिमा के साथ स्वीकार करें, क्योंकि आप इस जीवन को जी रहे हैं, है ना। और देखिए, हम बात करते हैं कि बहुत उत्साह के साथ हमारे बुजुर्ग अपने जीवन को जी रहे हैं, तो उनमें से कोई सुबह की सैर को अपनी आदत बनाए हुए है, तो कोई संगीत में मन लगाता है, कोई बागवानी में सुकून ढूंढता है, तो कोई नई तकनीक सीखकर दुनिया से जुड़ा हुआ है। कभी पुराने दोस्तों से बातें करते रहनी चाहिए, कभी अपने मन का कोई शौक फिर से शुरू करना चाहिए, या बस शाम की चाय के साथ डूबते सूरज को निहार लीजिए अपने जीवन साथी के साथ। ये छोटी छोटी बातें जीवन को फिर से ताजा कर देती हैं। आखिर उम्र तो कैलेंडर के पन्नों पर बढ़ती है ना, जीवन तो दिल से जिया जाता है। इसलिए उम्र को दराज में रखिए और मुस्कुराहट को अपने चेहरे से दूर मत जाने दीजिए, क्योंकि दिल जवान तो जिंदगी जवान, है ना।

0: द ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ शरद कुमार की आवाज में ये गीत। दोस्तों, उर्दू शायरी की दुनिया का एक उजला अध्याय कल स्मृतियों में दर्ज हो गया। मशहूर शायर पद्मश्री से सम्मानित बशीर बद्र साहब के निधन से साहित्य जगत ने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जिसने मोहब्बत, रिश्तों, तन्हाई और इंसानियत को बेहद सादगी और गहराई से शब्द दिए। उनकी शायरी की खासियत यह थी कि वे सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनके अशार किताबों तक सीमित नहीं रहे बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। बशीर बद्र साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका एक बहुत मशहूर शेर भी याद आता है कि अजीब शख्स था, आंखों में ख्वाब छोड़ गया, वो मेरी मेज पे अपनी किताब छोड़ गया। बशीर बद्र साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके अल्फाज और उनकी शायरी आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उनका एक और गजल आपके सामने रख रही हूँ। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों की लौ से सितारों की जौ तक, चिरागों की लौ से सितारों की जौ तक तुम्हें मैं मिलूंगा जहां रात होगी। जहां जहां वादियों में नए फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बशीर बद्र साहब, आपको हमारी श्रद्धांजलि।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: स्वागत है दोस्तों कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। हमारे साथ हमारी एक श्रोता जुड़े हैं और ये है हमारे

और लिख रहे हैं कि इस उतार चढ़ाव भरे जीवन में बहुत सारी अच्छी खराब और अच्छे खराब अनुभव से परिपूर्ण है, पर जो जिस टाइम सीख मिले उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। सही बात है, बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में स्वीकार्यता को लेकर चलेंगे, जो चीज़ जहाँ से मिली उसे ग्रहण करेंगे, तो जिंदगी में हम लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ साझा करते हैं बहुत उपयोगी जानकारी। आज ना दोस्तों, तकनीक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि वरिष्ठ नागरिक भी डिजिटल सुविधाओं से आसानी से जुड़ सकें और उन्हें जरूरी सेवाएं सरलता से उपलब्ध हों, है ना। और इसी दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 22 मई 2026 को जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड की शुरुआत की है। अब जीवन ऐप जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार किया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं, आपातकालीन सहायता सेवाओं, वरिष्ठ नागरिक गृहों और अन्य जरूरी सुविधाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये ऐप जो है ना, ये वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरल रूप में विकसित किया गया है। और आपको क्या करना है, इसका उपयोग करने के लिए आपको अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करना होगा और अपने मोबाइल नंबर के जरिए आप इस ऐप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं या उनके जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो आवश्यक सेवाओं, योजनाओं और सहायता से जुड़ी जानकारी इस ऐप के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो शतायु डैशबोर्ड है ना, वो बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े प्रशिक्षित केयर गिवर्स यानी सहायकों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और इसके माध्यम से जो देखभाल सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, बढ़ती वरिष्ठ नागरिक आबादी के बीच ये पहल तकनीकी और संवेदनशीलता को साथ लेकर चलने की एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है ना। आप भी इस बात को मानेंगे ना, क्योंकि बदलते समय में तकनीक केवल सुविधा नहीं, सहारा भी तो बन सकती है। तो आइए ना, आप सभी इस ऐप का और इस डैशबोर्ड का ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं और जितनी हो सके उतनी सहायता आप इन तकनीकों के जरिए ले सकते हैं। और फिर क्या करना है, अच्छे अच्छे गाने भी सुनने हैं। कहाँ? FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

फिल्म कभी कभी में आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये बहुत प्यारा सा गीत। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की और बहुत सी शख्सियतें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण छोड़ जाती हैं, बहुत प्रेरक होती हैं और बहुत प्रेरणा देती हैं। ऐसी एक शख्सियत है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन से साबित कर देते हैं कि प्रकृति से प्रेम केवल शब्दों से नहीं कर्मों से होता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायी शख्सियत हैं केरल के अलप्पुझा जिले की 92 वर्षीय कोलकाइल देव की अम्मा, जिन्हें 25 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण लोग उन्हें प्रेम से फॉरेस्ट ग्रैंडमा या पेड़ों की अम्मा भी कहते हैं। देवकी अम्मा का जीवन किसी बड़े अभियान से नहीं दोस्तों, बल्कि एक व्यक्तिगत संघर्ष से बदलना शुरू हुआ। लगभग ना 4 दशक पहले एक दुर्घटना में पैर घायल होने के बाद वे धान के खेतों में काम नहीं कर पा रही थी। तब उन्होंने अपने घर के आसपास पेड़ लगाने शुरू किए। धीरे धीरे उनका यह प्रयास जो है ना, वो एक घने हरित क्षेत्र में बदल गया। आज लगभग 4.5 से 5 एकड़ क्षेत्र में फैले उनके तपोवन में 3000 से अधिक पेड़ और पौधे हैं, जिनमें कई दुर्लभ स्थानीय और औषधीय प्रजातियां भी शामिल हैं। उन्होंने वर्षा जल संरक्षण, प्राकृतिक खाद और पारंपरिक तरीकों से इस पूरे वन क्षेत्र को विकसित किया है। देवकी अम्मा का ये जो जीवन है, यह संदेश देता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि धैर्य, निरंतरता और प्रकृति के प्रति प्रेम से भी संभव है। जिस उम्र में लोग विश्राम की बात करते हैं, उस उम्र में भी वे धरती को हरा भरा करने में लगी हैं। सचमुच कुछ लोग पेड़ नहीं लगाते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए सांसें बचा कर जाते हैं।

फिल्म ममता में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। देखिए हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, ये हैं सुदर्शन मुखी, इनके साथ हैं अनीता मुखी और सिमरन मुखी, ये हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि इन्हें गाने और बातें और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी सुविधा क्या है। बिना दर्द के चल पाना, चैन की नींद सो पाना और अपने लोगों के साथ हंसते हुए कुछ पल बिता पाना, है ना। बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य केवल दवाइयों का विषय नहीं रह जाता, ये जीवन जीने के ढंग से जुड़ जाता है। समय पर उठना, थोड़ा टहल लेना, मनपसंद भोजन में भी संतुलन रखना और सबसे जरूरी मन को बेवजह की चिंता से दूर रखना। कई बार बुजुर्ग अपनी तकलीफें इसलिए नहीं बताते क्योंकि वे परिवार को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कभी ठीक नहीं होती। छोटी परेशानी हो या नियमित जांच तो उसे टालना नहीं चाहिए। एक और जरूरी बात, कभी भी अकेले ना रहें, अपने मित्रों से बात करें, पड़ोसियों से मिलना, बच्चों और नाती पुत्रों के साथ समय बिताना मन को हल्का रखता है। और ना एक चीज और बताएं, घर के ना काम करते रहिए, थोड़ा बहुत काम करने से ना मन भी लगा रहता है और शरीर भी हिलता डुलता रहता है। अपने मन का खाना बनाइए, दूसरों को भी खिलाइए और खुद भी खाइए। फिर एक और ना आपके साथ एक और जरूरी बात ये भी है कि अपने दिन की शुरुआत योग से कीजिए, अच्छे भजन सुनिए या फिर सुबह की सैर से करिए और बहुत छोटी छोटी आदतों से अपने आप को सक्रिय और खुश बनाए रखिए, क्योंकि आखिर जीवन की सांझ बेला में सबसे बड़ी बात केवल लंबी उम्र नहीं बल्कि स्वस्थ और सम्मान के साथ जीना है। क्योंकि जब स्वास्थ्य साथ होता है तो उम्र बढ़ने पर भी जीवन बोझ नहीं लगता, अपना लगता है। और हमेशा स्वस्थ रहने का एक और जो सबसे जरूरी माध्यम है वो है म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी आपको यहाँ नजर आएगी कहाँ पर, FM गोल्ड में। तो आइए सुनते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।

देखिए दिल तो आप हमारा ले लेते हैं अपनी बातों से। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं इदरीस सैफी जी, और वह कह रहे हैं कार्यक्रम हम भी सुन रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहिए। और देखिए दोस्तों, ये जो गाना आप सुन रहे थे ये था मिस्टर नटवरलाल फिल्म से, और गाया किसने था? किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर ने। अगर हम बात करें कि एक समय था जब दादा दादी को मोबाइल चलाना बहुत मुश्किल लगता था, फोन केवल बात करने तक सीमित था और ऑनलाइन दुनिया उनसे काफी दूर दिखाई देती थी, लेकिन समय के साथ अब तस्वीर बदल चुकी है। आज कई हमारे जो घर के हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने मोबाइल पर वीडियो कॉल करना सीख रहे हैं, ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं।

पुरानी दोस्तों से जुड़े हुए हैं और अपने बच्चों, पोते और पोतियों की तस्वीरें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग भजन सुनते हैं, पुराने गीत खोजते हैं, तो कई लोग अब ऑनलाइन योग और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी भी तो लेते हैं। और शुरुआत में ना उन्हें थोड़ी बहुत उलझन लगी, लेकिन जब परिवार धैर्य के साथ उन्हें सिखाता है तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कई बार ना जो हमारे नाती पोते होते हैं वो उनके सबसे अच्छे डिजिटल शिक्षक बन जाते हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया से जुड़ते समय सावधानी भी बहुत जरूरी है। अनजान लिंक, फोन कॉल या बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। परिवार के लोगों का मार्गदर्शन इस मामले में बहुत मददगार हो सकता है। असल में तकनीक की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वह दूरियों को थोड़ा कम कर देती है। और सच कहें तो जब दादी पहली बार वीडियो कॉल पर मुस्कुराते हुए कहती है ना कि हाँ अब मुझे सब आ गया, तो केवल मोबाइल नहीं पूरे घर का मन खिल उठता है, है ना? और बस हमारा मन भी खिलता है आपके साथ बात करके। तो आइए सुनते हैं चलते चलते हमारे कार्यक्रम का ये एक और गाना।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शुक्रवार का विशेष कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। और अब मुझे यानी आपके रेडियो हमसफर सोनाली को दीजिए आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

हर आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरु मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरु मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Supreme Court today directed all high courts across

0: साहित्य अनुरागी श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी भटनागर और आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भारतीय सिनेमा के कला महावृक्ष की गाथा सुनाते इस विशेष कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले आइए एक और ऐसी ही यात्रा पर चलें। याद करते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर, यानी 9 दशक प्रसारण पूरे करने पर उस सुप्रसिद्ध घोषणा को, ये आकाशवाणी है। आइए एक बार फिर उसी यात्रा पर चलें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आइए अब चलें फिर हमारी अपनी कलाकार बेमिसाल की यात्रा पर। श्रोताओं, आज की ये वेला साधारण नहीं है। आज भारतीय सिनेमा के उन आदि पुरुष की पुण्यतिथि है जिन्होंने अभिनय को एक दैवीय गरिमा दी, शहंशाह अदाकारी पृथ्वीराज कपूर। आइए इतिहास के उस झरोखे को खोलें जहां से इस कला महावृक्ष की अनूठी यात्रा प्रारंभ हुई। शुरू करते हैं फिल्म हरिश्चंद्र तारामती के इस गीत से, हेमंत कुमार की आवाज में। सुनिए

कानून की पोथियां छोड़ आंखों में अभिनय का स्वप्न लिए पेशावर का एक सुदर्शन युवक 1928 में बंबई आ पहुंचा। जेब में महज चंद रुपए थे, किंतु आत्मबल किसी सम्राट जैसा। स्टूडियो के द्वार पर खड़े पठान पहरेदार को जब इस युवा ने अपनी मातृभाषा पश्तो में पुकारा, तो उस आत्मीय स्वर ने सीधे भीतर का मार्ग खोल दिया। नियति का खेल देखिए, वे मात्र 10 दिनों तक वहाँ एक अवैतनिक एक्स्ट्रा के रूप में पृष्ठभूमि में खड़े रहे। 11वें दिन मुख्य नायक के न आने पर निर्देशिका की दृष्टि सीधे इस ओजस्वी व्यक्तित्व पर ठहर गई। ये फिल्म सिनेमा गर्ल के नायक का उदय था, जिसने सिद्ध किया कि असाधारण प्रतिभा कभी छिप नहीं सकती। आइए इसी बात पर सुनते हैं मुगले आजम फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर के सुर में।

मूक सिनेमा के मौन को लांघकर जब देश की पहली सवाक फिल्म 1931 की आलम आरा आई तो भारतीय सिनेमा को पृथ्वीराज कपूर के रूप में अपना सबसे वैभवशाली और गंभीर कंठ मिला। इसके बाद वे कलकत्ता के प्रतिष्ठित न्यू थिएटर्स के मुख्य स्तंभ बने। वहां राजरानी मीरा 1937 में, उसमें राणा कुंभा का किरदार निभाया। 1934 में सीता में भगवान श्रीराम और 1937 में प्रेसिडेंट जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में उनके निभाए चरित्र कालजयी बन गए। उन्होंने ये सिद्ध किया कि वे केवल रुपहले पर्दे के सम्राट नहीं बल्कि संवाद अदायगी के अप्रतिम व्याकरण हैं। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म परदेसी से मीना कपूर के सुरों में

प्लेबैक के दौर से पूर्व इन लाइव वाद्यों के साथ रिकॉर्डेड गीतों में कला और आनंद और ही थे, है ना? श्रोताओं, शहंशाह अदाकारी की इस सुनहरी दास्तां का सफर यूं ही जारी रहेगा, पर समय हो चला है एक छोटे से विराम का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं कुछ और बेमिसाल यादों के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। विज्ञापन के बाद भारतीय सिनेमा के इस सुनहरे सफर में आपका दोबारा इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे।

सिनेमा के शिखर पर रहकर भी पृथ्वीराज कपूर का अंतर्मन रंगमंच के लिए व्याकुल रहता था। इसी तड़प ने वर्ष 1944 में पृथ्वी थिएटर्स को जन्म दिया, एक ऐसा गतिशील कारवां जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संवाहक बना। विभाजन के दौर में उन्होंने दीवार और पठान जैसे नाटकों से देश में सांप्रदायिक सौहार्द की अलख जगाई। ये मंच केवल नाटक नहीं बल्कि कला जगत की महान नर्सरी जैसा था, जहां से शंकर जयकिशन, रामानंद सागर और राम गांगुली जैसे कालजयी विभूतियां निकली। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत मोहम्मद रवि साहब की आवाज में।

राजा अकबर बनकर इतिहास रच दिया। उनकी मेघमंद्र गर्जना और दबदबाती आंखें इस किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दी। नियति का चक्र देखिए, जिस अभिनेता ने कभी सिकंदर की भूमिका जी थी, उन्होंने ही सिकंदर आजम में उसके महाप्रतापी प्रतिद्वंदी राजा कोरस का किरदार निभाकर भारतीय स्वाभिमान का परचम लहरा दिया। और अभी इसी फिल्म से गीत आपने सुना। पृथ्वीराज कपूर जी का अभिनय कैनवस असीमित जैसा था। रुस्तम सोहराब का शौर्य, आसमान महल में ढहती नवाबी संस्कृति का गर्व और हीर रांझा की सुफियाना गरिमा, ये सब इस बात के गवाह हैं कि वे हर युग और विधा के निर्विवाद सम्राट थे। आइए सुनते हैं सुरैया की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, आइए यादों के इस झरोखे में एक छोटा सा विराम लेते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द ही लौटेंगे आपके और मनपसंद गीतों के साथ और पृथ्वीराज कपूर की सिनेमाई यात्रा पर चलेंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए पृथ्वीराज कपूर जी की कला यात्रा के अगले सुनहरे पन्ने को पलटते हैं। वे भारतीय सिनेमा के उस महावृक्ष की जड़ हैं जिसकी शाखाएं आज 5 पीढ़ियों से इस कला जगत को समृद्ध कर रही हैं। और वे इतिहास के ऐसे अनूठे अभिनेता हैं जिन्होंने आवारा में अपने पिता दीवान विशेश्वरनाथ और पुत्र राज कपूर के साथ और कल आज और कल फिल्म में स्वयं अपने पुत्र राज और पौत्र रणधीर कपूर के साथ 3 पीढ़ियों के जीवंत इतिहास को एक फ्रेम में समेट दिया। आइए सुने इसी फिल्म से मना डे के।

श्रोताओं, आज कलाकार बेमिसाल के इस विशेष झरोखे से हम उन विराट कला ऋषि को नमन कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक गौरवमयी संस्कार और शाश्वत अधिष्ठान दिया। कला के प्रति इनकी अप्रतिम तपस्या और राष्ट्र चेतना के कारण वे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे और राष्ट्र ने उनकी इसी अप्रतिम साधना को पद्म भूषण और सिनेमा के सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी अलंकृत किया। 29 मई 1972 को भले ही इस महानायक ने अपनी पार्थिव यात्रा को विराम देकर महाप्रयाण किया, परंतु उनकी कीर्ति और मेघ मंद्र स्वर आज भी काल के भाल पर अजर अमर है। आज उनकी इस पुण्यतिथि पर हम उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्हीं स्मृतियों के साथ अब इस गौरवमयी महफिल को यहीं विराम देने का समय आ गया है। सुनते रहिए आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रियांशी भटनागर का आपको सादर नमस्कार। छोड़ जाती हूँ आपको इस धुन के साथ।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज़ का यकीन दिलाया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफटॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संग मील तय किया है। आईएमडी ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की

0: 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसलों को 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसलों को सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि जाती आजादी के मामलों में तेज रफ्तारी से किए गए फैसलों की जरूरत होती है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की दरखास्तों में फैसले उसी रोज सुना देने चाहिए और अगर उन्हें महफूज रखा जाता है तो फिर उन्हें अगले ही दिन सुना देना चाहिए और अपलोड कर देना चाहिए। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशा होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा वाकया पेश नहीं आना चाहिए। डीडी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि बगैर किसी गलती के एक मुनज्जम और मुनासिब ढंग से दोबारा इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। तलबा से खिताब करते हुए प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: वजीर मौसूफ ने इस बात का फिर यकीन दिलाया कि बढ़ती हुई तशवीश के पेश नजर गलती से पाक इम्तिहान का इनेकाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इम्तिहान के अमल में मुस्तकबिल में किसी भी नाखुशगवार वाकये को रोकने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। भारत ने माहौल के लिए साजगार तवानाई के अपने सफर में एक तारीखी संग मील तय किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नई और काबिले तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत 40 लाख घरों को छत पर नस्ब किए जाने वाले शमसी तवानाई के निजाम की सहूलत फराहम कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि काबिले तजदीद तवानाई से मुतालिक एक पहल से भी ज्यादा इस यकसर तब्दीली लाने वाली स्कीम से शहरी महज तवानाई का खर्च करने वाले लोग नहीं रह गए हैं, बल्कि वो बिजली के पैदाकार भी बन गए हैं। इस स्कीम से कुनबे अपने बिजली के अखराजात में कमी कर सकेंगे, सरकारी सब्सिडी से फायदा उठा सकेंगे और बिजली के अखराजात पूरी तरह खत्म कर सकेंगे। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि हर घर में जब शमसी तवानाई होगी तो मुल्क तवानाई की यकीनी फराहमी माहौलियाती इस्तेहकाम और खुद कफील विकसित भारत के तसव्वुर को पूरा करने की जानिब बढ़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैन अलाक्वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरमी नाला और क्रीक इलाके का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सामने के सिलसिले में तबादले ख्याल करेंगे। टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक मजबूत मईशत के तौर पर उभरा है और इस्लाहात और साजगार पॉलिसी की बदौलत टेक्सटाइल शोबों में तेजी से तरक्की कर रहा है। आंध्र प्रदेश के अपने दो रोजा दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने कृष्णा जिले में मल्लावली सनती पार्क में मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत टेक्सटाइल मार्केट 15 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा के बकदर है और हुकूमत इसे 2030 तक 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तक ले जाने के लिए काम कर रही है। जनाब सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल सनद तेजी से वसत पा रही है और उन्होंने भारतीय दस्तकारों को वसी आलमी मंडी तक रसाई फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि पैदावार से वाबस्ता तरगीबात की स्कीम पैदावार बढ़ाने में मदद कर रही है और भारतीय ब्रांड्स को फरोग दे रही है। इसके अलावा टेक्सटाइल शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब कर रही है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तिजारत और सनत के 50 से ज्यादा सरबराहों के साथ एक गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। न्यूयॉर्क में भारत के कौंसलेट जनरल और भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की मेजबानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने भारत की तेज रफ्तार तरक्की इस्लाहात पर मबनी तिजारती माहौल और आलमी सरमायाकारों के लिए वसीतर मौके पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आलमी सरमायाकारों के लिए

0: मौके वसी करने, इस्लाहात पर मबनी कारोबारी माहौल बनाने के तई भारत के अजम को दोहराया। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अक़वामे मुत्तहिदा की अमन कायम करने वाली अफवाज के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर दुनिया भर में अमन कायम करने वाली यूएन अमन फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा के अमन कायम करने के मिशन के तहत अक़वामे मुत्तहिदा की अमन फौज में खिदमात अंजाम देने वाली बहादुर मर्द ख़वातीन फौजियों की सताइश की, जो आलमी सतह पर अमन व सलामती को बरकरार रखने के अपने अज़्म पर कायम है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमा आईएमडी ने मुल्क में इस साल जून से सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिश की पेशगोई की है। 2026 के मानसून के लिए दूसरे मरहले की ज्यादा दिन की पेशगोई करते हुए आईएमडी ने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान मामूल की बारिश होगी। उन्होंने मजीद कहा कि शिमाल मगरिब वस्ती और जनूबी जजीरा नुमा भारत में इस साल जून और सितंबर के दरमियान मामूल से कम बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कम से कम 6 कारकुन हलाक हो गए। ये लोग देर रात एक तूफान के दौरान एक जेरे तामीर पुल गिर जाने के हादसे में हलाक हुए हैं। ये पुल मोरा कंद्र से कंदौर गांव को मिलाता है, जो बेतवा दरिया पर तामीर किया जा रहा है। यह हादसा कल रात तकरीबन 2 बजे पेश आया, जब कुछ कारकुन बारिश के दौरान एक हाइड्रा मशीन के नीचे खड़े थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा सरकार इंटेल और 3DGS को भारत में सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक करारदाद पर दस्तखत करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम मजीद आगे बढ़ेगा। 2026 की एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एथलीट्स ने ट्रैक और फील्ड मुकाबलों में कई रिकॉर्ड बनाए। खवातीन के 100 मीटर्स मुकाबले में निपम ने 11.62 सेकंड की टाइमिंग के साथ कांसे का तमगा जीता। वो चैंपियनशिप के इस मुकाबले में तमगा जीतने वाली 25 साल भारत की पहली खातून बन गई हैं। नितिन गुप्ता ने 5000 मीटर्स के रेस वॉक में खिताब जीता और खवातीन की ट्रिपल जंप में साधना रवि ने 12.78 मीटर्स की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यदवेंद्र सिंह बैन अल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसकी फातेह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का सामना करेगी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफटॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संग मील तय किया है। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा हासिल किया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Nipam wins bronze.

0: अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने

और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को चार दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी सीईपीए समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने

0: आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी सुन रहे हैं हमें। और अब समय हो गया है कार्यक्रम उन्नत किसान का। लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ आरती,
1: और मैं हूँ आपके साथ राहुल।
0: जी बिल्कुल तैयार है हम लेकर आज का कार्यक्रम। और साथियों, आज का जो कार्यक्रम है ना, वो इतना कहूँ ज्ञानवर्धक रहेगा आपके लिए कि किस तरह से जो सूची

0: योजना है वो हमारी खेती को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद कर रही है और कितनी लाभकारी है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। सूचना प्रौद्योगिकी आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का विषय है सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि का विकास। हम सब जानते हैं कि हर क्षेत्र में आज टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है, सूचना तंत्र काम कर रहा है, और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें असंख्य जो अपार संभावनाएं हैं उसमें सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज इस पर विशेष चर्चा भी होगी। हमारे स्टूडियो में गेस्ट पधारे थे जिनकी आप बातचीत सुनेंगे। उनका नाम है डॉक्टर मनोज चौधरी, जिनसे बातचीत की है हमारी साथी कमलेश मुद्गल जी ने। और विषय, जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जानेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे आपकी मदद कर रही है और कैसे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, इस विषय पर आप ये सार्थक चर्चा सुनेंगे।
0: आइए तो सुनते हैं ये चर्चा।
2: समय समय पर हम अपने किसान बहनों और भाइयों के लिए नई नई जानकारी लेकर आते हैं। ये जानकारी सटीक होती है, ये जानकारी वो होती है जिनके बारे में हमारे हर किसान भाई बहन को पता होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ किसानों को मालूम भी हो और कुछ किसान उसका उपयोग भी कर रहे हो, लेकिन कुछ किसान किसी भूलवश या कई बार वो भयवश नहीं कर पाते हो कि मैं इसका उपयोग करूंगा तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इन सब बातों की जानकारी देने के लिए कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है या सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि का विकास कैसे हो रहा है, इस विषय पर आज विस्तृत जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनोज चौधरी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है NCIPM पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: जब भी हमारे किसान भाई या बहन बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, तो ये कहते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो क्या है, सबसे पहले प्रश्न तो यही आता है। तो हमारे किसान है, जो हमारे श्रोता है, उनकी जिज्ञासा आप कैसे शांत करेंगे?
3: जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्द है वो एक नया शब्द नहीं है, काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है। और इसमें दो चीजों का समावेश है, एक तो सूचना, जो सूचना हमारे पास आती थी पुराने तरीकों से आती थी, जैसे हम गांव में रहते थे तो एक दूसरे से जब लोग बात करते थे तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाके या कोई सभा हो रही है तब वो हमारे को कोई नई सूचना मिलती थी। अब जैसे जैसे तकनीक बढ़ी तो एक नई चीज आई, टेक्नोलॉजी, या हिंदी में बोले तो प्रौद्योगिकी। अब उस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कैसे हम सूचना को त्वरित अपने किसान भाइयों और जो भी खेती से जुड़ा हुआ है उसके पास पहुंचा सकते हैं, तो यह है सूचना प्रौद्योगिकी। इसका जो मुख्य मकसद है वो ये है कि जो भी सूचना आए अच्छी, किसानों के लिए जरूरी, उस सूचना को किसानों को समय पर सटीक और बढ़िया तरीके से पहुंचाया जा सके। और इसका जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सूचना प्रौद्योगिकी के बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी
2: जी। और जब हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और हम यही चाहेंगे कि जो भी हम खेती बाड़ी करें उसमें उत्पादन अधिक हो और हमें उसके उत्पादन के बदले में जो उसकी लागत है वो भी निकल जाए और मुनाफा हमें अधिक हो, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि जो आपने श्रम किया उससे अधिक आपको वो चीज मिल जाए। तो जब हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो क्या ये कृषि के विकास में कितने सहायक है?
3: अगर मैं बात करूं कि ये कृषि में कितने सहायक है तो मैं कहूंगा कि बहुत ही जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि जब हम आजाद हुए थे तो हमारी स्थिति क्या थी कि हमारे पास भोजन उतने पर्याप्त संख्या में नहीं था, हमारे वैज्ञानिकों ने अच्छा परिश्रम किया, हरित क्रांति आई, तो धीरे धीरे हमारे पास हम सेल्फ सफिशियंट हो गए कि हमारा जितना हमारे को खाद्यान्न चाहिए हम खुद उत्पादन करने लग गए। बट एक बात सोची जाए, ये चीजें किसानों तक पहुंची कैसे? कोई ना कोई माध्यम से पहुंची थी उस टाइम, जैसे हम रेडियो की बात करते हैं, इसके द्वारा जो प्रबल था उसके द्वारा पहुंची। अब वो ही जमाना आगे चलता गया, चीजें बढ़ती गई, आज हर किसी के पास में मोबाइल है, हर किसी के घर में टीवी है, तो वो सूचना प्रौद्योगिकी अब खेती में उस चीज का यूज हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो हरित क्रांति में जो हमारे संस्थान के वैज्ञानिक थे उस टाइम, स्वामीनाथन साहब, उस टाइम वही सूचना पहुंचाने के लिए उनको खेतों में जाके किसानों के साथ मीटिंग करनी होती थी। आज वही सूचना अगर मेरे को पहुंचानी हो, मैं रेडियो के माध्यम से जैसे आप बात कर रहा हूं तुरंत पहुंचा सकता हूं, यूट्यूब से बात कर सकता हूं, मैं आपको व्हाट्सएप से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, आप किसी भी दूसरे माध्यम से आपके पास वो सूचना तुरंत आ जाएगी। कोई भी नई तकनीक आई, आपने कोई नई चीज ईजाद की, उसकी सूचना आपके पास तुरंत आ गई, आप उसका इस्तेमाल करिए तुरंत और अपनी खेती में पैदावार बढ़ाओगे। जैसे कि भारत सरकार की जो पहल है कि हम इनकम दोगुनी कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी, अच्छी अच्छी चीजों की जानकारी होगी, उन्हीं का ही आप अपने खेती में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ इस सूचना प्रौद्योगिकी का दूसरा फायदा है, हम वैज्ञानिक पहले क्या होता था कि एक मेरी बात है वो आप तक केवल एक माध्यम से पहुंच सकती, आपको कैसी लगी या उसमें कुछ आपकी शंका है या कोई समाधान चाहते हो तो आपके लिए मुश्किल होता था वो बात को पहुंचाना। अब क्या है, सीधे आपके पास में मोबाइल है, सूचना प्रौद्योगिकी का दोनों तरीके से आप इस्तेमाल करके तुरंत आप हमारे से सहायता ले सकते हो, हम आपको तुरंत उसका समाधान भी बता सकते हैं।
2: जी, तो जब हम बात करते हैं जो हमारे पारंपरिक तरीके थे, तो

0: फसल का बीमा कराते हैं और बीमा की एक निश्चित राशि होती है। तो पहले क्या होता था कि आपने बीमा करवाओगे तो आपको या तो बैंक जाना पड़ेगा या किसी के पास जाना पड़ेगा, आप सीधा मोबाइल के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करा सकते हो, तो वो तो आसान हो गया। दूसरी समस्या आती थी कि बीमा हो गया, मेरी फसल ओले गिर गई या सूखा हो गया या बाढ़ आ गई या तो मेरी फसल चौपट हो गई, अब मैं क्या करूं। तो पहले होता था कि आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, आपके पास उनका कोई पर्सन आएगा, वो आपको बताएगा कि ये हो गया, वो आपकी फोटो खींच के ले जाएगा, उसमें आपको समय लगता था।
1: और कई बार ये होता कि टोल फ्री पर आप करते जा रहे हैं लेकिन वो अंगेज मिलता है, आपने किया मैंने किया, वो एक ही समय पर वो एक लाइन है, वो इतनी व्यस्त रहती है कि आपका जो प्रश्न है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: और दूसरा है कि उसका कैसे तरीके से, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपके पास आया पर्सन, जब पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत सारी चीजें हैं, उसका देखने का नजरिया अलग होगा और जो तकनीक होगी वो अलग होगी, आपका देखने का नजरिया और उस एजेंट का नजरिया अलग है। मैं तो कहूंगा कि मेरी फसल 100% नुकसान हो गई, वो कहेगा 50 हुई। तो इसका आप सूचना प्रौद्योगिकी से कैसे समाधान हुआ, तो हमारे बहुत सारे उपग्रह हैं, तो सरकार ने अब ये काम किया है कि उन उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाए और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके आपका इंश्योरेंस सुधा उसके द्वारा जोड़ के और सीधा पता कर लें कि कितना नुकसान हुआ है। अगर उतना नुकसान हुआ तो सीधे आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और इसका पायलट साल पूरे महाराष्ट्र में लागू किया गया और उनके सीधे खाते में वो रकम चली गई। तो ये एक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल है, ऐसे ही हर एरिया में हो रहा है। आपको किसी की रेट पता करनी हो या आगे क्या रेट होगी, कम होगी, तो वो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम पता कर पा रहे हैं और इससे किसानों को सुविधा तो हो ही रही है, इसके साथ साथ उनको जो पैदावार का जो सही मूल्य मिल रहा है उसको पाने में भी उनकी सहायता हो रही है।
1: तो डॉक्टर साहब देखिए, हमारा जो कृषि है वो मौसम पर आधारित है। अगर मौसम अच्छा है हमारी फसलें अच्छी होगी, मौसम में जरा सा बदलाव हुआ तो हमारी फसलें जो है या तो चौपट हो गई या उसका उत्पादन जो है कम हो गया, और वही किसान भाई बहन जो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी है इसमें वो हमारे कैसे सहायता करती है?
0: इसका सबसे आसान तरीका है एक तो कि एक मौसम ऐप है भारत सरकार का, वो ऐप आपके पास हो तो उसमें माध्यम से आप 3 या 4 दिन पता कर सकते हो। एक तो सबसे इजी तरीका ये। दूसरा, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का अगर आपके पास मोबाइल है, मान लो कि आप जो बड़ी स्क्रीन वाले मोबाइल यूज नहीं कर रहे हो, ज्यादातर मेरे किसान भाई और बहन छोटे मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उनके मोबाइल में जैसे ही मौसम खराब होता है जिस एरिया में आप हो अभी उसी एरिया में आपके पास तुरंत SMS आ जाएगा। इस SMS आने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आने वाले 2 दिन में ये बरसात हो रही है या कोई तूफान आने वाला है, दोनों चीजें आपको पता लग सकती है। अगर कई बार ये होता है ये तो तूफान और उसकी जानकारी है, बट मेरे किसान को चाहिए कि भाई मैं फसल की कब सोइंग शुरू करूं, कब उसको खेत में लगाऊं ताकि मेरे को कम पानी देना पड़े और मेरी फसल की अच्छी पैदावार हो, तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जैसे कि हमारे पूसा के हैं, आपके पास जो भी KVK होगा उसके हैं, तो वो आपको खबर देते रहते हैं कि इस साल मौसम गर्म रहने वाला है। जैसे कि अभी ज्यादातर एल निनो की वजह से बातें आ रही है कि मौसम गर्म रहने वाला है, तो अगर आपके पास पहले से वो खबर हो कि इस साल ऐसा रहेगा तो आप अपनी जो फसल का चुनाव करने वाले हो वो भी वैसी फसल का चुनाव करो कि जिसको पानी की थोड़ी कम लागत हो और जो गर्मी सहन कर सके। आप कोई किस्म लगा रहे हो तो वो किस्म आप लगा सकते हो कि जो थोड़ी सी गर्मी सहन करके भी अच्छी पैदावार दे सके। तो ये चीजें किसानों को दिनों दिन मिल रही है और जितने समय पे मिले उतने किसान के लिए फायदा है और वो उसी के अनुसार अपने जो फैसले लेने होते हैं, मैं कब लगाऊं, कौन सी फसल लगाऊं, कौन सी किस्म लगाऊं, तो ये ले सकते
1: जी। तो हमारे किसान दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब मिट्टी सबसे जरूरी और अहम हिस्सा होती है, अगर भी आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है, आपकी जो खेत की मिट्टी है उसमें किसी खनिज तत्व की कमी होगी या जो पोषक तत्व उनको चाहिए वो उसमें मिट्टी में नहीं मिले, तो उससे भी आपकी फसल जो है वो प्रभावित होती है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मिट्टी एक ऐसी चीज है जहां से पौधे की जीवन की शुरुआत होती है, और किसान के हाथ में अगर मैं बात कहूं तो 2 ही चीजें हैं जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, एक तो कौन सा बीज लगाना है और मिट्टी को कैसे तैयार करना है, क्योंकि पानी भी जो है वो ही मिलेगा। अब बात आई कि मिट्टी को मैं कैसे तैयार करूं, तो उसको तैयार करने से पहले, जबकि अभी खरीफ की शुरुआत होने वाली है, अभी बढ़िया टाइम है उसके पास, तो एक काम उसको करना चाहिए कि अपने खेत में से मिट्टी का सैंपल लें, और मिट्टी का सैंपल कैसे लेना है वो 5 जगह से अलग अलग ले और उतनी मिट्टी ले कि ऊपर वाली लगभग आधे फीट ओनली, ज्यादा गहरा नहीं लेना है, और उसकी जांच करवाए। अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र पे जाके जांच करवा सकता है या जो आपके जो कृषि विभाग के कर्मचारी हैं उसके माध्यम से जांच करा सकता है। जैसे ही आपकी उसकी रिपोर्ट आएगी तो उस रिपोर्ट में आपके पास आएगा कि मेरे खेत में नाइट्रोजन ज्यादा है या फास्फोरस कम है या क्या करना है। और इसके साथ साथ दूसरा काम, इससे आपको ये भी सहायता मिलेगी और भारत सरकार की अभी पहल चल रही है, हमारे कृषि मंत्रालय से ये काम चल रहा है 1 तारीख से 15 तारीख तक किसानों को जागरूक करें कि कौन सी फसल लगानी है और उसमें कितना खाद डालना है। तो ये चीजें आपको तब जानकारी मिल सकती है कि आप मिट्टी की जांच कराओ। ये तो पहली चीज आ गई, हम खुद लेवल पे कर सकते हो। अब इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे कर सकते, तो इसके लिए क्या है कि वही सरकार अलग अलग जगह पे जा रही है और उसमें सूचना प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल कर रही है सरकार, पता करने के लिए कि पूरे जिले में किस जगह कौन सी मिट्टी है और जैसी मिट्टी है उसी के आधार पर आपको सलाह दे और जो सलाह है आपके

0: खेत और आपके जो मंडल है या आपका गांव है उसके अनुसार आपको सलाह मिले, ताकि आप वो फसल वही यूज करो और उसी टाइप का खाद आपके एरिया में अच्छे से उपलब्ध कराया जा सके। मान लीजिए किसी एरिया में नाइट्रोजन की कमी है जमीन में या फास्फोरस की कमी है, तो उस एरिया में सरकार चाहेगी कि ज्यादा यूरिया अवेलेबल हो, क्योंकि वहां पहले से कमी है तो वहां ज्यादा अवेलेबल कर। तो ऐसी चीजें दिनों दिन आ रही है, उसमें आपको ये भी सलाह दी जाती है कि जहां आपकी नाइट्रोजन की कमी है पता लग गया तो आप उसमें पहले ढेंचा लगा लीजिए, या ऐसी मिश्रित खेती का इस्तेमाल करिए जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सके। जैसे कि आप कोई लगा रहे हो उनके साथ मिलेट्स लगा रहे हो या कुछ और लगा रहे हो, तो उसके साथ दलहनी फसलें लगाओ ताकि उसकी पूर्ति हो सके। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहले ही पता हो जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप अपनी फसल का उसी के अनुसार चेंज कर पाओ।
1: जी, जब उसमें फसल में कीड़े लग गए या उसमें अचानक कोई रोग आ गया तो तब भी हमारे किसान भाई बहन परेशान हो जाते हैं, और जैसे वो देखते हैं क्योंकि वो तो उसको अपने एक बच्चे की तरह से उस फसल को पाल रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं, ना वो सर्दी देखते हैं ना वो गर्मी देखते हैं, तो ऐसे में उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: ये आपने बहुत ही सही बात कही, एक बार फसल लग जाए तो किसान और हमारे को भी आदमियों को भी यही चिंता रहती है कि कोई बीमारी नहीं लग जाए, कोई रोग नहीं लग जाए। तो सरकार इसके प्रति बहुत ही चिंतित है, तो उन्होंने एक काम किया है। बार बार क्या होता है कि मोबाइल में बहुत सारे एप्स आ जाते हैं, कोई भी आके ये कह देता है ये यूज कर लो वो यूज कर लो, तो उसके लिए सरकार ने एक ऐप बनाया NPSS, राष्ट्रीय समेकित निगरानी प्रणाली, उसका पूरा नाम ये। उसमें आपको करना है कि आप खेत में जाना है और सिर्फ जो भी आपको दिखे कि मेरे पास रोग है या कीड़ा है, दो ही लगेंगे, उसकी आप एक फोटो ले लीजिए, ना आपको ये बताना है मेरी फसल कौन सी है ना कीड़ा बताना है, तो वैसे ही आपको मोबाइल तुरंत बता देगा कि मेरे खेत में ये कीड़ा है, उसका नाम बता देगा। उसके बाद आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आपको उसका नाम लेके आप अपने जो क्षेत्र का कृषि अधिकारी उससे बात करो कि मेरे खेत में ये कीड़ा है मैं क्या करूं, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। दूसरा, उसी एप में आपके पास ये दूसरा है कि उसमें आप पूछिए कि ये कीड़ा है, और उसके बाद अगला सवाल आपसे वो फिर पूछेगा कि इसका स्तर कितना है, क्या एक पौधे पे दो पौधे पे या काफी लेवल है, जैसे कि हमारी भाषा में उसे क्षति स्तर या ETL बोलते हैं, कि कितना नुकसानदायक है, कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ बताऊं जितने की मैं बताऊं उससे ज्यादा तो ये नुकसान ही नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि इसका लेवल लो है, मीडियम है, निम्न है या है। अगर आपने जैसे ही बताया वो आपको उसका इलाज बता देगा कि मेरे खेत में अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया तो आपको वो कोई केमिकल्स के एक दो के नाम बता देगा। उसमें आपको करना कुछ नहीं, उसी केमिकल्स का या जो पेस्टिसाइड का या फंजीसाइड का नाम बताएगा, डीलर को बोलना है मेरे को ये ही चाहिए। नहीं तो जैसे कि हम आदमी करते हैं दो तीन दवाइयां मिक्स करके लगा लेते हैं, किसान भाई भी इससे बहुत परेशान होते हैं, रोज आती है, वो बिल्कुल मत करिए। उसमें जिस नाम का दिया गया वो साल्ट का नाम बताएगा, वो ही साल्ट आपको खरीदना है। आपको पहले कंफर्म करना है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे पहले टेस्ट लेता है, वैसे ही ये आपको पता करके बता देगा कि ये बीमारी है और ये दवाई लेनी है और आपको वही लेनी है। और उसके बाद क्या करती है कि डीलर बहुत बार जो विक्रेता होते हैं वो कोशिश करते हैं कि दो तीन दवाइयां दे दी, बिल्कुल नहीं करना है, मेरे खेत में ये है, मेरे को ये बताया गया है और मैं ये इस्तेमाल करूंगा। इसका दूसरा फायदा मैं, जैसे ही आपने उसका कर लिया, जो सरकार के अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी, चाहे आपके राज्य में हो या यहाँ दिल्ली में बैठे हो या आपके और कहीं बैठे हो, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और उनके भी कृषि अधिकारी बार बार जाके पता करते रहते हैं कि यहाँ पे कौन सा रोग आ रहा है या कौन सा कीड़ा आ रहा है, तो उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची रहती है। तो जब भी वो जाएंगे या जो भी कृषि अधिकारी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनके लिए भी ये फायदे का है कि मेरे एरिया में ये समस्या आ रही है तो मेरे से कोई पूछे तो मैं इसके लिए पहले से बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम और ये कीट और रोग आ गए हैं तो मैं इसका ऐसे समाधान कर सकता हूं। तो ये दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया इलाज है। कभी कभी सोचता हूं कि किसानों को एक बार फसल लगाने के बाद इसका हमेशा और लगातार इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि क्या हो, ताकि वो ज्यादा पैसे केमिकल में खराब नहीं करें, क्योंकि अगर ज्यादा केमिकल डालेंगे तो बात हुई जैसे कि आपने पूछा कि हमारी मिट्टी को नुकसान होगा, आदमियों को नुकसान होगा, तो उस चीजों से हम बच सकते हैं।
1: जी, हम तो धीरे धीरे डिजिटल हो रहे हैं, जो डिजिटल चीजें होती है उनका प्रयोग भी कर रहे हैं, तो जो डिजिटल शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ तो उसके जरिए क्या मार्केटिंग भी होती होगी और भी जो किसान बहन या भाई उससे लाभ लेना चाहते हैं वो भी उनको मिलता होगा, तो इसके बारे में भी जरा विस्तार से हमें बताइए।
0: डिजिटल वर्ल्ड है उसका मैं किसान भाइयों के लिए सिंपल एक ही बात कहूंगा कि जैसे कि पहले होता था हम मंडी में जाते थे या बीज खरीदने जाते थे तो वहां एक बहुत बड़ा सा बोर्ड होता था, उसमें आज की रेट ये है या कल की रेट इतने में इतना बिका, वो पता करते थे और उनको वो खबर केवल अपनी मंडी की ही पता चलती थी। अब पूरा देश बढ़ रहा है, ग्लोबल वर्ल्ड आ गया है, तो वो अपने यहाँ बैठा बैठा घर में पता कर सकता है कि आज मेरी इस मंडी में बेचूं या किसी दूसरे जगह की जाके मंडी में बेचूं। उसके लिए वो क्या करना है, सरकार का एक ऐप है ई-नेम करके, अगर आप मैं मंडी की बात करूं तो ई-नेम ऐप है, उसमें आपको ये बता देगा कि देश की इस मंडी में आज इस रेट में। तो बहुत बार ये किसानों की और दूसरी बात आती है कि सर आपने तो ये बता दिया कि इस मंडी में रेट है, हम वहां जाएं कैसे, कैसे बात करें, तो उसके लिए भी एक और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और बाकी चीजें इस्तेमाल करके FPO बने हुए हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, वो आप बना के आपका सामान एक साथ

0: कि उनके साथ आप बात कर सकते हो कि मेरे पास ये सामान है, इतना है, इस मंडी में रेट है, आप सीधी उनसे बात कर सकते हो सीधी। और उसमें ये भी नहीं है, दूसरा उसमें एक और फायदा है, उसमें केवल और केवल जो हम बेचने वाले हैं वही किसान भाई नहीं है या एफपीओ नहीं है, जो खरीदार है वो भी वही है, आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हो, ताकि जो बिचौलिया है जिसका कमीशन कुछ ना कुछ होता है वो भी आप कम कर सकते हो, जिससे आपको जो अपनी फसल का जो मूल्य मिलना चाहिए वो बढ़िया मिलेगा और कमीशन भी कम होगा, और ये भी पता लग जाएगा कि कहाँ पे ज्यादा डिमांड है, और ये भी बताएगा कि किस साल कहाँ पे रेट ज्यादा रही थी या कम रही थी या किस सीजन में रही थी, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको वहां मिल जाएगी।
1: जी, हम बार बार AI की बात सुनते हैं और खबरों में पढ़ते भी हैं, तो जो AI है वो हमारे किसानों को कैसे आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहा है?
0: पहले तो मैं किसान भाइयों को समझाना चाहता हूँ कि बार बार AI होती क्या है।
1: जी,
0: इसमें दो वर्ड है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंट, मीन्स कृत्रिम बुद्धिता। अगर मैं हिंदी में बात करूँ, कृत्रिम बुद्धिता मतलब हम हमारा जितना दिमाग इस्तेमाल करते हैं वो तो कर ही रहा है, बट वो कंप्यूटर वो दिमाग इस्तेमाल करने लग जाए तो कंप्यूटर तेज काम करता है, हमारी लिमिटेशन होती है, बहुत सारे कंप्यूटर साथ रख के काम कर सकते हैं, तो उससे हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। बात ये, तो बात आई कि किसान कैसे यूज कर सकता है, तो मैं दो छोटे छोटे एग्जांपल देना चाहूंगा। एक तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारे बीमा की या इंश्योरेंस की, पहले इंश्योरेंस में होता है क्या था कि हमारे बोलते थे कि हमारे को इतना नुकसान हुआ, एजेंट आता था, बात होती थी, टाइम लगता था 5-7 दिन 10 दिन 20,
1: और कुछ लोगों को मिलता था, कुछ लोगों को मिलता था।
0: कुछ एरिया में एक किसान को मिल गया, दूसरे किसान ने कंप्लेन नहीं करी, तो हो सकता है उसको नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें 72 घंटे का ही टाइम होता है। अब उसमें सर AI का कैसे इस्तेमाल किया है, इसके लिए एक हर किसान जिसे बना भी रहे होंगे अपनी किसान आईडी, उसमें आपका चिन्हित हो जाता है कि मेरे खेत की बाउंड्री इतनी है और इस खेत की बाउंड्री में मेरा खेत है, और वो इन खबर आपके बैंक अकाउंट से जोड़ दी जाती है कि इस किसान की ये आईडी है, जैसे कि आधार कार्ड है वैसे ही आपका वहाँ पे हो गया कि ये किसान का खेत है।
1: जी,
0: अब मान लो आपकी फसल खराब हो गई किसी भी वजह से जो बीमा में आती है, उसके बाद आपने खबर दी कि भाई इस एरिया में हो गई और दो चार, तो सरकार क्या करती है अपने सैटेलाइट के माध्यम से वहाँ की उसके पास पिक्चर्स आ जाती है, उन पिक्चरों से सरकार सीधा करती है कि इस एरिया में इतना खराब हो गया है, इन किसानों का खराब हो गया मतलब उनकी उपज नहीं आएगी, तो इन किसानों को सीधा उतनी रकम दे दी जाए।
1: जी,
0: तो ये है AI का बहुत बढ़िया इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल, जैसे कि हम आप बात कर रहे थे कि रोग और कीड़ों
1: के बारे में,
0: तो रोग और कीड़ों को पहचानने के लिए आपको टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमारे जैसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कि देख के, जैसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कौन सी बीमारी है कौन सी रोग है, तो इसमें काफी टाइम लग रहा था, ये हमारे पास आती है तो हम उसको सूक्ष्मदर्शी में देख के काफी करके, तो AI का इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया NPS सिस्टम बन गया है, राष्ट्रीय समय कितना सचिव प्रणाली, उसका इस्तेमाल करके हम इन चीजों को तुरंत पता कर लेते हैं कि ये कौन सा रोग। तीसरा, जो आपकी मिट्टी है, सरकार कोशिश कर रही है कि आपकी मिट्टी के, अभी तो हम सोयल सैंपल ले रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि उसकी में भी AI का यूज हो और आगे चीजें आए,
1: गुणवत्ता में सुधार हो।
0: बहुत सारी जगह सरकार जो ड्रोन है उनका भी AI के माध्यम से इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, तो आने वाले टाइम में आपको इसका काफी इस्तेमाल दिखेगा, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसकी वो कौन कौन से तरीके हैं जो हमारे किसान अभी उपयोग कर रहे हैं?
0: अगर मैं किसानों की बात करूं संक्षिप्त में, तो इस्तेमाल सूचना प्रौद्योगिकी का, एक तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लीजिए, दूसरा जो ऑथेंटिक चैनल हैं जो कि पूसा के हो गए हैं या आपकी कृषि यूनिवर्सिटी के या केवी के, उनका इस्तेमाल करिए, जो भी आप तक आए उनका इस्तेमाल करिए। इसके अलावा जो मौसम की जानकारी के लिए, मौसम के का आपका इस्तेमाल करिए, NPS का आप इस्तेमाल करिए, इंश्योरेंस के लिए आप इंश्योरेंस करवाइए, और उसी का जो सरकार डिजिटल तरीके से आपका कर रहे हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। इसके साथ साथ आप जो भी वैज्ञानिक से आप रहे हो, चाहे पूसा के हो या आपके कृषि विज्ञान केंद्र, उनसे आप लगातार सूचना का आदान प्रदान करते रहिए, ताकि आपको नई खबर मिले, कोई भी नई चीज आए तो आप तक वो तुरंत पहुंच सके।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि का विकास किस स्तर तक हो सकता है, कितनी सारी अहम बातें इस कार्यक्रम में, इस दौरान, चर्चा के दौरान आपने सुनी, और ये चर्चा डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताई, ये सारी बातें हम तक पहुंचाई, और इनसे बात की हमारी साथी कमलेश मुदगल जी ने, और कितनी सारी बातें राहुल की गई है कि किस तरह से जो पारंपरिक तरीके से हमारे किसान मित्र सूचना उनको मिलती थी, लेट हो जाया करते थे, लेकिन अब तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है कि सूचना भी तुरंत जाती है।
3: बिल्कुल, सूचना का तंत्र होता ही इतना मजबूत है, और वो बहुत अच्छी बात उनसे जानने को ये भी मिली हमें कि किस प्रकार से हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस प्रकार से हम AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितनी अच्छी बात उन्होंने ये भी बताई कि जस्ट इन केस अगर मौसम खराब होता है, आपकी फसल खराब हो रही है, तो कैसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे वेरीफाई होगी सरकार के द्वारा, सैटेलाइट इमेजेस का भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये एक देख लेने वाली बात है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि

0: सत्यता की जांच नहीं हो पाती थी और किसान कहीं ना कहीं बेचारा परेशान होता था, और हम देखते थे कि वो किसान जो है किसी ना किसी तरीके से मुसीबत में है क्योंकि नुकसान हो रहा था। लेकिन आज नुकसान की भरपाई जो कहना चाहिए, जो एक कृषि बीमा योजना है, उसने बिल्कुल जो है परिवर्तित करके रख दिया है किसानों का जीवन।
1: जी बिल्कुल, देखिए समय की बचत भी हो रही है, समय पर जानकारी पहुंच भी रही है, तो ये बहुत जरूरी और बहुत ही लाभकारी चीज है हमारे सभी किसान मित्रों के लिए। एक और लाभकारी चीज है, जी हाँ, खरीफ की फसलों का साथियों जब समय आ जाता है तो ऐसे में खरीफ अभियान की भी शुरुआत हो चली है।
0: बिल्कुल, उसकी आपको चर्चा भी जरूरी है, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको सभी साथियों बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन 28 मई से यानी कि कल से शुरू हो चुका है 29 मई 2026 तक, यानी आज तक ये NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में चल रहा है इस वक्त ये खरीफ अभियान।
0: बिल्कुल, और आपको ये भी जानकर प्रसन्नता होगी कि इसमें बहुत ज्यादा व्यापक चर्चाएं हो रही हैं विभिन्न विषयों पर, राज्यों, कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों के साथ साथ जो ये व्यापक चर्चाएं आयोजित की गई हैं। इन चर्चाओं में जो केंद्र बिंदु हैं वो हैं खरीफ की तैयारी, कृषि उत्पादकता, जलवायु अनुकूल कृषि, प्राकृतिक खेती, दलहन और तिलहन उत्पादन, डिजिटल कृषि, कृषि वित्त और जोखिम प्रबंधन। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं मैं आपको कि जो ये चर्चाएं हैं इनके जो प्रमुख विषय हैं इनके इर्द गिर्द जिन पर ये आयोजित की गई हैं चर्चाएं, इनमें है आत्मनिर्भरता, विविधीकरण और उत्पादन वृद्धि, इसके अलावा सतत और जलवायु अनुकूल कृषि तथा खेत बचाओ और अवसंरचना, वित्त पोषण और जोखिम प्रबंधन, जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। किसान के लिए किसी भी प्रकार से जोखिम उठाना बहुत मुश्किल होता है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि मौसम बदलते देर नहीं लगती है और वही ऐसा परिवर्तनकारी एक क्षण होता है जब उसे चिंता होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन एक विकसित भारत और समृद्ध किसानों की परिकल्पना के अनुरूप एक टिकाऊ, सशक्त और किसान केंद्रित कृषि इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। और साथ ही साथियों ये जो अभियान है 2026 में जो चल रहा है, शुरू हुआ है, ये सम्मेलन देश के कृषि क्षेत्र की दिशा और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में भी एक महत्वपूर्ण मंच है।
0: बिल्कुल, और इस मंच पर आप भी सहभागी होंगे, ये जरूर पूरा कार्यक्रम जो है ऑनलाइन चल रहा है, कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के माध्यम से इसके साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप राजधानी दिल्ली में नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी राज्य में हो, वहां पर आप इससे जुड़ सकते हैं और जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हुए हैं उनकी राय सुन सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और इससे अपडेट हम आपको लगातार कराते ही रहते हैं, सारी जानकारी आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। और अगर आप बात कर ले मौसम की, तो भाई मौसम के मिजाज तो हम देख ही रहे, कभी तेज धूप हो जा रही है, ज्यादातर तेज धूप है, लेकिन भाई हल्की फुल्की यहाँ पे बूंदाबांदी या कहीं बादल भी कभी कभी देखने को मिल जा रहे हैं, लेकिन गर्मी जो है उसे निजात कहीं नहीं दिख रहा। तो ये जो सारे रंग होते हैं ना हमारे, जो गर्मी हो, सर्दी हो, मीठा हो, खट्टा हो, या कोई भी हमारे जीवन का रंग हो, कुछ भी हो, लोकगीत में बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बताया जाता है। तो क्यों ना राहुल, एक लोकगीत आज के कार्यक्रम में भी शामिल किया जाए।
0: मौसम पर आधारित होगा जरूर, मुझे लग रहा है आपकी चॉइस।
1: जी, मौसम क्या, गर्मी पे आधारित है भाई, गर्मी इतनी हो रही है तो हमारे जो छुट्टियों का समय शुरू हो चुका है, महिलाओं की ज्यादातर ये डिमांड होती है कि उन्हें भेज दिया जाए, भाई घुमा लाया जाए शिमला मनाली। तो आइए बस कुछ यही चीज इस गीत में अशोक कुमार की आवाज में।

0: जी बिल्कुल, देखिए बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी है गर्मियों की, और आपको अगर जाना है शिमला तो आप जा सकते हैं, कहीं भी जाना है आप घूमने जा सकते हैं। और भाई लेडीज को नाराज मत करिएगा वरना छुट्टियां सारी खराब हो जाएंगी।
1: नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होती, सब सबका ध्यान रखते हैं और महिलाओं को घुमाने लेकर जाते हैं। ये नहीं कह सकता है कोई आरती, देखो ये मैं इस बात की बिल्कुल जो है कड़ी निंदा करता हूँ अगर ऐसा कह रही हो। बहरहाल हमारे किसान भाइयों से हम विदा लेंगे, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है।
0: जी हाँ बिल्कुल, और देखिए ये भी कहना चाहते हैं कि गर्मियां पड़ रही हैं तो अपना ध्यान तो हम रखते ही हैं, लेकिन साथियों किसान मित्रों अपने पशुधन का ध्यान रखना ये भी बहुत जरूरी है। तो अपने पशुओं की देखभाल करें, उन्हें थोड़ा सी छांव में रखें, ठंडक में रखें, उनके बैठने के स्थान का भी पूरा पूरा आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, तो उन्नत किसान कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर। फिलहाल इस कार्यक्रम में मैं राहुल
0: और मैं आरती,
1: हम लोग देंगे विदा।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा

0: को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। श्री सिंह ने आंध्र प्रदेश के लिए अधिक निधि आवंटन के प्रयासों का आश्वासन दिया।
1: अभी हमने एक धर्मावरण में अप्रूव किया है क्लस्टर और कल मैं विशाखापट्टनम में ग्लास फाइबर के एक यूनिट का उद्घाटन भी करूंगा और भारत सरकार ने 10,860 करोड़ का PLI दिया है टेक्सटाइल को। आंध्र अधिक से अधिक शेयर ले, ये भी रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्र यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून तक वहां पहुंचने की उम्मीद है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून में देशभर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joymalia Bagchi said that orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said that order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under trial convict should be released preferably the same day or at the most the next day. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said the incident of paper leak was extremely unfortunate and should not have happened. In an exclusive interview with DD News, Mr. Pradhan assured that the re-examination process will be conducted in a proper and systematic manner without any errors. He also appealed for everyone's cooperation in carrying out the task smoothly.

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल और मन भावन में आपके साथ हूं मैं आपकी हमसफर हेमा। दोस्तों, हम चाहे कितने भी सामर्थ्यवान हो, यानी कितने भी सक्षम हो, केपेबल हो, बावजूद उसके जब कोई और हमारी कोई इच्छा पूरी करता है, हमारे लिए कुछ करता है, तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है।

बड़ा ही खूबसूरत सा एहसास वो होता है और ये एहसास हमेशा हमारे साथ भी रहता है। और जब कभी भी उस बात को हम फ्यूचर में याद भी करते हैं तो बड़ा सुकून सा मिलता है, उस शख्स को याद कर जैसे जीवन भी हमें सार्थक सा लगता है ना। शायद इसीलिए भी इस प्रोग्राम का इंतज़ार आपको और हमें दोनों को रहता है, क्योंकि आप हमसे कुछ कहते हैं और हम उस बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, रिश्ता और पुख्ता होता रहता है। तो मन भावन में आज भी आपकी फरमाइश का बहुत बहुत स्वागत है, जिसे पूरा करने के लिए एफएम गोल्ड इस वक्त बिल्कुल तैयार है शाम 4 बजे तक। तो अपने पसंदीदा गीत के बोल लिखिए फिल्म के नाम के साथ, और कुछ आप लिखना चाहें उस गीत से जुड़ा वो भी बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ईमेल कीजिए हमें अपनी ये फरमाइश, ईमेल आईडी है हमारा, नोट करें fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9868686853।

ये वादा रहा कि जितने प्रोग्राम में हम गीत शामिल कर पाएंगे उतने करेंगे, तो आपके मैसेजेस आ रहे हैं जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप चाहे तो हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लें, fmgold@delhi@gmail.com। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और किसी एक फरमाइश के साथ हाजिर होते हैं।

दोपहर के 3:18 और प्रोग्राम मन भावन आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं और फरमाइश हम तक बहुत सारी पहुंच रही हैं। कुछ नाम हैं जो ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे लिसनर्स, सतीश अनेजा, स्वरूप आनंद सरजल, तुलसी मस्कीन, कमलकांत गुप्ता, रिजवान खान, जय निसार अली, अनिल कुमार गोहांकर। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक ही आप मेल भेजें, क्योंकि आप बार बार जब भेजते हैं कई सारी मेल्स तो उसमें किसी और की स्किप भी हो सकती है और वो आपकी भी हो सकती है, तो एक मेल भेजें हमें और आपका मैसेज हमें मिलेगा तो ज़रूर पढ़ेंगे उसको। अब गीत प्ले करते हैं अगला, और बड़ी ही प्यारी फरमाइश है ये फिल्म जो है, उस फिल्म में भी जीनत अमान थी। देखिए अभी आपने गीत सुना था प्रोफेसर प्यारेलाल से, इसमें धर्मेंद्र के साथ थी जीनत अमान, और अब जो फिल्म है हीरा पन्ना, इसमें भी ये जो गीत फिल्माया गया है इसमें है जीनत अमान, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, और आप कहें तो 70s, 80s, 90s की सदाबहार अभिनेत्री। बिमला अनेजा और सतीश अनेजा का ये मैसेज है चंडीगढ़ सिटी से, और कहते हैं कि वेलकम टू द प्रोग्राम, नमस्कार सिस्टर, नमस्कार आपको दोनों को भी, और कहते हैं कि आपका जो प्रस्तुतिकरण है उसकी मैं सराहना करता हूँ और प्रोग्राम को वो और खूबसूरत बनाता है, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। लीजिए सुनते हैं आपकी फरमाइश।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन भावन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर और हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जगन्नाथ पटेल जिनका मैसेज आया है हमें ईमेल हम तक पहुंची है सुरसंगम हरजिंदर सिंह भाटिया ताज मोहम्मद हरजिंदर शिंदा प्रवीण रनपारा सतीश अनेजा और जॉन डी कैस्ट्रो राधेश्याम शर्मा मोहम्मद फरमान मसरूर हसन स्वर्ण सिंह शमशुल कुमार राही और ये अगला मैसेज है गुरमीत सिंह का बोधराज खुरवाल जगन्नाथ पटेल शाहजी बोधके किशन वंजानी सभी के मैसेजेस बहुत रिपीट हो रहे हैं इसलिए नाम ढूंढना मुश्किल हो रहा है आफताब अंसारी का मैसेज भी हमें मिला है और भूषण खेरा हमारे साथ हैं वीरा मस्कीन का भी मैसेज हम तक पहुंचा है दीपेश वर्मा और ये अगली ईमेल है नवी हसन की सुधाकर जाधव रुपेश संघाई और विजय सुरलकर और नीता का रोहिणी से मैसेज है कुमार सानू की आवाज में प्यारा सा गीत फिल्म परदेश से आपने सुनना चाहा है जरूर सुनिए लीजिए

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। आकाशवाणी को 90 साल पूरे करने पर बहुत बहुत बहुत बधाई। 90 साल का कामयाब सफर तय करना कोई आसान बात नहीं है। आकाशवाणी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। आपने मुझे आज तक अपने साथ जोड़ कर रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन की हर पड़ाव सफलता मेरे

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोपहर के 3:38 हो चुके हैं और आप शाम 4 बजे तक रहेंगे हमारे साथ एफएम गोल्ड पर मन भावन प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में आपके हम सफर हूं मैं आपके साथ हेमा खन्ना। और अगली फरमाइश या बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये भी आप जानते हैं है ना, सहमत हैं कि कितने ही गीत हम 1 घंटे में 50 मिनट में आपको सुनवा सकते हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। और ये फरमाइश भी बहुत दूर से आई है, कहाँ से, राजस्थान से, पहचान गए होंगे, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार की ये फरमाइश है। और इनके साथ हमें सुन रहे हैं डैनी मनीष, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श। और ये गीत आ रहा है किशोर कुमार के साथ साथ उनकी पत्नी लीना चंद्रवर्कर की आवाज भी है, फिल्म तो आप पहचान ही गए होंगे, मंचली।
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा
3: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया अच्छा
3: अच्छा,

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का FM गोल्ड वन भावन में आपके गीत शामिल हैं जो आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जिनकी फरमाइश करते हैं, और इस वक्त हमें जो सुन रहे हैं उनके नाम भी लेने बहुत जरूरी है। राशिद हुसैन अंसारी हमारे साथ हैं, अनंत वाधे भी सुन रहे हैं FM गोल्ड, मनोहर लाल गांधी हैं, रविन्द्र मोहन दास, जसबीर सिंह, हीराबन शिंदे, दिग्दर्शन गौड़ और बहुत सारे ईमेल्स आए हैं एक नाम से। देखिए, मैं आप फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, इल्तजा करूंगी कि आप सिर्फ एक ही ईमेल भेजें। इस बार शामिल कर रही हूं, लेकिन अगर आपने अगली बार भी इसी तरह किया यानी ढेर सारी ईमेल्स, तो फिर मुश्किल होगा आपका आपकी फरमाइश को शामिल करना। खैर, शामिल करते हैं। इस बार नई दिल्ली से हैं ये, और एक ऐसी गीत की फरमाइश इन्होंने की है जो जब रिलीज हुआ था ये गीत तो हर किसी की जुबान पर था। संगीत ही ऐसा था आर डी बर्मन साहब का, पिक्चराइजेशन थी मनीषा कोइराला पर, और आवाज थी पुरसोज कुमार सानू की। 1942 अ लव स्टोरी, ये गीत कौन सा होगा आप जानते हैं। और फरमाइश यानी जिनकी वजह से हम ये गीत सुन रहे हैं वो है कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु नई दिल्ली से। आइए इनके साथ हम भी सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और अब अपनी मंजिल के करीब है। कुछ ही मिनट हमारे पास हैं और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो हमारे साथ हैं उनके नाम शामिल करते हैं। संजय ढींगिया हमें सुन रहे हैं, गुरमीत सिंह भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी, आर्यन वर्मा, ताज मोहम्मद, शेख मूसा, हरजिंदर शिंदा और फारूक अली खान, जगन्नाथ पटेल के अलावा अकरम हुसैन प्रिंस का मैसेज भी हम तक पहुंचा है और सोनम के अलावा मोहम्मद सईद अब्बासी, राम कुमार रेवाड़, पुरुषोत्तम सिंह, बोधराज खोरवाल, प्लीज एक ही मैसेज भेजें, अब्दुल गफार, एस एम जावेद, रश्मि पांड्या, जय अब्बासी और मैसेजेस रिपीटेड हैं बहुत सारे। ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा और दिग्दर्शन गौड़। तो अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और यह हैं सुधाकर जाधव, शमशुल कुमार राही, नवी हसन, आफताब अंसारी, आर कुमार, विजय बिहारी शर्मा, हीरामन शिंदे और सुरेश नारंग का मैसेज भी हम तक पहुंचा है। अशोक वर्मा जी प्लीज एक ही मैसेज भेजा कीजिए, सुनील गायकवाड़। और चलते हैं आगे, राधेश्याम दीवानगन, धर्मेंद्र छीपा और ये हैं नाम इनका क्लियर नहीं है। इनका मैसेज है उदय भान पाल, इतरीस सैफी, संदीप मक्कड़, अब्बासी, रमेश चंद्र कामड़े और हीरामन जी का पहले ले चुकी हूं मैं मैसेज, मास्टर खिल्लू परवेज, नासिर शेख। तो उम्मीद है मैंने मैसेजेस सब पढ़ दिए हैं और एक बहुत ही प्यारी सी फरमाइश आई है, ये गीत बहुत कम प्ले होता है आकाशवाणी पर या फिर एफएम पर और ये जो फरमाइश ऐसे करने वाले हैं बगेरा दुर्ग से हमारे लिसनर्स जो हैं संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव। फिल्म अलग अलग का ये बहुत ही प्यारा सा गीत है हमारी लता जी की आवाज में, सुनते हैं इसे और उन्हें भी याद करते हैं।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर, क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है, कभी हमें रुलाता है,

मन भावन में आप सब हमारे साथ रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हेमा अभी के लिए आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलूंगी इस प्रोग्राम के बाद जो समाचार होंगे उसके बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया

0: कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश की दो दिन की यात्रा के दौरान आज श्री सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। श्री सिंह ने आंध्र प्रदेश के लिए अधिक निधि आवंटन के प्रयासों का आश्वासन दिया।
1: अभी हमने एक धर्मावरण में अप्रूव किया है क्लस्टर और कल मैं विशाखापट्टनम में ग्लास फाइबर के एक यूनिट का उद्घाटन भी करूंगा और भारत सरकार ने 10,860 करोड़ का PLI दिया है टेक्सटाइल को। आंध्र अधिक से अधिक शेयर ले, ये भी रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइटों से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से संबंधित मनगढ़ंत दावे और ईरान अमेरिका मध्यस्थता के बारे में टिप्पणियां शामिल हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावा किया है कि ये AI से बनाया गया है। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The apex court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, emphasizing that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi said that orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said that order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under trial convict should be released preferably the same day or at most the next day. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that the incident of paper leak was extremely unfortunate and should not have happened. In an exclusive interview with DD News, Mr. Pradhan assured that the re-examination process will be conducted in a proper and systematic manner without any errors. He also appealed for everyone's cooperation in carrying out the task smoothly.
3: The incident is very unfortunate. It should not have happened. Now that we have announced re-NEET, it should be conducted properly and done with care. This is our responsibility. We expect everyone's cooperation in this work.
2: Addressing students, Mr. Pradhan assured them that the government understands their concerns and acknowledges

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग।

0: ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: apply.nibmg.ac.in। यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो इस ईमेल पर अपनी जिज्ञासा प्रेषित कर सकते हैं 2026 फैकल्टी रिक्रूटमेंट @nibmg.ac.in। आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार आंध्र विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के संकल्प और सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या MS 54 के अनुसार विश्वविद्यालय में 523 रिक्त शिक्षक पदों को भरने के लिए पहले दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है। इसलिए इन पदों को भरने के लिए दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को जारी और दिनांक 1 नवंबर 2023 को प्रकाशित शिक्षक भर्ती अधिसूचनाएं वापस ले ली गई हैं। 2023 की अधिसूचनाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क की वापसी संबंधी जानकारी के लिए ये सलाह दी जा सकती है कि वे विश्वविद्यालय की इस वेबसाइट को देख सकते हैं www.andhrauniversity.edu.in। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पदों की संख्या 2, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पीपीपी परियोजनाएं पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सड़क कार्य 1 पद, प्रोजेक्ट मैनेजर इमारत 2 पद और प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण 1 पद। विस्तृत विज्ञापन, निर्धारित आवेदन प्रारूप और संपूर्ण नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड की वेबसाइट www.dsiidc.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम परिक्रमा में। आप सभी का स्वागत एक और अंक में, हार्दिक अभिनंदन भी आप सभी का। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज उनके पास कौन कौन सी खास रिपोर्ट्स हैं, और खेल के मैदान की गतिविधियों की भी हम आपको जानकारी देंगे, साथ ही आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी हमारी नजर रहेगी। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन दिन का हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
2: वेल हेलो, गुड डे एवरीबॉडी, दिस इज शगुन चोपड़ा विद विशाल शर्मा टुडे एंड यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम एंड बोथ ऑफ अस वी आर रेडी एंड वी आर थ्रिल्ड एंड वेरी मच एक्साइटेड टू बिगिन आवर प्रोग्राम। एंड विशाल टोल्ड यू अबाउट द होल प्रोग्राम, द सेगमेंट्स एंड एवरीथिंग। वी हैव टू टॉपिक्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर डिस्कशन सेगमेंट व्हिच इज डेटलाइन इंडिया एंड ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी टोल्ड यू, दिस विल बी ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, सो डोंट गो एनीवेयर, जस्ट कीप लिसनिंग टू अस। फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस।
1: जी, मुख्य समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।
2: एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान शो स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एग्जामिनेशन माफिया।

0: एंड प्रोटेक्शन फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स।
1: पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। योजना के अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए।
0: आईएमडी प्रिडिक्स बिलो नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल ओवर कंट्री एंड अबव नॉर्मल हीट वेव कंडीशंस इन सेवरल स्टेट्स ड्यूरिंग जून।
1: हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता।
0: So now this is our segment Dateline India. Let's begin by discussing the first topic, that is International Everest Day. Well, today it's actually a very special day for all adventure lovers and dream chasers out there because
1: जी, आज अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है, जैसे कि शगुन ने आपको बताया, और हर साल 29 मई को पूरी दुनिया इस दिवस को मनाती है। ये दिन साहस, दृढ़ संकल्प और खोज की अद्भुत भावना को समर्पित है।
0: वेरी ट्रू। व्हेन वी हियर द वर्ड एवरेस्ट वी इंस्टेंटली थिंक ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स, वेल फ्रीजिंग विंड्स एंड वन जायंट चैलेंज स्टैंडिंग टॉल अबव द क्लाउड्स।
1: जी, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 1953 में दो महान पर्वतारोहियों, न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट पर की गई पहली ऐतिहासिक सफल चढ़ाई की याद में मनाया जाता है।
0: सो द रिकग्निशन ऑफ एवरेस्ट एज द हाइएस्ट माउंटेन, इट केम इन द मिड 19th सेंचुरी। In 1856, the Great Trigonometrical Survey of India established its height and named it Peak 15. So later, in 1865, this peak was officially named Mount Everest in honor of Sir George Everest, a former Surveyor General of India. So this discovery marked a significant milestone in the field of geography as well as in the field of exploration.
1: शगुन ने ज्योग्राफी की बात करी तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की महालंगुर हिमाल उपश्रृंखला में स्थित है, जो नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर फैला हुआ है। नेपाल की ओर से शिखर तक पहुंचने के लिए दक्षिणी चढ़ाई मार्ग का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ये क्षेत्र अपने ऊबड़ खाबड़ भूभाग, शानदार चोटियों और मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है, और इसीलिए ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों के लिए ये आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है।
0: Well, yes, I can visualize the whole scene, the mountainous terrain, and you can also imagine the determination that it must have taken, Vishal. No advanced technology, no fancy gear like today, just courage, preparation and the will to reach the top of the world.
1: जी, इच्छा शक्ति और साहस के बल पर ही और तैयारियों के बल पर ही और मेहनत करके ही माउंटेनियर्स वहां पहुंचते थे। तब इतनी हमारे पास, जैसे आपने भी कहा, कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। और शगुन, वो क्षण कितना अद्भुत होता होगा जब बेहद खराब मौसम और खतरनाक रास्तों से जूझने के बाद माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंचने का अनुभव।
0: Oh wow. And Everest isn't just about mountains. It is actually a symbol of overcoming challenges in life as well,
1: जी.
0: Right? Moving mountains, as we say. And everyone has their own Everest to climb, right?
1: जी, बिल्कुल। चाहे परीक्षा हो या करियर के लक्ष्य हो, फिटनेस का सफर हो या फिर निजी संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हमें याद दिलाता है कि लगन हमें असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।
0: एंड आई एम इवन थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ, द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय ओन लाइफ एज वेल, व्हाइल वी आर प्रेजेंटिंग आवर प्रोग्राम एंड डिस्कसिंग अबाउट इट। एंड टुडे एक्चुअली ट्रेकर्स, क्लाइंबर्स, माउंटेनियर्स, एडवेंचर एंथुसियास्ट्स अक्रॉस द ग्लोब, दे सेलिब्रेट दिस इंस्पायरिंग अचीवमेंट एंड ऑनर द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन।
1: जी, और यहाँ एक मजेदार सवाल हमारे श्रोताओं से भी, और शगुन ये सवाल आपसे भी है कि अगर आप दुनिया के किसी पहाड़ पर चढ़ने की सोचती हैं तो कौन सा होता वो
0: पहाड़? I actually already know mine, somewhere scenic, beautiful, that mountainous, rugged terrain, but maybe not too dangerous. Not too dangerous. I'm not that adventurous. I'd like to come back alive. थैंक यू वेरी मच।
1: एवरेस्ट यकीनन कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो तापमान होता है वो जमाव बिंदु से भी काफी नीचे पहुंच जाता है, और ऑक्सीजन का स्तर भी खतरनाक रूप से कम होता है, और हर कदम एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय इंसान की सहन शक्ति का कड़ा इम्तिहान लेता है।
0: इट इज, आई कैन इमेजिन द हार्ड वर्क एंड द करेज which is involved here, and yet year after year

0: 29th of May टुडे।
1: ये दिन उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने दुनिया भर में शांति बनाए रखने के प्रयासों के दौरान अपनी जान गंवा दी, और साथ ही उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है जो साहस, समर्पण और पेशेवर दक्षता के साथ संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं।
0: सो लेट्स टेल आवर लिसनर्स दैट द फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स, द यूनाइटेड नेशंस ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, बिगन ऑपरेशंस इन द मिडल ईस्ट ऑन दिस डेट 29th of May। द ईयर वाज 1948।
1: शांति स्थापना का भविष्य विषय के अंतर्गत मनाया जा रहा इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय यूएन पीसकीपर्स दिवस पिछले लगभग 8 दशकों में सैन्य, पुलिस और नागरिक शांति रक्षकों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान पर प्रकाश डालता है। ये अपने आप में एक अधिक समतापूर्ण, न्यायसंगत और टिकाऊ, सस्टेनेबल दुनिया के निर्माण की दिशा में प्रगति और सामूहिक प्रयासों की भावना को भी समाहित करता है।
0: And Vishal, more than 68,000 civilians, military, police personnel serve in 11 UN peacekeeping missions, confronting increasingly complex and interconnected challenges shaped by a shifting geopolitical landscape. And they also have to keep sustainable development in mind. And despite the challenges, peacekeepers remain steadfast in their pursuit of peace.
1: बिल्कुल, और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति रक्षकों की अटूट सेवा और बलिदान के साथ साथ इस कार्य में सहयोग देने वाले समुदायों के जुझारूपन को भी श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है। इसके अलावा ये उन 4,400 से अधिक शांति सैनिकों को भी पूरी श्रद्धा के साथ सम्मानित करने का अवसर है जिन्होंने शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शांति स्थापना के इस महत्वपूर्ण कार्य में वर्ष 2024 में ही 57 सैनिकों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है।
0: So UN peacekeeper, the word itself suggests, and we often imagine soldiers standing guard in conflict zones, right? This is what we can visualize easily. But UN peacekeepers, they do so much more than that.
1: जी, और वे नागरिकों की रक्षा करने, युद्ध से प्रभावित समुदायों को सहारा देने, मानवीय प्रयासों में सहायता करने और यहाँ तक कि संघर्ष के बाद देशों के पुनर्निर्माण में भी मदद करते हैं। शांति सैनिक युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में आशा की एक नई किरण बनकर पहुंचते हैं।
0: सो पीस कीपर्स कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड दे वर्क टुगेदर अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्लैग, एंड दिस इज ट्रूली अ ग्लोबल एफर्ट फॉर पीस।
1: और हमारा देश भारत भी संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में बढ़ चढ़कर शामिल होता रहा है। पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में भारत का योगदान सबसे अधिक रहा है। हजारों भारतीय सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने दुनिया भर में चलाए गए अभियानों में असाधारण शौर्य के साथ अपनी सेवाएं दी हैं।
0: सो लेट्स ऑल्सो टेल आवर लिसनर्स दैट टू इंडियन पीस कीपर्स, दे विल बी ऑनर्ड पोस्टमसली बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर देयर अल्टीमेट सैक्रिफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स टूडे। लांस हविलदार हरभजन सिंह, हु सर्व विद द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलाइजेशन मिशन इन कांगो, एंड नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान, हु वॉज डिप्लॉयड विद द यूएन मिशन इन साउथ सुडान, विल बी पोस्टमसली ऑनर्ड बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस विद द प्रेस्टिजियस डैग हैमरस्कोट मेडल फॉर देयर सैक्रिफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। So additionally, Mr. Guterres will present the 2025 Military Gender Advocate of the Year Award to Major Abhilasha Barak of India, who serves on the UN Interim Force in Lebanon, honoring her outreach efforts with women and girls during her deployment in the West Asian nation. It makes us proud, right?
1: जी, तो आइए हम सभी एक क्षण के लिए उन सभी साहसी व्यक्तियों का सम्मान करें जो शांति के झंडे तले मानवता की सेवा करना जारी रखे हुए हैं।
0: And let us remember, peace is not just the absence of war, it is the presence of compassion, unity and hope.
1: आइए एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। और कार्यक्रम में अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का, और आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट्स उनके पास हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले हम कहाँ चल रहे हैं शगुना?
0: एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो टुडेज एडिशन ऑफ परिक्रमा हाईलाइट्स द रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ टू डॉटर्स ऑफ झारखंड हु हैव मेड द एंटायर नेशन प्राउड थ्रू देयर डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड एकेडेमिक एक्सलेंस। लेट्स हियर दैट इन डिटेल इन दिस रिपोर्ट।
2: इन द रिसेंटली डिक्लेयर्ड CBSE

0: NISE Class 12 examination results. Two meritorious students from Jharkhand secured the top rank at the national level and created history. First, let's talk about Shambhavi Tiwari from Jamshedpur. A bioscience student of Sacred Heart Convent School, Jamshedpur, Shambhavi scored a perfect 100% in the ISC Class 12 examination to emerge as a national topper. Staying completely away from social media and maintaining a focused routine, she now aspires to become a doctor and serve the underprivileged sections of society.
1: बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए. अच्छा रिजल्ट तो मैंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन इतना अच्छा होगा ये नहीं सोचा था. मेनली मैं मेडिकल की तैयारी करती थी, मतलब नीट की, तो उसी तरह से मैंने पढ़ाई की और स्कूल के टीचर्स को भी फॉलो किया. 5-6 घंटे में पढ़ाई करती थी स्कूल के टाइम पे, वापस आके बुक्स वगैरह जो नोट्स है वो पढ़ती थी.
0: द सेलिब्रेशंस वर नॉट लिमिटेड टू जमशेदपुर अलोन एज रांची टू विटनेस्ड अ प्राउड मोमेंट. भव्या रंजन एंड आर्ट्स student of Oxford Public School Ranchi secured 499 out of 500 marks in the CBSE Class 12 examination. With an outstanding score of 99.8%, Bhavya became a national topper and now dreams of joining the civil services to contribute towards nation building and public service.
2: नेशनल टॉपर मैंने कभी नहीं सोचा था. काफी खुशी हो रही है, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दिस जर्नी. हार्डवर्क करना चाहिए, अपने एफर्ट्स को कभी वेन में नहीं जाने देना एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में बिलीव करना. दे हैव टू ड्रीम. आप ड्रीम करोगे तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे. ग्रेजुएशन में मैं हिस्ट्री लेना चाहती हूँ एंड मेरा टारगेट है कि मैं यूपीएससी सीएससी क्रैक करूँ.
0: Shambhavi and Bhavya have emerged as inspiring role models for students across the country. Their achievements reaffirm that sincerity, determination and hard work can turn even the biggest dreams into reality. For Parikrama, this is Mehvish Rahman from Ranchi.
3: झारखंड के बाद अब लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर में और यहाँ एक बहुत ही अनूठी पहल की जा रही है. महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में आपदा प्रबंधन में मदद के लिए पहली बार ट्रांसजेंडर्स का एक दल प्रशिक्षित किया जा रहा है. मॉनसून के मद्देनजर तैयार की जा रही ये टीम शायद देश में अपनी किस्म की पहली टीम होगी. जिला प्रशासन को उम्मीद है कि ये दल किसी भी आपत्ति के समय मदद के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है. और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे पुणे संवाददाता.
4: इस टीम में 10 ट्रांसजेंडर सदस्य शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से मैत्री संगठन की मयूरी अलवेकर, शिवानी गजबर, जोया दिनी आदि शामिल हैं. इन सभी को राजाराम झील में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई है. उन्हें मोटर बोट चलाना, डूबते हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना, प्रभावित व्यक्ति को होश में लाना और फर्स्ट एड देना सिखाया गया है. जिला कलेक्टर डॉक्टर विजय राठौड़ और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी डॉक्टर प्रसाद संगपाल के मार्गदर्शन में देश स्तर पर यह अपनी तरह का पहला ऐसा नवीनतम प्रयोग है. जिला आपदा प्रबंधन के हिस्से के रूप में उनकी टीम बनाई गई है और इस टीम की ट्रेनिंग अभी चल रही है. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी प्रसाद संगपाल ने कहा कि ये देश में ट्रांसजेंडर्स की पहली ऐसी टीम है. कोल्हापुर जिला प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लगभग 2500 युवाओं की एक टीम तैयार की है. इनमें 500 से ज्यादा युवतियां हैं. ये जवान लड़के लड़कियां बाढ़, तूफान, हादसा और अलग अलग आपदाओं या जरूरत के दूसरे हालात में मदद के लिए आते हैं. ये टीम बिना किसी मानदेय या तनख्वाह के काम कर रही है. अब कोल्हापुर में इस काम के लिए ट्रांसजेंडर की एक टीम भी तैयार की गई है. प्रसाद सपकार ने कहा कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये टीम काम करने लगेगी. कोल्हापुर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय राठौड़ ने बताया कि मानसून से पहले की तैयारियों के तहत वॉलंटियर्स को मुश्किल समय में बचाव का काम करने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है. कोल्हापुर जिले में बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स हैं, इसमें सभी हिस्सा ले रहे हैं. इसी तरह पहली बार 10 ट्रांसजेंडर्स की एक टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है. उन्हें 4-5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी. किसी भी आपदा में वे राहत के काम में सक्रिय रूप से शामिल होंगे. ये प्रशासन की मदद करने वाली पहली ऐसी टीम है और उन्होंने किसी भी आपदा की स्थिति में मदद करने का पक्का इरादा कर लिया है. परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे.
5: So the central government has announced major railway infrastructure initiatives for Andhra Pradesh, including the commencement of operations of the South Coastal Railway Zone from 1st of next month. A report.
6: The new railway zone, headquartered at Visakhapatnam, will begin functioning from June 1st. The Government of India has already issued the gazette notification for the South Coastal Railway Zone, fulfilling a long-pending demand of the state. Speaking at an event in Visakhapatnam recently, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav said the new railway zone will strengthen railway administration and improve railway services in Andhra Pradesh. He said the centre has allocated a record railway budget of more than 10,000 crore rupees to the state. Railway projects worth nearly 1,06,000 crore rupees are currently under implementation to improve connectivity to ports, tourism centres and major cities.
7: Andhra Pradesh has 1,06,000 crore worth of railway projects. We are reconstructing fully Navanirman 74 stations in Andhra Pradesh, and Andhra is 100% electrified. South Coast Railway Zone. This entire process is now completed. Creating a new railway zone is highly technical in nature. And now we are ready to notify the new railway zone on 1st of June 2026.
6: As part of railway modernization, 74 railway stations in Andhra Pradesh are being redeveloped with improved passenger facilities. Several flyovers, underpasses and railway tracks have already been completed, while many more infrastructure projects are under progress. The East Coast Railway Corridor is also being upgraded into a four-lane network to enhance passenger and cargo movement. The Railways Minister said these initiatives are aimed at strengthening railway infrastructure and supporting economic growth in Andhra Pradesh. Allu Murali for Parikrama, Akashwani News. News Visakhapatnam.
3: और अब बात खेलों की. एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया है. महिला वर्ग की 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता है. इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली पिछले 25 वर्षों में वे पहली भारतीय महिला बन गई हैं. वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक अपने नाम किया. नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब हासिल किया.
5: In IPL cricket, Gujarat Titans will clash with Rajasthan Royals in the qualifier 2 match in New Chandigarh at 7:30 p.m. Now, in some business news, benchmark domestic equity indices shed around 1.5% today after sell-off across most sectors intensified in the final hour of trade. The BSE Sensex plunged 1,092 points to close at 74,776. The NSE Nifty fell 359 points to settle at 23,548.
3: कार्यक्रम में अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उसके बाद बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन.
8: 29th May is the birth anniversary of freedom fighter and journalist Kanhaiya Lal Mishra Prabhakar, who was born in Saharanpur in 1906. During his college days, Kanhaiya Lal left studies and jumped into the freedom struggle. He spent many years in jail. As the country got independence on 15th August 1947, Kanhaiya Lal started his newspaper titled Vikas the very same day.
9: Writing was not just a medium of entertainment for Kanhaiya Lal. He used to write for the moral development of the society.
8: Once Nehruji asked Prabhakar, "What are you doing nowadays?" To this, Prabhakar replied,
9: "Panditji, now our country is focused on constructing bigger and taller dams and buildings. Structures built of bricks and mortar are becoming taller than humans. There will come a time when the nation will need great leaders. I am busy writing literature that will help nurture leadership."
8: Mishra published several books: Deep Jale, Shankh Baje, Mati Ho Gai Sona, Nai Peerhi, Nai Vichar are some of his notable works.
9: Kanhaiya Lal continued to work for the people of the country till his death in 1995. AIR News salutes the great nationalist.
8: We also remember freedom fighter Lok Ram Nayan Ram Sharma, who died on 29th of May 1933. A journalist by profession, Lok Ram used to write nationalistic articles, which were many times banned by the British authorities. He also participated in the Salt Satyagraha.
9: Lok Ram was born in 1890 in the Sindh province. He had a special interest in the Sanskrit language. Due to this interest, at the age of 15, he went to Varanasi with his friend Guru Das to study Sanskrit. While living in Varanasi, he was introduced to anti-Bengal partition agitators. By the time he reached Sindh back in 1907, he was full of nationalistic sentiments. In his hometown, he associated with prominent Sindhi leaders, Choithram Gidwani, Jairam Das, and Daulat Ram. Lok Ram was

0: instrumental in helping convene the Congress session in Karachi in 1931.
1: Lok Ram's writing strongly supported national aspirations. He formed a cultural organization called Ras Mandali. Then he started publishing Sindh Bhaskar, a letter in Devanagari script instead of Arabic script. After some time, its name was changed to Hindu. The British government imposed a ban on his letters and confiscated the press. Lok Ram Nayan Ram Sharma went to jail several times, due to which his health deteriorated and he became ill. He died on 29th of May 1933. We salute the great freedom fighter.
0: We also remember independence activist Soma Soren, a resident of Santhal Parganas, Jharkhand, who took active part in the Quit India movement of 1942. He was arrested for his anti-British activities and imprisoned in the Dumka jail. He died during imprisonment on the 29th of May, 1943. We salute the great martyr.
1: We also remember martyr Isa Muhammad, who took part in the First War of Independence in 1857. Muhammad was captured by the company's troops in the course of an engagement. He was sentenced to transportation for life on 29th of May, 1858. Muhammad was shot dead in 1859 while trying to escape from the detention. We salute the great son of the soil.
2: महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के बाद अब बात करते हैं उन कुछ विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। और इस कड़ी में हमारे सामने सबसे पहला नाम है पृथ्वीराज कपूर का। भारतीय सिनेमा जगत के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर का नाम एक ऐसे अभिनेता के रूप में लिया जाता है जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रूपदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग चार दशकों तक सिने दर्शकों के दिलों पर राज किया। आकर्षक व्यक्तित्व और शानदार आवाज के स्वामी पृथ्वीराज कपूर ने सिनेमा और रंगमंच दोनों माध्यमों में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। हालांकि उनका पहला प्यार थिएटर ही था, उनके पृथ्वी थिएटर ने करीब 16 वर्षों में 2000 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां दी।
3: Well, right, the pioneer of Indian theatre and of the Indian, the Hindi film industry, started his career as an actor in the silent era of Hindi cinema. Well, the government of India honoured him with Padma Bhushan in 1969 and Dada Saheb Phalke Award in 1971 for his contributions towards Indian सिनेमा।
2: वर्ष 1937 में उनकी एक फिल्म प्रदर्शित हुई थी विद्यापति, और इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर के अभिनय को दर्शकों ने काफी सराहा था। वर्ष 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर की सफलता के बाद पृथ्वीराज कपूर कामयाबी के शिखर पर जा पहुंचे। आइए उन्हीं की फिल्म का एक संवाद हम डायलॉग सुनते हैं।
4: हमारा हुक्म है सलीम को जंग के मोर्चे पर दखन रवाना कर दिया जाए।
5: मैदान जंग में तलवार सिपाही के हाथ में दी जाती है, मायूस आशिक के हाथ में नहीं।
4: एक कनीज के इश्क में सर टकरा टकरा कर जीने से मैदान जंग की मौत बेहतर है।
6: हमारा सलीम जंग पर नहीं जाएगा।
4: हमारा हुक्म अंधी ममता का मोहताज नहीं।
3: हाउ ग्रेट, राइट डायलॉग फ्रॉम मुगले आजम। Today, listeners, we are also remembering Hirabai Barodekar, the Hindustani classical music vocalist of the Kirana Gharana. Well, we know her for her melodious and soulful voice, which you can also hear in the background. She was a pioneer of ticketed public concerts by women artists in India.

0: कभी तो हंसाए।
1: कितनी बड़ी दार्शनिक बात कही, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। और अब बात,
2: वेल वी ऑल्सो हैव, ही पेन द लिरिक्स ऑफ अदर मीनिंगफुल सॉन्ग्स एज वेल एंड सोल स्टरिंग सॉन्ग्स एज वेल एंड अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव लिसनिंग टू, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

0: टुडे लिसनर्स, इट्स आल्सो पंकज कपूर्स बर्थडे।
1: जी, पंकज कपूर एक ऐसे कलाकार जो कभी पारंपरिक हीरो नहीं कहलाए बल्कि अपनी बेहतरीन अदाकारी से बड़े बड़े सितारों पर भारी पड़ गए।
2: सितारे टिमटिमाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें कोई संदेश भेज रहे हो, मैसेज या चैलेंज दे रहे हो, कह रहे हो तुम लोग अपने छोटे से ग्रह में रहकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, वक्त पर बात करते रहते हो, हमारी तरफ देखो, हमें समझने की कोशिश करो, इस विश्व लोक के असीम रहस्य को कितना जानते हो।
1: और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे यहीं अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए विशाल और शगुन को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति हो सकती है। न्यायालय की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और

0: अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर एक तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 192 अंक गिरकर 74,776 पर बंद हुआ। निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,548 पर दर्ज हुआ। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The apex court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, emphasizing that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi said that orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said that order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under trial convict should be released preferably the same day or at most the next day. The Supreme Court today stressed accountability for the lapses in the NEET paper leak case. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Arade was hearing pleas on the matter, including one seeking a direction to replace or restructure the National Testing Agency, NTA, with a robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. The bench asked the Centre to file an affidavit and posted the matter for hearing in the second week of July. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that the incident of paper leak was extremely unfortunate and should not have happened. In an exclusive interview with DD News, Mr. Pradhan assured that the re-examination process will be conducted in a proper and systematic manner without any errors. He also appealed for everyone's cooperation in carrying out the task smoothly.
2: The incident is very unfortunate. It should not have happened. Now that we have announced re-NEET, it should be conducted properly and done with care. This is our responsibility. We expect everyone's cooperation in this work.
1: Addressing the students, Mr. Pradhan assured them that the government understands their concerns and acknowledged that their trust had been breached. He said the authorities had taken a tough decision because they did not want even a single deserving student's future to fall into the hands of examination mafias or become a victim of irregularities.

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी कहानी। आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं सात सुरों के रंग। मैं कुसुम लेकर आई हूँ आज की कहानी, मेरी मंजिल तुम नहीं।
1: ये

ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दुबला पतला साधारण शक्ल सूरत का गरीब माँ बाप की इकलौती संतान था। अपने लाडले बेटे से ढेरों उम्मीदें बांधे हुए उसके माता पिता को इंतजार था तो उस दिन का, जब दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उनके दिन फिरेंगे। बड़े प्यार से उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े का नाम रखा था दीपक। हमने अक्सर देखा है कि अगर परमात्मा कहीं पर किसी को कुछ कम देता है तो दूसरी जगह उसे बढ़ा कर दे देता है। जी हाँ, दीपक पढ़ने में बेहद होशियार था, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट। बावजूद इसके जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही दीपक का ध्यान बार बार अपने साधारण व्यक्तित्व की ओर जाने लगा था, खासतौर पर आजकल जब से उसने सीमा को देखा था। सीमा का परिवार हाल ही में उसके पड़ोस में शिफ्ट हुआ था। सीमा बला की खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से उसे तराशा था। दीपक ने जब सीमा को देखा तो बस

दीपक मन ही मन सीमा को चाहने लगा, लेकिन कभी सामने आकर उसे कहने की हिम्मत ना हुई। उसे डर था कहीं सीमा उसके प्यार को ठुकरा ना दे। कहां परियों सी दिखने वाली सीमा और कहां साधारण से शक्लो सूरत का दीपक। मगर चाहत ये सब सोचकर तो नहीं होती ना। सीमा के लिए दीपक की दीवानगी बढ़ती जा रही थी, मगर उसे सीमा के करीब जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसे संयोग कहिए या कुछ और, एक दिन सीमा की माँ दीपक की माँ से मिलने आई थी और दीपक चुपके से उन दोनों के बीच हो रही बातों को गौर से सुनने लगा। सीमा की माँ कह रही थी, क्या करूं बहन, मेरी बेटी इस बार भी फेल हो गई। उसके लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन बस पढ़ाई की वजह से बात बनते बनते बिगड़ जाती है। ये तो बड़े दुख की बात है बहन, लेकिन मैं भला इसमें क्या कर सकती हूँ। दीपक की माँ ने कहा, सुना है आपका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, अगर वो मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दे तो शायद वो पास हो जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। बड़ी दुआएं लगेंगी आपको। ये सुनते ही दीपक का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसे तो मानो मन की मुराद मिल गई थी। उसने सुना कि उसकी माँ कह रही थी, माफ करना बहन, दीपक को तो अपनी ही पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी एक बार आप उसी से ही पूछ लो। दीपक की तो खुशी का ठिकाना ना था, फिर भी सीमा की माँ के कहने पर उसने अपनी खुशी को दबाते हुए अनमने अंदाज में कहा, ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो मैं किसी तरह टाइम निकाल लूंगा। दीपक मन ही मन सीमा के प्यार के ख्वाब बुनने लगा।

दूसरे ही दिन से दीपक सीमा को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर जाने लगा। सीमा भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। जब वो पढ़ती तो दीपक उसे देखता रहता और जब सीमा से उसकी नजरें मिलती तो वो झेप जाता। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से खुलने लगे, बातें करने लगे। और फिर एक दिन दीपक ने सीमा से कहा, सीमा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मुझे पता है, सीमा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? दीपक ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। अरे बुद्धू, फीलिंग्स को ज्यादा देर तक छिपाया जा सकता है कहीं? ये तो एक खुशबू की तरह होती है, बिना कहे ही आंखों से, चेहरे से, रोम रोम से बयां हो जाती है। अच्छा, इतना कुछ जानती हो फीलिंग्स के बारे में, तो अपना जवाब भी बता दो, खुद ही समझ लो। ये कहती हुई सीमा एक अदा के साथ वहाँ से चली गई। सीमा की दोस्ती का आसरा पाकर दीपक के सपनों को मानो पंख लग गए और वो सातवें आसमान पर उड़ने लगा।

सीमा के सपनों के हवा महल में दीपक पढ़ना लिखना भूलता गया। उसे तो अब रात दिन सीमा के सिवा जैसे कुछ सोचता ही ना था। जैसे तैसे दिन गुजरता और शाम ढले वो सीमा के घर पहुंच जाता। एक दिन रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त राहुल उसे मिला और बोला, क्या बात है दीपक, आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारे और सीमा के बारे में। देखो, सीमा वैसी नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, एग्जाम सिर पर है, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। दीपक को राहुल की बात बेहद नागवार गुजरी। उसे लगा राहुल उससे जलता है। वो तीखे अंदाज में बोला, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं तुम्हें इससे क्या, कहीं सीमा के साथ देखकर तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही। अपनी सीख अपने पास रखो, समझे। राहुल को लगा कि अभी दीपक को समझाना ठीक नहीं, वो सीमा के प्यार में अंधा और बहरा हो चुका है, अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा।

धीरे धीरे चाहत भरे दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। आखिर वो दिन भी आ गया जब सीमा का रिजल्ट आने वाला था। दीपक आज बेहद खुश नजर आ रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देकर जी जान से सीमा को पढ़ाया था। उसे पूरा विश्वास था कि सीमा जरूर पास हो जाएगी। और फिर उसने सोचा था कि सीमा के पास होते ही वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। जैसे ही दीपक को पता चला कि सीमा पास हो गई है, वो खुशी से झूम उठा, भागा भागा सीमा के घर पहुंचा। उंगलियां डोरबेल की बटन से हट ही नहीं रही थी। अचानक दरवाजा खुला, सामने सीमा खड़ी थी। चेहरे पर झुंझलाहट के भाव साफ जाहिर हो रहे थे। बेरुखी से बोली, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? दीपक अपनी ही धुन में बोला, सीमा तुम्हें पता है तुम पास हो गई हो? हाँ मुझे पता है। तो सीमा उसी बेरुखी से बोली, तुम खुश तो हो ना? दीपक ने पूछा। हाँ बहुत खुश हूं, आखिर इतनी मेहनत जो की है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रही हो? सीमा के लफ्जों में बेरुखी जारी रही, लेकिन सीमा के मोहब्बत में पागल दीपक का ध्यान सीमा के बेरुखी की तरफ नहीं जा रहा था। वो उसी प्यार भरी अंदाज में बोला, सीमा मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूं। तो कहो, अंदर नहीं बुलाओगी सीमा? नहीं अभी टाइम नहीं है, जो कहना है यही कह दो। सीमा आई लव यू, दीपक उसी उतावलेपन में बोला था। प्यार? और तुमसे? सीमा आश्चर्यचकित होते हुए बोली, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? आईने में देखी है शक्ल अपनी? तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? सीमा, दीपक तड़प कर बोला, मानो किसी ने उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी हो। वो धीरे से बोला, तुम मेरी दोस्त हो ना, और दोस्ती ही तो प्यार होता है। दीपक ने अपने जज्बात का हवाला दिया, प्यार तुम मुझसे करते हो मिस्टर दीपक, मैं नहीं। मैंने तो सिर्फ पढ़ने के लिए तुमसे दोस्ती का नाटक किया था, माफ करना। प्यार मैं राज से करती

रास्ते में एक जगह भीड़ लगी हुई थी। शायद किसी बाइक सवार लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। राहुल अपनी बहन आरती के साथ वहां से गुजर रहा था। भीड़ देखी तो रुक गया। अरे ये तो दीपक है, मेरा दोस्त। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, किसी ने कहा। राहुल अपनी बहन आरती की मदद से दीपक को घर ले आया। पूरी तरह होश में आते ही दीपक रोने लगा। मर जाने दो मुझे, जीकर क्या करूंगा, किसी लायक नहीं हूं मैं, राहुल उसे दिलासा देने लगा। ऐसी नासमझों वाली बातें नहीं करती दीपक, तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है तुमने? वो तो जीते जी मर जाएंगे। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है? पूरी जिंदगी तो उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, और एक अजनबी लड़की आई और तुमने अपनी जिंदगी और मौत उसके हाथ में दे दी। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप का क्या होगा जो मुझे देखकर जी रहे हैं। मैं अब किसी के लायक नहीं हूं राहुल, दीपक रोते हुए बोला। तुम बहुत लायक हो दीपक, तुम्हें पता नहीं अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, संभालो खुद को। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है, जिंदगी अनमोल है, इसे किसी ऐसे इंसान के लिए गंवाना समझदारी नहीं जिसके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। उठो और खुद को साबित करो। दीपक समझ चुका था, एक दृढ़ संकल्प के साथ उठा। वो जान चुका था कि उसे अब क्या करना है।

धीरे धीरे दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए और इस तरह कई बरस गुजर गए। दीपक अपनी मेहनत और लगन की बदौलत एक मशहूर डॉक्टर बन चुका था। दौलत और शोहरत उसके कदमों में थी। एक रात अचानक उसके फोन की घंटी बजी। किसी महिला का फोन था। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से आ जाइए प्लीज, वरना ये मर जाएगी। कौन और आप कहां से बोल रही हैं? वहां पहुंचा तो देखा कि एक टूटा फूटा जर्जर सा मकान था। एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने डॉक्टर दीपक को फोन किया था। मरीज को देखते ही दीपक मानो उछल पड़ा। अरे सीमा, तुम और इस हाल में? सब बताऊंगी दीपक, लेकिन पहले ठीक तो हो जाने दो, सीमा ने आहिस्ता से कहा। धीरे धीरे दीपक के इलाज से सीमा ठीक होने लगी। एक दिन फुर्सत के पलों में सीमा ने दीपक से कहा, दीपक मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर तुम्हें बहुत दर्द दिया था ना, मुझे मेरी गलती का सिला मिल गया। राज मुझे छोड़कर चला गया, उसने मुझे धोखा दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि इंग्लैंड में उसने एक और शादी कर रखी थी, उसके एक बेटा भी है। फिर अचानक कुछ सोचते हुए सीमा बोले, खैर तुम बताओ कैसे हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? दीपक जो अब तक चुपचाप

सीमा की बातें सुन रहा था। धीरे से बोला, मैंने शादी नहीं की सीमा। ये सुनकर सीमा की आंखों में एक चमक उभर आई। वो बोली, मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, है ना, इसीलिए तो शादी नहीं की। सीमा भावावेश में कहती चली गई, दीपक हम क्यों ना गुजरी हुई बातों को भूलकर एक हो जाएं? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ दीपक। दीपक चुप रहा, वो कुछ सोच रहा था।

0: क्यों है?
1: कुछ पल खामोश रहने के बाद डॉक्टर दीपक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है सीमा, आरती मेरा इंतजार कर रही है। कौन आरती? वही तुम्हारे दोस्त राहुल की अपाहिज बहन, सीमा ने कटाक्ष करते हुए कहा। उसे अपाहिज मत कहो सीमा, वो बहुत अच्छी और बहुत नेक लड़की है, तुम्हें क्या पता कि वो कितने काबिल है। हाँ, लेकिन तुम तो रूप और दौलत को ही सब कुछ समझती हो ना। खैर, मुझे यकीन है कि मैं आरती के साथ बहुत खुश रहूंगा। दर्द ही सही, लेकिन तुम्हारी ही वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। और हाँ, एक हफ्ते बाद मेरी आरती के साथ मंगनी है, तुम जरूर आना। ये कहकर दीपक वापस अपने घर की ओर मुड़ चला। सुनो दीपक, लेकिन प्यार तो तुम मुझसे, सीमा ने पीछे से आवाज देकर कुछ कहना चाहा। दीपक के कदम कुछ पल ठिठके, वो बिना पीछे मुड़े ही बोला, सीमा, मेरी मंजिल तुम नहीं।

तो ये थी कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं। कहानी की परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति है रश्मि कुकरेती की। तो अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को

0: केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Union Home Minister Amit Shah has said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today. The minister said the central government is leveraging cutting-edge technology including drones, radars and modern fencing to establish an unbreachable, leak-proof security grid. The Home Minister announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure the seed availability to the farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing, and ensuring proper supply to genuine farmers. He said that the government remains committed to protecting farmers' interests and ensuring that fertilizers are utilized solely for agricultural purposes. The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Sujata Sharma said that LPG production is all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
2: LPG ka production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery, and that impacts the production, and that's why we have slight up and down. One thing. Second is we are also giving the part of the pool for C3, C4 molecules. Third important thing is some of the refineries have come back to operations, and other than that we are getting more, you know, LPG because of the optimization from some of the refiners.
1: Ms. Sharma also informed that no dry out has been reported at any LPG distributorship. Speaking about retail outlets, 150 districts have reported 30% growth in petrol, while 156 districts reported more than 30%. She said that the government is reviewing the situation. The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, emphasizing that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi said

6:10 आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं सदाबहार गीतों की महफिल में कुछ सदाबहार गीत।

0: Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, friends, I'm your anchor Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Amit Goel.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन. सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा.
0: थैंक यू अमित. यस, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस शेड अराउंड 1.5%. सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 1100 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 23600. Robust macroeconomic fundamentals will support growth trajectory of Indian economy in current fiscal year despite headwinds, says RBI in its annual report. And global crude oil prices decline.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में लगभग 1.5% की गिरावट. सेंसेक्स लगभग 1100 अंक लुढ़का. निफ्टी 23600 के स्तर से नीचे दर्ज. रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बाधाओं के बावजूद मजबूत बुनियादी आर्थिक परिदृश्य के समर्थन से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी का रुझान रहेगा. और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट.
0: Before we move on any further, here's a disclaimer, friends. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले शेयर बाजार. घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग सभी बड़ी कंपनियों में आज गिरावट रही. एनएसई मिडकैप सूचकांक में 1.3% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई. शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में हुई बढ़त कारोबार के अंतिम आधे घंटे में बड़ी गिरावट में बदल गई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेसेस शेड अराउंड 1.5% टुडे. द बीएसई सेंसेक्स प्लंज्ड 1092 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,776. एनएसई निफ्टी फेल 359 पॉइंट्स to settle at 23,548. The broader market at the National Stock Exchange mirrored the fall in the frontline indices. The mid-cap 100 index lost over 1.3% and the small-cap 100 index dropped more than 0.8%. Earlier today, markets reversed their initial gains by midday, with both benchmark indices trading in negative territory amid looming geopolitical uncertainties. The sell-off deepened during the final half an hour of trade, pushing both indices towards the lowest points of the day.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट रही. नुकसान वाले प्रमुख शेयरों में पावर ग्रिड 3.5%, इंडिगो 3.3%, एनटीपीसी 2.9% की गिरावट से बंद हुए. हालांकि टेक महिंद्रा लगभग 2%, एचसीएल टेक 1.6%, लार्सन एंड टूब्रो 0.8% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे. इन्फोसिस में भी मामूली बढ़त दर्ज हुई.
0: In the sectoral indices at the BSE, 22 out of 25 sectors succumbed to selling pressure. In the top laggards, oil and gas plunged more than 2.7%, metal shed 2.3% and utilities fell over 2.2%. Conversely, focused IT surged 0.5%, IT gained over 0.4% and telecommunication rose 0.4%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,599 companies declined, 1,670 advanced and 194 remained unchanged. And rupee.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. डॉलर इंडेक्स 99.1 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. सुषमा, बाजार में शुरुआती बढ़त अंत होते बाद कारोबार के अंत होते होते वो गिरावट में बदल जाती है. क्या भरोसे की कमी है या जो छोटी सी भी अगर तेजी आती है तो निवेशक वहां पे मुनाफा वसूली शुरू कर देते हैं, या कुछ और खबरें हैं जो शायद आम लोगों तक या आम निवेशक तक नहीं पहुंच रही?
2: मेरे ख्याल में आजकल हमें ये एक्सटर्नल इश्यूज के ऊपर ज़्यादातर गौर करना चाहिए, क्योंकि इनका जो असर है वो ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टॉक मार्केट्स को। और आजकल जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है उसके उसको नज़र में रखते हुए सारी स्टॉक मार्केट, सारी शेयर बाजार जो है वो उन्हीं के ऊपर की नज़र रखी हुई है। और कल से ये खबर आ रही थी कि भाई कुछ अग्रीमेंट होने जा रहा है यूएस और ईरान के बीच में, कोई फ्रेमवर्क अग्रीमेंट आ रहा है, लेकिन उसका कुछ शायद कुछ हर्डल्स आ गए। और उसकी जो खबर आई मेरे ख्याल में ये जो लास्ट जैसे आपने कहा ट्रेडिंग आवर्स में, तो उससे मार्केट नीचे गई। और हालांकि आपको आपने खुद ही ये अपनी खबरों में बताया कि तेल के दाम जो हैं वो कम हो गए हैं। तेल के दाम इसलिए कम हुए हैं क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि भाई ये जो वॉर है वो शायद ख़त्म हो जाए। तो और कहा और भी मुद्दे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, वो तो है, लेकिन वो कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम है। लेकिन आज की जो मेरे ख्याल जो अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, जो वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में हुई है, वो ज़्यादातर इसी वजह से है कि वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट का अभी कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है।
0: To be very specific, it's the state of Hormuz. It's also the Iran-US agreement. Is uncertainty the new norm, Sushma, that we have to adjust to? And second question would be that are the global factors so strong that they are overriding any domestic factor?
2: Yes, for the time being, yes. Actually, in the Indian stock markets, we have had a period, they have been buoyed up despite other negative aspects, including the withdrawal of funds by the foreign institutional investors. Mm-hmm. We have had a great deal of support from domestic retail investors, and that has ensured that the market has not continued to fall over the last few months. But the fact is that the geopolitical tensions are weighing not only on the stock market, on the economy in general. And when you have the finance minister talking about the fact that food, fuel and fertilizers are issues that have to be dealt with, when the prime minister talks about austerity measures, yeah.

0: And that the market suddenly plummeted in the last 1 hour or so.
1: लेकिन हालांकि अभी इस तरह की भी खबरें थी और अमरीकी और उपराष्ट्रपति ने भी कंफर्म किया था कि जो 60 दिन का युद्ध विराम है उसमें मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है. हालांकि सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ने उस पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं. इस वजह से भी शायद क्या बाजार एक बेहतर दिशा की ओर जाता दिख रहा था, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप को लेके अनिश्चितता थी इस वजह से बाजार उसको नकारात्मक या निगेटिव अवधारणा की तरफ चला
0: सिर्फ,
1: गया.
0: सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी
1: हॉर्मुज पे भी कोई शुल्क लगाने की बात भी, ऐसी खबरें भी थी कि हॉर्मुज पे ईरान कोई शुल्क नहीं लगाएगा. हाँ, ये भी काफी बड़ी बात थी.
0: लेकिन उसमें ये भी खबर आ गई थी कि उनके जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने अभी हस्ताक्षर नहीं किया और उन्होंने अभी इसमें कोई अग्रीमेंट नहीं किया. वो भी एक खबर आई थी बीच में. तो उन्होंने भी साइन नहीं किया, अभी ट्रंप ने साइन नहीं किया. तो जो पॉजिटिव, जैसे आपने कहा, जो वाइस प्रेसिडेंट वैंस कह रहे हैं, मार्को रूबियो बात कर रहे हैं कि वो तो बस अभी होने वाला है, तो उसके बावजूद भी कोई आसार नहीं आ रहा है कि ये इसका कुछ अग्रीमेंट हो जाए. और बीच में ये जो खबरें, जैसे आपने बात की वैंस और रूबियो और बाकी सारे कितने लोगों की, कि ये कुछ समझौता होने जा रहा है, उसी की वजह से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम जो हैं वो भी कम हो गए हैं कि भाई इसका कुछ समझौता आने जा रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है.
2: Today, just Amit read about the fact that the rupee has strengthened, but can we be playing a devil's advocate? A weak rupee acts as a shock absorber?
0: Yes, it does. It does. Certainly. It's not, I won't even say it's not a devil's advocate. Rupee depreciation is not something that should be viewed with doom and gloom all the time. Uh-huh. The rupee has to find its right position against other currencies. It is falling. And there is a feeling, of course, that the rupee has been overvalued. There is also a feeling that, you see, this will also boost exports to a great deal and will definitely help the export effort. We cannot forget that though rupee depreciation in this country is being viewed with alarm, a country like China has used yuan depreciation, yes, mm-hmm, very effectively, to the extent that the United States has taken that up as an issue between them, that they are depreciating their currency and therefore trying to become more competitive in the American market and trying to overrun the market. So this is a strategy also by several other countries. So I don't think it should be taken as a prestige issue, ki, our currency is following, so it is a situation of great gloom. Mm-hmm. No, there are certain upsides. If you look at, for instance, the IT companies' revenues have certainly gone up in the last 6 months or so because of rupee depreciation. So you have to see there are pluses and minuses to this kind of currency volatility.
1: Lekin aaj rupya mazboot hua uske bawajood bhi jo IT companies ke share the wahan bhi mazbooti ka daur tha. तो क्या ये एक अल्पकालिक या मतलब त्वरित रुझान था या इसके पीछे भी कुछ और कारण भी नजर आते
0: हैं? आईटी कंपनीज का एक लॉन्ग टर्म, अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म सिनेरियो ये है कि इस वक्त उनकी आउटलुक, शेयर आउटलुक इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि एआई की वजह से. हालांकि आईटी कंपनीज खुद AI में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो AI के एनेबलर्स हो सकते हैं, AI के यूजर्स हो सकते हैं. और इसमें ये परसेप्शन है कि हमारे देश में अभी कोई बड़ी कोई ऐसी AI प्लेटफॉर्म है नहीं, और हम किस तरह हम कंपीट करेंगे बाहर की जो हाई टेक्नोलॉजी कंपनी से. तो इस ये जो परसेप्शन से अब काफ़ी देर से, मेरे ख्याल साल भर से, IT कंपनीज के ऊपर ये हैमरिंग हो रही है.
2: And Sushma, when we talk about this current situation, India is the fastest growing economy in the world at the moment. For a long time, the middle class was investing in mid-cap and small-cap. Our fundamentals have been very, very strong. Do you think in the present time it's still a safe bet to invest in the large cap and for a common person for long term?
0: I think it's always good to Whether it is small cap, mid cap or large cap, it's always good to review the performance of any company, because a small company can be extremely profitable, and a large company, for instance, I shouldn't take a name of a company, of course, uh-huh. but there are some large companies who are

0: apart from wheat and rice, because you know we have this great focus on wheat and rice, so mm-hmm. we have sufficient inventories of them. But we need to focus on increasing productivity of pulses, which we are importing.
1: Yes.
0: We need to improve productivity of edible oil seeds, because we are importing edible oils. In fact, that's a huge component of our import bill.
1: Mm-hmm.
0: So these are the areas that we need to focus on, rather than worry about wheat and rice. And that's what people talk about in terms of food security. You know, you have enough wheat and rice. Yes, we have enough wheat and rice.
2: Sushma, lekin agar Reserve Bank apni annual report mein ye kehta hai ki aarthik sthiti mazboot hai, aur agar balance sheet ko bhi dekhte hain, to balance sheet takriban 20% badhti hai.
0: Ji.
2: और साथ ही साथ रिजर्व बैंक का ये आकलन कि हमारा जो घरेलू आर्थिक परिदृश्य है वो हमारी ग्रोथ की जो स्टोरी है उसको इंटैक्ट रखेगा, उसको आगे ही बढ़ाता रहेगा. ये कितनी उम्मीदें जगाता है, और क्या इस रिपोर्ट के माध्यम से हम इसका जो असर है वो शेयर बाजार पे भी पड़ता हुआ नजर आएगा हमें आगे हमें आने वाले दिनों में? क्योंकि अगर रिजर्व बैंक मजबूत है, उसकी रिपोर्ट मजबूत है, तो ये तो मानना चाहिए कि हमारी आर्थिक परिदृश्य बहुत अच्छा है.
0: देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ये लालिमा ने भी यही सवाल पूछा कि ये अगर आप फंडामेंटल्स पे जाएं, अब इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे, और ये स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर नीचे जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट हमेशा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर नहीं जाता है. स्टॉक मार्केट कई बहुत दूसरे मुद्दे पे जाता है. हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इस वक्त, हालांकि वेस्ट एशिया का क्राइसिस इतना है, जो अप्रैल के जो डेटा आई है इतनी अच्छी आई है, हालांकि हो सकता है मई का इतना अच्छा ना आए, लेकिन अप्रैल की डेटा ये है कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स के जो कलेक्शंस हैं वो रिकॉर्ड लेवल पे हैं. आपके पैसेंजर व्हीकल सेल्स के जो सेल्स हैं वो रिकॉर्ड लेवल पे हैं, तो कंजम्पशन बढ़ गया है हर चीज का. तो इतना पॉजिटिव अच्छा डेटा आया है मई में, अप्रैल के बारे में. अब आगे देखना है कि मई कैसे है, लेकिन स्टॉक मार्केट इसको कोई तवज्जो नहीं देता है. वो एक
2: बट लेकिन अगर रिजर्व बैंक की जो बैलेंस शीट इतनी अगर मजबूत है,
0: हाँ,
2: तो कम से कम हमारे पास ये मानने का तो पर्याप्त कारण है और आधार है कि हमारी आर्थिक स्थिति तो निश्चित तौर पे बेहतर रहेगी, और आर्थिक बढ़ोतरी जो है वो निरंतर चलती रहेगी.
0: वो तो ठीक है, लेकिन इसका जो असर है वो ज्यादातर डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स पे है, और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स ने हमारी इसी ग्रोथ स्टोरी के ऊपर अपना ये स्टॉक मार्केट में अपना फेथ डाला है, और वो डालते रहते हैं. सिर्फ FIIs जो है वो इतने इंप्रेस नहीं है.
1: यस यस, यू आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन ओनली. इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन बाय 7.5 बिलियन US डॉलर्स, स्टैंडिंग एट 681 बिलियन US डॉलर्स फॉर द वीक एंडिंग May 22. अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गोल्ड रिजर्व्स डिक्लाइन बाय 4.5 बिलियन US डॉलर्स टू ओवर 114 बिलियन US डॉलर्स, एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द रिजर्व्स, डिक्रीज्ड बाय 2.87 बिलियन US डॉलर्स टू 543 बिलियन US डॉलर्स ड्यूरिंग द वीक.
2: मौसम विभाग ने देशभर में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. नई दिल्ली में आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ एम रविचंद्रन ने बताया कि देशभर में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होने वाली वर्षा का पूर्वानुमान 90% रहने की संभावना है. शायद अगर बारिश कम होती है उसके बावजूद भी इतनी कमी तो नहीं है जो शायद चिंता का सबब अभी फिलहाल बन सके.
0: जनरली क्या होता है कि ये इतना, जब भी ऐसे कोई फोरकास्ट आता है, हम बहुत चिंता करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो उत्पादन है वो काफी अच्छा रहता है. तो अभी देखना है इस साल क्या होगा.
2: नजर डालते हैं एशिया यूरोपीय बाजार पे. एशियाई बाजारों में स्थिति का दौर रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.5%, जापान का निकेई 2.5%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 1%, और हांगकांग का हैंगसेंग 0.7% की बढ़त से बंद हुआ. हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.7% की गिरावट भी नजर आई. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिलाजुला दौर रहा. लंदन और फ्रांस के शेयर सूचकांक जहां 0.2% से 0.7% तक की बढ़त के दायरे में नजर आए, वहीं जर्मनी के शेयर बाजार में 0.2% की गिरावट नजर आई.
1: Major US stock indices closed at record highs yesterday, driven by gains in technology shares and reports that American and Iranian negotiators had agreed on the framework for a memorandum of understanding to extend the ceasefire by 60 days. The Nasdaq Composite Index surged 0.9% to end at 26,917. The S&P 500 gained almost 0.6%. to close at 7,564, and the Dow Jones Industrial Average rose marginally to close at 50,669. On the economic front, real gross domestic product GDP increased at an annual rate of 1.6% in the first quarter, down from the earlier estimate of 2% as per the second estimate released by the US Bureau of Economic Analysis. A separate report by the Bureau showed that headline personal consumption expenditures PCE price index dropped to 0.4% in April on a monthly basis from 0.7% in March.
2: Sushma, बहुत संक्षेप में मैं ये जानना चाहता हूँ, अमेरिका की जो आर्थिक आंकड़े हैं वो उतने अच्छे नहीं, जैसा कि अभी लालिमा ने भी बताया कि अगर वहां पे जीडीपी का अनुमान 2% का था, 1.6% रहा, उसके बावजूद भी बाजार उसको सकारात्मक तौर पे ले रहा है. एशियाई यूरोपीय बाजार भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ मिडिल ईस्ट का असर सारा का सारा भारतीय बाजारों पे पड़ रहा है? वहां के बाजार इसे छूते हैं, क्या ऐसा ही है या कुछ और बात?
0: नहीं, वो देखिए, अलग अलग देशों का अलग अलग इम्पैक्ट है वेस्ट एशियन वॉर. हमें देखना है कि हमारी जो हम जो आयात करते हैं वहाँ गल्फ से, वो इसका बहुत ज़्यादा असर है. वी आर द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड, तो और ज़्यादातर हमारा तेल जो है 50% तो कम से कम गल्फ से ही आता है, वेस्ट एशिया से ही आता है, तो उसके काफ़ी जो ये जो असर हैं, इम्पैक्ट हैं, सब लोग जो एनालिस्ट हैं वही ये समझते हैं. तो अमेरिका का आप कहे इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि वो खुद ही तेल बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर
2: होने के बावजूद वहां पे तेल की कीमतें भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, लगभग 2 गुना है
0: बिल्कुल.
2: उसके बावजूद भी शेयर बाजार उनका बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, ये कुछ अजीब सा नजर आता है. और जीडीपी के आंकड़े भी ठीक है, वो तात्कालिक ही सही, शॉर्ट टर्म में ही उनका जो अनुमान थे उससे कम आए हैं, लेकिन उसका बाजार फिर भी एक बेहतर स्थिति में है. और अगर एशिया की बात करें, एशिया में भी आज की अगर खासतौर पे बात करें तो चीन को छोड़ के बाकी सभी बाजारों में तेजी का दौर रहा है. क्या वजह मानते हैं आप कि सिर्फ सेंटिमेंटल अच्छे नजर आ रहे थे, उम्मीद थी कि हॉर्मोज पे ईरान यूएस में कुछ हो जाएगी डील, इस वजह से या कुछ और?
0: नहीं, ये हॉर्मोज का ही असर है. और ये अगर आप देखें बाकी जो बाजार हैं उनकी और भी कोई डोमेस्टिक वजह होंगी, लेकिन अमेरिका तो हम ठीक कह सकते हैं कि उसमें अभी भी वो एआई का जो बबल चल रहा है, टेक्नोलॉजी कंपनीज का जो असर है. और अब जैसे हमने कहा कि तेल का जो उत्पादन है अमेरिका में अभी भी वो सबसे ज्यादा उत्पादन वहीं से आता है, तो अभी के दाम जो बढ़ गए हैं उससे शायद जनरल जो अवेयरनेस है कि भाई ये जो वॉर है ये गलत काम है, लेकिन उससे उनकी आर्थिक स्थिति कम नहीं हुई है.
1: Also the fact that US markets are driven by major few tech companies, big
0: yes,
1: ones.
0: That's what right? I meant, yeah. The AI boom that is going on.
1: Right. All right. Look at the oil prices. Global crude oil prices dropped today. Brent crude was trading 1.7% down at $92.14 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 1.4% lower at $87.64 per barrel when reports last came in. And a look at the bullion market. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.6% down at 1,56,760 rupees per 10 grams, while silver was trading over 1.1% lower at 2,67,360 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein June ke vaida karobar mein sona 0.6% ke nuksan se 1,55,961 rupaye prati 10 gram ke star par raha. July अनुबंध वाली चांदी 1.1% की गिरावट से 2,66,536 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई. सुषमा, काफी संक्षेप में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें देखते हैं, निरंतर अच्छी खबरें हैं क्योंकि हम मूल तौर पर आयातक हैं
0: बिल्कुल.
2: और अगर उधर वहीं सोने चांदी की हम कीमतों की बात करते हैं, डॉलर कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं, थोड़ा हाँ, सा आज हाँ, उसमें कमजोरी है, लेकिन उसके बावजूद भी सोना तकरीबन अपने जो स्तर है उसके आसपास ही है, चांदी का भी यही हाल है। दोनों चीजों में अभी क्या फौरी तौर पे नजर आता है?
0: देखिए, सोना तो है वो सेफ हेवन एसेट है। अभी जो उथल पुथल हो रहा है पूरे विश्व भर में, उसका असर सोने के ऊपर और चांदी के ऊपर आया है पहले, और सिल्वर भी, चांदी जो है वो भी सेफ हेवन एसेट इस वक्त माना जा रहा है, हालांकि हमेशा सोना ही होता था, लेकिन सोने का जो भाव है एक साल में कितना 30% बढ़ा है, तो उसका वो

0: इसलिए हुआ क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रही हैं, और ये जब तक ये टेंशंस कम नहीं होंगी इसका इनके दाम भी यही रहेंगे।
1: चलिए सुषमा, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
2: Absolutely, yes, friends. Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices shed around 1.5%. Sensex drops nearly 1,100 points. Nifty settles below 23,600. Robust macroeconomic fundamentals will support growth trajectory of Indian economy in current fiscal year, despite headwinds, says RBI in its annual report. And global crude oil prices decline. And well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Amit Goyal signing off. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्य

0: asked the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The apex court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, emphasizing that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bakshi said that orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said that order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and under trial convict should be released preferably the same day or at most the next day. Myanmar President U Min Aung Hlaing will be on an official visit to India from tomorrow till the 3rd of June. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that during their bilateral talks, Prime Minister Narendra Modi and the visiting dignitary will discuss how to strengthen bilateral ties further. In IPL cricket, Gujarat Titans will clash with Rajasthan Royals in the Qualifier 2 match in New Chandigarh at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
2: प्रगति यानी कि प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख मंच है, जो प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साझेदारी में परियोजनाओं, योजनाओं और शिकायत निवारण की प्रत्यक्ष एवं वास्तविक समय में या रियल टाइम समीक्षा के माध्यम से उन्हें तेजी से आगे बढ़ाता है। प्रगति इस बात का सशक्त उदाहरण है कि डिजिटल शासन किस प्रकार नीतिगत मंशा को वास्तविक और दृष्टिगोचर प्रगति में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया प्रगति भारत में प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर चुका है। ये केवल एक समीक्षा मंच भर नहीं है, बल्कि नौकरशाही की निष्क्रियता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया के दृष्टिकोण को सशक्त बनाने तथा ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, उनके क्रियान्वयन की अपेक्षा की जाए और परिणामों का आकलन किया जाए। दीपक जी, इस बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं और ये बताएं, प्रगति किस तरह सरकार की अटकी हुई या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं को तेजी लाने में मदद कर रहा है और लागत में वृद्धि को भी चेक कर रहा है।
3: आपने जैसे कहा कि ये पूरा जो प्रगति है एक ऑनलाइन सिस्टम है, वेब बेस्ड सिस्टम है, चाहे उसका जो शुरुआत में जब पहले समस्याएं आती हैं, जो जिस प्रोजेक्ट को इस पे रिव्यू किया जाता है वो भी आपके देखेंगे तो वेबसाइट पर इनका डिटेल डाला जाता है। जैसे आपने कहा इसकी जो मीटिंग होती है जो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं वो भी ऑनलाइन ही होता है, तो देखा जाए तो एक तरह से एक पेपरलेस एक पूरा प्रोग्राम है। और दूसरी बात यहाँ तक की है कि प्रगति में हम देखेंगे तो आज तक की जब से शुरू हुआ है, आखिरी जो प्रगति हुए थे वो 51वां, तो इसपे ज्यादातर जो लिया जाता है वो है डिलेड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट प्रकल्प जो है देर हो गए हैं, तो उसपे ज्यादातर देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपका आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन्हीं का ही होता है, जैसे रोड, रेल, पावर, कोल, हाउसिंग, इस तरह के सब्जेक्ट ज्यादातर आते हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े जिसको हम कहते हैं फ्लैगशिप स्कीम, जो बहुत बड़े स्कीम है, जैसे कि वन नेशन कार्ड, आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, जो हमारे हॉकर भाई लोग हैं उनको जो 10-10 हजार, उसके बाद 20 और 50 हजार की लोन देने का जो व्यवस्था किया गया, स्वच्छ भारत मिशन, इनका भी रिव्यू होता है। इसके साथ साथ बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जिसपे लोगों की बहुत सारे शिकायतें होती हैं तो उनका भी पूरा डिस्कशन होता है। उसमें मैं आपको जैसे एग्जांपल देख सकता हूँ, कोरोना को लेकर हुआ था, रेरा जो हमारे रियल एस्टेट रेगुलेशन जो है, जो उसके लिए जो पूरी व्यवस्था की गई, उनकी ग्रेवियंसेस को, उनकी जो लोगों की जो शिकायतें हैं उनके ऊपर भी मीटिंग हुई है, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर पे भी हुआ है, आपका जनधन योजना पे भी हुआ है। तो देखा जाए तो जो प्रगति है इस पे खाली आधारभूत या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नहीं है, बल्कि सरकार की बड़े बड़े स्कीम और लोगों की जो समस्याएं होती है उनका भी मीटिंग में बातचीत होती है। जैसे हम जानते हैं सब कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विलंब होता है या उसका लागत में बढ़ोतरी हो जाती है तो देखिए ये देश के लिए तो नुकसान है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये होता है जब आप देर होता है तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है,

0: करोड़ आपका पैसे उसका जो लागत बढ़ जाता है, तो हमारे एक्सचेकर पे हमारे सरकार पे वो दबाव बढ़ता है। तो प्रगति ने ये दो चीजों को तो बहुत ही सही तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से एड्रेस किया है, क्योंकि उनको हर स्तर पे देखा गया कि किस प्रोजेक्ट के किस कारण से डिले हो रहा है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो, चाहे वो आपको एनवायरमेंट और जंगल की जो एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो, कहीं पे आपका जैसे हम किसी को यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे बिजली के बड़े बड़े खंभे हटाना, कहीं पे आपको बड़े बड़े पानी की पाइप जो जमीन के नीचे होता है उनको हटाना, तो ये सब चीजें बारीकी से देखा जाता है। और बारीकी से देखने के बाद ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि सारे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री तक जाता है, बहुत प्रोजेक्ट हैं जो उससे काफी पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं। जो चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं वो प्रधानमंत्री आखिरी में उसका रिव्यू करते हैं। तो प्रगति होने से एक तो व्यवस्था ये हुई है कि जो प्रोजेक्ट विलंब हो रहे थे, जिनका कॉस्ट बढ़ रहा था, अगर प्रगति नहीं होती उनके कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाते, तो इसके कारण क्या हुआ कि आपको कॉस्ट तो घटा नहीं पर कॉस्ट की जो बढ़ने में जो आगे की संभावना था उसको घटा दी गई। तो एक तरह से आपका जो जिसको हम कहते फिस्कल बर्डन होता हमारे ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन होता, वो घटा और समय भी इसके कारण बचा जो बहुत डिले लगता है। जैसे आप हम सब जानते हैं जो जम्मू से श्रीनगर का जो रेलवे लाइन है जो कई सालों से अटका हुआ था, वो प्रगति के कारण बहुत जल्दी संभव हुआ। जैसे हम जानते हैं नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है, अगर वो जिस गति से जा रहा था और कई साल लग जाए तो उसको कंप्लीट होने में, प्रगति होने से उस पे उसका त्वरित गति में उसका काम हुआ है। इसका होने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि जब हम जानते हैं कि कोई मीटिंग कोई एक प्रोजेक्ट का जब हर ऑफिसर को हर ब्यूरोक्रेट को पता चलता है कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो आप देखिए कि वहां पे तत्परता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जितना मेरी जानकारी है मैं ये जानता हूं, जैसे कि प्रगति मीटिंग की नोटिस आती है और जो जो प्रोजेक्ट का नाम आता है, आप कोई भी मंत्रालय में जाइए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में जाकर बात करिए, वो देखेंगे ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है, क्योंकि वहां पे ये कोई नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता में ये कोई बोले कि आपने ये काम नहीं किया। और उसके कारण क्या होता है, अचानक से आप देखेंगे जो बैकग्राउंड कोऑर्डिनेशन है मीटिंग के पीछे की, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करना, स्टेट गवर्नमेंट सोचिए कोई मिनिस्ट्री से बात कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसको रिजॉल्व करने के संपूर्ण तरह से प्रयास करते हैं। याद है वाक्य कि कोई एक मीटिंग होने वाली थी जिसपे ये आपका टेलीकॉम का जो फाइबर नेटवर्क डाला जाता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री का मीटिंग होने वाला था, काफी विलंब हो रहा था, मुझे क्योंकि मैं उसके बारे में लिखा था तो मुझे याद है, ठीक मीटिंग से एक दिन पहले जितने भी उसका स्टेक होल्डर है, जितने मंत्रालय है, सबने एक साथ कह दिया कि हमने सारी चीज रिजॉल्व कर ली है। तो देखिए इसका ब्यूटी है, क्योंकि आप देखेंगे तो कि जो है यही इसका जो है सुंदरता है कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं तो उससे पहले ही बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाता है, और जब कॉस्ट ओवररन नहीं होता है, लागत नहीं बढ़ने को हम रोक सकते हैं, समय की देरी को विलंब जो होता है उसको रोक सकते हैं, तो इसके देखिए सबका फायदा होता है, सरकार का होता है और जैसे मैंने कहा लोगों को सुविधाएं बहुत जल्दी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया, सोचिए आपका जम्मू से श्रीनगर की जो रेलवे लाइन, सोचिए और 5 साल डिले हो जाता तो क्या होता, जो लोगों को इतना लंबा समय रोड से जाना पड़ता है या फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा देकर जाना पड़ता है, उससे तो बच गए ना।
1: प्रगति में जो परियोजनाएं लाई जाती हैं वो अक्सर ऐसा होता है जो रुकी हुई रहती हैं या डिलेड होती है, क्या कारण है कि ये परियोजनाएं रुक जाती हैं, इनके प्रमुख कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? प्रगति तो करती है लेकिन क्या मंत्रालय स्तर पे या राज्यों के स्तर पे इनके भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं?
0: एकदम आपने सही कहा, और जैसे कि 4-5 जो सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, वो एक तो पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपका लैंड एक्विजिशन, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिना जमीन के आप शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि रोड आपको बनाने के लिए 100% आपको जमीन चाहिए। आप अगर पावर प्लांट बनाते हैं तो आपको जमीन चाहिए। अगर आप सोचिए कोई बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है तो सब में आपको जमीन चाहिए। अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत खाली प्रगति की बात नहीं, अगर आप हर साल की अगर सवाल देखेंगे जो पार्लियामेंट में आता है, हमारे संसद में आता है, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हो, परिवहन मंत्रालय हो, या रेलवे मंत्रालय हो, या आपका सिविल एविएशन मंत्रालय हो, ये सब में देखेंगे तो जो भी सवाल पूछा जाता है कि मुख्य कारण क्या है डिले का, तो कहा जाता है लैंड एक्विजिशन, जमीन के अधिग्रहण में देरी। दूसरा जो सवाल आता है वह आपका क्लियरेंसेस क्या क्या है, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, इस पे देरी बहुत, एक ये दो जो है सबसे प्रमुख कारण है। इसके साथ जैसे मैं आपको पहले बताया था कि तीसरा कारण है कि जिसको यूटिलिटी शिफ्टिंग देखेंगे, जहां पे एक नया सोचिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, वहां पे पहले कभी बिजली के बड़े बड़े हाई टेंशन वायर का जो खंभे लगे होंगे और वो छोटे नहीं है कि अचानक रातों रात बदल सकते हैं, तो इनको सब शिफ्टिंग करने का भी बहुत टाइम लगता है। मेनली यही 4-5 चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होता है। और जब प्रगति होती है तो उसपे क्योंकि सारी बातें क्लियरली आती है, जैसे मैंने आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये प्रगति मीटिंग होती है उसपे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में होते हैं, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में होते हैं, सब वर्चुअली जुड़े होते हैं ऑनलाइन माध्यम से, फिर सारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं। तो जैसे जमीन अधिग्रहण की बात अगर हम करें, हम तीनों चीजें जमीन अधिग्रहण

0: पर्यावरण की बात करें और तीसरा जो यूटिलिटी शिफ्टिंग, ये तीनों का जो मुख्य जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार का है। तो जब मीटिंग होती है इसकी तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या ये आपको जैसे कहें निर्देश दिया जाता है कि आप इसको जमीन के अधिग्रहण को जल्दी से संपूर्ण करें। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ एग्जाम्पल, अभी प्रगति हुई थी उस पर रेलवे का भी कोई प्रोजेक्ट था जहाँ पे वहां पे भी कोई कम्पनसेशन जो आपका लोगों को जो पैसे देने की बात आई थी कुछ प्रोजेक्ट के कारण, तो उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही सख्त निर्देश दिया रेल मंत्रालय को कि जल्दी से लोगों को जो कम्पनसेशन है दीजिए ताकि काम कंप्लीट हो जाए। तो इस पे क्या होता है कि जो केंद्र का मंत्रालय हो या राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं, देखिए केंद्र सरकार में देखा जाए तो सारे काम कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका अंडर सेक्रेटरीज हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार का तो मुखिया ही देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ब्यूरोक्रेटिक हेड है वो तो चीफ सेक्रेटरी है। तो जब चीफ सेक्रेटरी को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मुख्य सचिव को तो उसका सीधा असर देखने को मिलता है। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताऊं, दिल्ली के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ये सब प्रोजेक्ट को पीएम ने एक एक करके प्रोजेक्ट का रिव्यू किया हुआ है और इस रिव्यू के कारण प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कम्प्लीट हुए।
1: जी, प्रगति की अभी तक 51 बैठकें हो चुकी हैं और इसमें 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा सका है और कुछ तो कंप्लीट भी हो चुके होंगे। ये मंच प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष देखरेख में केंद्र और राज्यों के बीच वास्तविक समय में तालमेल सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही को और अधिक अच्छा करती है। जमीनी स्तर पर प्रगति और क्या बदलाव ला रही है, चाहे वो गवर्नेंस लेवल हो या लोगों के लिए आराम सुनिश्चित करना या ईज ऑफ लिविंग जो कि सरकार का बहुत फोकस एरिया रहा है वो सुनिश्चित करने में कैसे मदद कर रही है?
0: जैसे आपने कहा कि करीबन 85 लाख करोड़ और उसके साथ मिला दें तो पिछले हफ्ते 30,000 करोड़ का और प्रोजेक्ट हुए हैं, तो 85 लाख 30,000 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट का रिव्यू हुआ है और ये करीबन 3,300 प्रोजेक्ट से भी ज्यादा हैं। पहला वाला तो था इसकी कीमत कितना कॉस्ट था, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 3,300 से ऊपर है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ प्रोजेक्ट नहीं ज्यादातर प्रोजेक्ट ही इस पे आपके एक्सपेडाइट हुए हैं। जितना भी प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे प्रगति में आई है उनमें बहुत जल्दी उनकी गति पकड़ी है और ज्यादातर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा कि इस पे जमीनी स्तर पे क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब मीटिंग होती है जिसपे प्रधानमंत्री होते हैं, भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और हर स्टेट गवर्नमेंट के हर राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, तो देखिए एक मैसेजिंग होता है कैसे सबको साथ मिलकर काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई भी अगर प्रोजेक्ट चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे रेलवे हो चाहे पावर का प्रोजेक्ट हो, कोई मंत्रालय का जब आता है उनको ये जरूरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करें। तो ये जो कल्चर धीरे धीरे, ये मेरा नहीं है इस पे मुझे सोचना नहीं, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रेक द साइलोज, कि आप जो अपने अपने हिस्से में बंधे रहते हैं उससे थोड़ा बाहर जाइए। आप ये सोचिए कि खाली ये मेरा रोड का प्रोजेक्ट नहीं है, रेल का प्रोजेक्ट नहीं है, देश का प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है ये सोच ये धीरे धीरे सबके जो अंडरस्टैंडिंग और जहन में ये आने लगा है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट में कारण देर हो रहा है तो आप सोचिए कि कोई सचिव जो है मुख्य सचिव को फोन करके बात करते हैं कि देखिए ये प्रगति में आ रहा है, ये प्रोजेक्ट को जल्दी किया जाए। जब आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी या कनेक्शन थोड़ा फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाएगा तो उसका असर ये भी होगा बाकी जो प्रोजेक्ट हैं जो प्रगति में नहीं आ रहे वहां भी अगर डिले हो रहा है तो आप उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर है, देखिए हर जो सचिव हैं मुख्य सचिव हैं अधिकारी हैं, जब उनको ये पता है कि प्रोजेक्ट अगर कोई मेरा बहुत ज्यादा विलंब हो गया या कॉस्ट बढ़ गया तो प्रगति में चला जाएगा, प्रगति में गया तो फिर मुझे तो बहुत सारे सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो इसका असर क्या होगा, जो प्रोजेक्ट धीमे चल रहे हैं उनको वो लोग भी कोशिश करते हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक से होता है ताकि वो प्रोजेक्ट प्रगति में ना जाए। तो मुझे लगता है पूरा जो है वार कल्चर को प्रगति ने काफी बदलाव लाया है।
1: जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि ब्रेकिंग द साइलोस, ये साइलोस को ब्रेक करने में मदद करता है। आपको लगता है कि ये जो बैठक होती है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद को इंस्टीट्यूशनलाइज या संस्थागत रूप देने में भी मदद कर रहा है?
0: आपने ये बात तो एकदम सही कहा कि एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये स्ट्रेंथन करता है, इसको जब मजबूत करता है। इसका कारण मैं आपको इसलिए बताया कि जैसे जितना भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट को तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी कामयाब हो सकता है जब राज्य सरकार संपूर्ण तरह से उसके साथ काम करे। वो तभी हो पाएगा जब दोनों में सहयोगिता होगा या कोऑपरेशन होगा, तो फेडरल कोऑपरेशन के बिना ये तो काम हो नहीं सकता। दूसरा बात क्या है कि जब हर व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पे रहकर बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 50वां प्रगति हुई थी उसके बाद हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन साहब ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पे हम लोगों ने सवाल भी पूछा था कि जो है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कहा कि कोई भी राज्य सरकार या हर राज्य सरकार चाहता है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो और कोई सरकार नहीं चाहता उसका डिले हो, क्योंकि विलंब होगा कॉस्ट ओवररन होगा तो सबको समस्या होता है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि हर सरकार चाहती है रोड बने, हाईवे बने, रेलवे लाइन डले, नया ट्रेन चले, अच्छे पावर प्रोजेक्ट आए ताकि वो उनकी आवश्यकता को पूरा कर सके, और वो तभी कंप्लीट होगा जब केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर बात करें।

0: एक बात ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ये कंप्लीटली एपोलिटिकल सिस्टम है, इस पे केंद्र में सरकार, राज्य में कौन सरकार है, इसका कोई असर ही नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे हर राज्य के प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेडाइट किया गया है, कंप्लीट किया गया है।
1: जी दीपक जी, आपने बहुत विस्तार से प्रगति के बारे में हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

शाम का वक्त हुआ है 7:25:52 आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर आप सभी का स्वागत। मैं संजीव अग्निहोत्री और महफिल है सांझ ढले की।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

दोस्तों, मौसम में बदलाव फिर से देखा जा रहा है। कल से कुछ इलाकों में बारिश हुई, आज भी कुछ आंधी सी आ रही है और बारिश होने के संकेत हैं। तो ये मौसम

वो बदल रहा है, ये संकेत दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो गर्मी हो रही है तो उससे थोड़ी सी आपको राहत मिल जाए। लेकिन ये मौसम जब आंधी वगैरह तेज़ आती हैं तो काफ़ी मुसीबत भी लाती हैं, क्योंकि कहीं कहीं पेड़ गिर जाते हैं, कहीं पर कुछ बिजली चमकने लगती है, कड़कने लगती है। तो इसमें हमको आपको अपना, अपने बच्चों का, अपने ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग सदस्य हैं घर में उनका भी बचाव करना होगा। तो बेहतर है कि ऐसे मौसम में बहुत ज़रूरी ना हो तो आप घर के भीतर ही रहें, और घर के बाहर हों तो सावधानी ज़रूर ज़रूर बरतें।

0: के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरविंदर मांकड़, एक राइटर, एक कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर। आप मुझे मेरे करैक्टर मोटू पतलू से अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 50 साल से मैं उसे लिख रहा हूं और ड्रा भी कर रहा हूं और टीवी पे भी आ रहे हैं। संपत चंपत, शेख चिल्ली और ना जाने ऐसे 500 करैक्टर्स आप सबके मोहब्बत और प्यार से इस दुनिया में मशहूर हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आकाशवाणी के बारे में। जी हाँ, मेरा बचपन जिसके साथ बीता, आज 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी अपना 90 वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था, उसके अंदर एक प्लास्टिक की तार जैसी एक लाइन होती थी और एक गोल स्विच होता था जिसको हम मैनुअल घुमाते थे और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता था। लेकिन मुझे आकाशवाणी की जो सबसे सुंदर लगती थी, सुबह सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून आती थी सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले, यकीन माने कि मैंने एक एक प्रोग्राम को नोट किया हुआ था, जैसे कि 9 बजे ये आएगा, 6 बजे ये आएगा। मुझे आज तक याद है कि 9 बजे हवा महल आया करता था, 7 बजे फौजी भाइयों का फरमाइशी प्रोग्राम आता था, चित्रमाला आता था और इसके अलावा बहुत सारे और बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों के कार्यक्रम, विविध भारती का अपना एक अलग मजा था क्योंकि टीवी होता नहीं था, रेडियो एकमात्र साधन था। तो एक ट्रांजिस्टर मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था जो मैं रात को हवा महल जिसपे सुना करता था। समय बीता, मुझे याद है ये 1977 की बात है, मैं 12 या 13 साल का था। तो उस समय धर्मवीर फिल्म रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई की, और जहां तक मुझे लगता है पहला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, प्रायोजित गाना रोज सुबह 9:30 के आसपास बजता था मोहम्मद रफी की आवाज में, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। तो मैं कहीं भी खेल रहा होता था, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम होता था कि अब 9:30 हो गए, मैं भागता हुआ घर आता था और मोहम्मद रफी साहब का वो गीत, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ये सुना करता था, इतना पसंद था मुझे। और बहुत सारे किस्से आकाशवाणी के साथ मेरे, हर दम रेडियो का दीवाना हुआ करता था मैं। बेशक आज टीवी आ गया है, बेशक आज बहुत कुछ आ गया, मगर आज भी मेरी जो पसंद है वो विविध भारती होता है या आकाशवाणी का गोल्ड होता है, क्योंकि पुराने गाने बजाते हैं, संस्कारी गाने बजाते हैं और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उलझुल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।

यशुदास की आवाज में आप सुन रहे हैं फिल्म दादा के ये गीत, और इस गीत के साथ ही सांझ झलके महफिल खत्म करने की इजाजत दीजिए संजीव को। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार 21 जून को नीट यूजी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने धूल और प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किए जा रहे नए डस्ट पोर्टल को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। दिल्ली नगर निगम ने शालीमार बाग में विश्व स्तरीय सभागार तथा सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए NBCC लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय जनसंचार संस्थान ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की और दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड बस कंडक्टर को दिखाना होगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि हाल ही में नीट परीक्षा के रद्द होने के कारण अनेक परीक्षार्थियों को दोबारा नीट परीक्षा देनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि परीक्षार्थियों को उनकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान हर संभव सहयोग और सुविधा उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
2: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800-11-800-4 पर संपर्क कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज धूल और प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किए जा रहे नए डस्ट पोर्टल 2.0 को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। श्री सिरसा ने बताया कि यह पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित मॉनिटरिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड ऑडिट, अलर्ट सिस्टम और कैमरा सेंसर डेटा के जरिए बताएगा कि किन साइट पर नियमों का पालन हो रहा है तथा कहां लापरवाही हो रही है। श्री सिरसा ने कहा कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट

0: माध्यम से समय रहते कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। इस व्यवस्था से हर साइट की सातों दिन 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग होगी, जिससे लापरवाही करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि धूल और प्रदूषण को रोकने की जवाबदेही तय करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने आज नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC के साथ शालीमार बाग में विश्व स्तरीय सभागार तथा सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नगर निगम ने इसे राजधानी में सार्वजनिक अवसंरचना तथा सामुदायिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये समझौता ज्ञापन नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार तथा NBCC के अध्यक्ष डॉ KP महादेव स्वामी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस ऑडिटोरियम में लगभग 1000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी तथा ये सार्वजनिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सांस्कृतिक आयोजनों, सरकारी कार्यक्रमों और सामुदायिक सभाओं के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज रोहिणी स्थित अम्बेडकर भवन में राजस्व विभाग के ई सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय भवन की स्थिति, नागरिक सुविधाओं, साफ सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और लोगों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। एक रिपोर्ट।
1: निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने भवन की जर्जर हालत, खराब लाइट व्यवस्था, बंद एयर कंडीशनर, टूटे फर्श, गंदे शौचालय और रखरखाव में लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां रोज बड़ी संख्या में लोग अपने जरूरी दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े काम कराने आते हैं, वहां ऐसी अव्यवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर भवन में मरम्मत का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा, डिजिटलीकरण तथा संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और सम्मानजनक सेवाएं प्राप्त हों। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने कहा कि किसी भी LPG वितरक से रसोई गैस कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।
2: मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया।

0: इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि IIMC का मीडिया शिक्षा में लंबा अनुभव रहा है और इसने कई पीढ़ियों के मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है। इस अवसर पर IIMC की कुलपति प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि यह अकादमी मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में AI शिक्षा, व्यावहारिक कौशल और नवाचार के लिए देश का पहला राष्ट्रीय केंद्र है। उन्होंने बताया कि यह अकादमी दूरदर्शन, आकाशवाणी और पत्र सूचना कार्यालय जैसे संस्थानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और AI टूल किट तैयार करेगी। दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर के इंदिरा विकास कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार ये विदेशी नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि इन अवैध अप्रवासियों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने चालान और यातायात प्रबंधन प्रणाली को अपग्रेड किया है। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले नागरिक अब मौके पर ही डिजिटल पेमेंट तरीकों जैसे UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से चालान भर सकेंगे। इसके अलावा मौके पर मौजूद चालान अधिकारी के पास उपलब्ध हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, नागरिक अनुकूल, कुशल और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कृषि और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित उनके ऐतिहासिक निर्णय और जन कल्याणकारी नीतियां सदैव देशवासियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का योगदान राष्ट्र निर्माण में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। दिल्ली के मंत्री प्रवीर साहिब सिंह, आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उपप्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन मीडिया को बताया कि अब तक 9,76,000 किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज दिन भर हल्के बादल छाए रहने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार 21 जून को नीट UG परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने धूल और प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किए जा रहे नए डस्ट पोर्टल को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। दिल्ली नगर निगम ने शालीमार बाग में विश्व स्तरीय सभागार तथा सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए NBCC लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की

शुरुआत की और दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकीय बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई है। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है।

मधुरिमा की महफिल से जुड़ चुके हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर। वक्त हुआ है 8:11। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री और हम बात करते हैं इस महफिल में शास्त्रीय रागों और उन पर आधारित गीतों की।

0: दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मधुरमा के महफिल में राग विहाग की। राग विहाग भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही मधुर और लोकप्रिय राग है। ये श्रृंगार रस और मधुरता से परिपूर्ण राग कहलाता है और ये राग बिलावल थाट से उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें कल्याण थाट की भी झलक मिलती है। तो राग विहाग पर आधारित कुछ गीत अभी हम आपके सामने और रखेंगे, पेश करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पूजा सिंह ने एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप के ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान बनाया। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। भारत ने इंग्लैंड को पहले महिला T20 क्रिकेट में हराकर श्रृंखला में बढ़त बनाई। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और हॉकी अंडर 18 एशिया कप में कप्तान केतन की हैट्रिक, भारत ने कजाकिस्तान को हराया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई अंडर 20 से, जहां एथलीट्स ने कई पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। हांगकांग में पूजा सिंह ने एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप में के ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने इस जीत के साथ नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। 19 वर्षीय पूजा ने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1.93 मीटर की कूद लगाकर सहाना कुमारी का 14 साल पुराना 1.92 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं इससे पहले निपम ने 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपने अंतरराष्ट्रीय पदार्पण को यादगार बनाया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में स्वर्ण, वहीं साधना रवि ने महिलाओं के ट्रिपल जंप इवेंट में रजत पदक जीता।
1: पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में नितिन गुप्ता ने पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि चीनी ताइपे के शेंग किन लो दूसरे और जापान की चिहिरो ओबाता तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता में ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बधाई देते हुए कहा है कि नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में शानदार स्वर्ण के साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 18 साल के नितिन ने शनिवार को भी बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 किलोमीटर रेस वॉक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। प्रतियोगिता में उन्होंने भारत के 40 साल के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक और 2 बार ओलंपिक खेलों में भाग ले चुके संदीप कुमार को रोमांचक मुकाबले में हराया था। वहीं महिलाओं के ट्रिपल जंप इवेंट में साधना ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रजत पदक हासिल किया। चीन की यिंकिंग जी ने स्वर्ण, जबकि कजाकिस्तान की मारिया शिचपाचेवा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 2024 में दुबई में हुए एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में भारत 7 स्वर्ण सहित 29 पदकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: वहीं अभी ताजा जानकारी हमें मिली है महिला डिस्कस थ्रो में, अमनंत कंबोज ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। वहीं पुरुष डेक्थलॉन में राहुल ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। और नितिन ने हाल ही में हुए नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 किलोमीटर रेस वॉक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। प्रतियोगिता में उन्होंने भारत के 40 वर्षीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर और 2 बार के ओलंपियन संदीप कुमार को एक रोमांचक मुकाबले में हराया था। अब सीधे रुख कर लेते हैं न्यू चंडीगढ़ की ओर, जहां पर आईपीएल के क्वालिफायर 2 का रोमांचक मुकाबला जारी है। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने

0: ग्यारहवें ओवर में 3 विकेट पर 109 रन बना लिए हैं। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। यशस्वी जायसवाल इस मैच में 1 रन पर आउट हुए। ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर कगिसो रवाडा का शिकार बने। वहीं रविंद्र जडेजा 34 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं। रियान पराग कप्तान राजस्थान के, उन्होंने 6 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के लगाकर 11 रन बनाए और वैभव सूर्यवंशी 26 गेंद पर 47 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद है। अब बात महिला क्रिकेट की कर लेते हैं। भारत ने इंग्लैंड को पहले महिला T20 क्रिकेट में 38 रन से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। आइए सुनते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: भारत की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। कप्तान स्मृति मंधाना पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गईं। इसके बाद शेफाली वर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर लॉरेन बेल का शिकार बनी। यस्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिग्ज ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 126 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। भाटिया ने 54 रन और जेमिमा ने ताबड़तोड़ 69 रन की पारी खेली। इसके बाद भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते रहे, लेकिन दीप्ति शर्मा ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने 13 गेंद पर 22 रनों का अहम योगदान दिया। भारत ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट पर 188 रन बनाए। लॉरेन बेल ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड को 18 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लगा। सोफिया 16 रन बनाकर क्रांति गौड़ का शिकार बनी। क्रांति ने एलिस कैप्सी के रूप में भारत को दूसरी सफलता दिलाई। 2 विकेट जल्दी खोने के बाद हीदर नाइट और एमी जोन्स ने इंग्लैंड की पारी को संभाला। अंग्रेज टीम को 101 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। एमी ने 67 रन और नाइट ने 21 रन बनाए। एमी के आउट होते ही इंग्लैंड की पारी बिखर गई और पूरी टीम 150 रन पर सिमट गई। नंदनी शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट, क्रांति ने 2, श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने 1-1 विकेट लिए। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैट।
0: तो विश्व कप से पहले भारतीय टीम अपना टीम कॉम्बिनेशन को सही करना चाहेगी और पहले मुकाबले में भारत ने अच्छा प्रदर्शन कर अच्छा खेल भी दिखाया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की। फ्रेंच ओपन टेनिस में उलटफेर का दौर जारी है। पुरुष सिंगल्स में राफेल खोलिंगन ने बेन शेल्टन को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं यानिक सिनर भी जुआन मैनुअल सेरुंडोलो से हारकर बाहर हो गए। आइए जानते हैं खिलाड़ियों के रोमांचक प्रदर्शन के बारे में।
2: राफेल कोलिग्नन ने बेन शेल्टन को सीधे सेटों में 6-4, 7-5, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली। कोलिग्नन की इस जीत के साथ टॉप हाफ ड्रॉ में अब सिर्फ एक टॉप 8 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ही शेष है। 2 घंटे 3 मिनट की इस जीत में कोलिग्नन ने 49 में से 43 फर्स्ट सर्व प्वाइंट हासिल किए और उन्हें ब्रेक प्वाइंट का सामना नहीं करना पड़ा। दुनिया के 62वें नंबर के खिलाड़ी राफेल कोलिग्नन पिछले 13 सालों से पहले ऐसे बेल्जियन खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने किसी बड़े टूर्नामेंट में टॉप 5 सीड खिलाड़ी को हराया है। इससे पहले ये कारनामा 13 साल पहले कोच डॉर्सिस ने विंबलडन में राफेल नडाल को हराकर किया था। पिछले साल सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेविस कप मुकाबले में भी राफेल कोलिग्नन ने बड़ा उलटफेर किया था जब उन्होंने एलेक्स डी मिनोर को हरा दिया था। ये उनकी दूसरी बार किसी टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ जीत थी। कोलिग्नन का अगला मुकाबला इटली के माटेओ अर्नाल्डी से होगा जिन्होंने 2021 में फाइनल में पहुंचने वाले स्टेफानोस सिटसिपास को 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 से हराया। दूसरे मुकाबलों में ऑगर अलियासिमे ने अर्जेंटीना के रोमन एंड्रेस बुरुचागा को 4-6, 6-0, 7-5, 6-1 से हराया और कोबोली ने वू यिबिंग को 6-4, 6-4, 6-4 से मात दी। 2021 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले माटेओ बेरेटिनी ने 22वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी आर्थर रिंडरक्नेच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। अमेरिका के खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशिमा ने फ्रांस के लुका वैन एश को 6-7, 6-4, 5-7, 6-1, 6-3 से हराते हुए अगले दौर में जगह बनाई। वहीं कल हुए एक और बड़े उलटफेर में 56वीं रैंकिंग पर काबिज जुआन मैनुअल सेरुंडोलो से यानिक सिनर को 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 से हार का सामना करना पड़ा। फरवरी से सिनर ने लगातार 30 मैचों में जीत दर्ज की थी और उन्हें इस प्रतियोगिता को जीतने वाले खिलाड़ियों में प्रबल दावेदार माना जा रहा था। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: भारतीय टेनिस प्रशंसकों की निगाहें आज

0: आया। सेमीफाइनल में कल भारतीय जोड़ी का सामना दक्षिण कोरिया के एस जे सियो और डब्ल्यू एच किम से होगा। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की विश्व नंबर 4 जोड़ी चेन तांग जी और तोह ई वेई से वॉकओवर मिलने पर अगले दौर में प्रवेश किया। तोह ई वेई के घुटने में चोट लगने के कारण मलेशियाई जोड़ी को मैच के बीच से ही हटना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन फैंस को अनुभवी पीवी सिंधु और शानदार फॉर्म में चल रहे लक्ष्य से भी उम्मीदें थी, लेकिन दोनों खिलाड़ी अपने अपने मुकाबले हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अब रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया। कप्तान केतन कुशवाहा की हैट्रिक की मदद से भारतीय टीम ने पहले पूल ए के मुकाबले में कल कजाकिस्तान को 13-0 से मात दी।
1: कप्तान केतन कुशवाहा ने 3 गोल करके भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, जबकि प्रहलाद राजभर, आशीष तानीपूर्ति, अंश बहुता और शाहरुख अली ने 2-2 गोल किए। भारत ने मैच की शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा। दूसरी ओर कजाकिस्तान की टीम लगातार दबाव में नजर आई। भारत के लिए शाहरुख अली ने 12वें मिनट में सर्कल के अंदर से बेहतरीन गोल किया। इसके सिर्फ 2 मिनट बाद प्रहलाद राजभर ने एक और गोल करके भारत के बढ़त को 2 गुना कर दिया। पहले क्वार्टर के खत्म होने तक भारतीय टीम ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी। दूसरे क्वार्टर में भी गोल होते रहे। कैप्टन कुशवाहा ने 18वें मिनट में गोल किया, जबकि गाजी खान ने 20वें मिनट में 4था गोल करके बढ़त में इजाफा किया। शाहरुख ने शानदार फिनिश के साथ अपने 2 गोल पूरे किए और पूर्ति ने 30वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। इसे भारत ने हाफ टाइम तक 6-0 की बड़ी बढ़त बना ली थी। तीसरे क्वार्टर में भारत के 5 में से 4 गोल पेनाल्टी कॉर्नर से आए। बहुता और पूर्ति ने 2 गोल किए। क्वार्टर के आखिरी मिनट में कुशवाहा ने एक पेनाल्टी कॉर्नर सहित 2 गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। भारत ने तीसरा क्वार्टर 11-0 की बढ़त के साथ खत्म किया। भारतीय टीम ने आखिरी क्वार्टर में भी दबाव बनाए रखा और शानदार जीत दर्ज की। आकाशदीप ने 51वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। भारत का अगला मैच 31 मई को मेजबान जापान से होगा, जहां टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम के दानांग में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को बधाई दी है और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में पहलवानों के शानदार प्रदर्शन और उनके खेल कौशल की सराहना की। श्री मोदी ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। श्री रिजिजू ने भारतीय कुश्ती टीम की शानदार सफलता पर खुशी जताते हुए इसे देश के खेल जगत के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बताया। प्रतियोगिता के पुरुषों की फ्री स्टाइल और महिलाओं की कुश्ती टीमों ने टीम में खिताब जीते। पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने 9 पदक हासिल किए, जिनमें 4 स्वर्ण पदक शामिल हैं। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया उस युवा शतरंज सितारे के बारे में बात करने की, जिन्होंने अपनी सोच, साहस और अद्भुत शतरंज खेल से पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। डी गुकेश। आज ही के दिन जन्मे तमिलनाडु की धरती से निकलकर विश्व मंच तक पहुंचने वाले गुकेश ने यह साबित कर दिया कि अपने सपने उम्र नहीं हौसलों से पूरे होते हैं। उन्होंने कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया और फिर अपने शानदार खेल, शांत स्वभाव और अद्भुत रणनीति से दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को मात दी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने भारत का तिरंगा गर्व से ऊंचा लहराया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। आज उनके जन्मदिन पर हम यही कामना करते हैं कि वे आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयां छुएं, नए कीर्तिमान स्थापित करें और देश का नाम रोशन करते रहें। स्पोर्ट्स कैन की टीम की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्वालिफायर 2 के मुकाबले की ओर, जहां राजस्थान रॉयल्स ने 13वें ओवर में 5 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी 49 रन बनाकर टीम को अकेले अपने दम पर संभाल रहे हैं। वहीं जोफ्रा आर्चर 7 रन बनाकर आउट हो गए हैं। मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट और कगिसो रबाडा ने भी 1 विकेट लिया है। जशन होल्डर 2 विकेट लेकर 11 रन दिया है उन्होंने 3 ओवर में। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail पर हमें भेज सकते हैं।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
4: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के

व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत

बात नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने के निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्या की बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 47 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। अमरीका और ईरान ने मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने और हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए 60 दिवसीय अस्थायी समझौता ज्ञापन की समीक्षा की। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 1.5% की गिरावट और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि कांगो गणराज्य में इबोला के 906 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें 223 लोगों की मौत हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। कांगो में इबोला के बुंदीबोग्यो स्ट्रेन का संक्रमण जारी है। युगांडा में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कांगो में इबोला के 125 मामलों की पुष्टि हुई है। युगांडा में भी इबोला के 7 मामलों की पुष्टि हुई है, हालांकि सामुदायिक संक्रमण की खबर नहीं है। पूर्वी कांगो में इबोला संक्रमण 2 महीने पहले शुरू हुआ था। बुंदीबुग्यो स्ट्रेन के लिए कोई अनुमोदित टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ लंबे समय से जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। राज्य सरकार ने एक सप्ताह में ही सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध करा दी है। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग क्लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि भारतीय व्यापार दल ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भी भारत आने की उम्मीद है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु ने महत्वाकांक्षी CEPA समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष राजनयिक वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों पक्ष मौजूदा युद्ध विराम बढ़ाने और हुर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने के लिए 60 दिन के अस्थायी समझौता ज्ञापन की समीक्षा कर रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने पुष्टि की है कि वार्ताकार प्रारंभिक समझौते के बहुत करीब हैं, हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम स्वीकृति अभी बाकी है। एक रिपोर्ट।
2: ताज़ा परिस्थितियों के मद्देनजर

0: कड़ी सहयोग परिषद के देश तेजी से कदम उठा रहे हैं। इन देशों के लिए युद्ध विराम का टूटना केवल एक कूटनीतिक झटका नहीं है बल्कि अस्तित्व का संकट है। कतर ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री नियमों को लेकर अंतिम गतिरोध को सुलझाने के लिए ईरान में विशेष मध्यस्थता दल भेजे हैं। कतर एक संरचित एस्क्रो व्यवस्था स्थापित करने पर भी काम कर रहा है ताकि ईरान को जारी किए जाने वाला धन केवल मानवीय सहायता से जुड़े कार्यों में हो सके। एक और जटिलता लेबनानी पहलू में निहित है। ईरान ने दबाव डाला है कि ये समझौता ज्ञापन सभी क्षेत्रीय मोर्चों को शामिल करे, लेकिन दक्षिणी लेबनान में इसराइल के निरंतर सैन्य अभियान और विस्थापन आदेशों से एक महत्वपूर्ण विसंगति उत्पन्न होती है। वर्तमान में तैयार किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार लेबनान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 1.5% की गिरावट आई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 1.7% गिरकर $92.14 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार के अनुसार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी 1.4% गिरकर $87.64 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कैरोस हर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की आशा है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स और ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने मलेशिया के कांग खई शिंग और अरुण ताई को हराया। वहीं भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ने चेन तांग जी और तो ई वे की मलेशियाई जोड़ी से वॉकओवर मिलने पर अगले दौर में प्रवेश किया। तो ई वे के घुटने में चोट लगने के कारण मलेशियाई जोड़ी को मैच के बीच से ही हटना पड़ा। कैलिफोर्निया के 14 वर्षीय भारतीय मूल के अमरीकी छात्र शे पारिख ने प्रतिष्ठित स्क्रिप्स राष्ट्रीय स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है। उन्होंने 90 सेकंड में 35 में से 32 शब्दों की सही स्पेलिंग बताकर ये खिताब अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इबोला के बढ़ते मामलों के बीच भारत ने अफ्रीका को चिकित्सा सामग्री की पहली खेप भेजी। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। अमेरिका और ईरान ने मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने और हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए 60 दिवसीय अस्थायी समझौता ज्ञापन की समीक्षा की। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 1.5% की गिरावट और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani. I am Navanita Adhikari with the World News. The headlines. India sends first tranche of medical supplies to Africa amid surging Ebola cases. Home Minister Amit Shah announces major shift in border

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। प्यार भरा नमस्कार मेरा स्वीकार करे। वक्त हो गया है 10:31 और 7 सेकेंड। तो चलिए आज के हर श्रृंगार को शुरू करते हैं कभी कभी फिल्म के गीत के साथ। टाइटल ट्रैक है लता जी और मुकेश की आवाज में। एक बार फिर से आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड और आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार।

जी हाँ, होता तो यही है कि कभी कभी हमारे दिल में भी ख्याल आता है कि सामने वाला हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन फिर यही कभी कभी पलट भी जाता है कि मोहब्बत है भी या नहीं है। और फिर बात निकलती है मुलाकात की। आरजू थी कि सिर्फ एक बार मुलाकात हो तुमसे। अब तो हर रोज बस इसी मुलाकात की चाहत रहती है। मोहम्मद रफी की आवाज होगी संगम फिल्म से गीत।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आओ फिर से अजनबी बनकर मिले हम, आओ फिर से अजनबी बनकर मिले हम। तुम मेरा हाल पूछो, मैं तुम्हारा हाल पूछूं। मेरी जुल्फों की छांव मिले तो इनमें पूरी शाम गुजार दूं, पूरी उम्र का सफर उस एक पल में गुजार दूं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज, आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार। चिराग फिल्म से लता जी की आवाज आपका इंतजार कर रही है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
1: 10:50 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार, और ये आवाज थी अमिताभ बच्चन की, साथ दिया इनका लता जी ने, और गीत है फिल्म सिलसिला से।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

ये है आखिरी पड़ाव हर श्रृंगार का। जो दोस्तों दिल के हमारे बेहद करीब होते हैं ना, वो अक्सर समझ नहीं पाते कि वो हमारे लिए कितने खास होते हैं। जैसे खास है हमारा अगला गीत। अगला गीत है कश्मीर की कली फिल्म से, आवाज होगी आशा जी की। 1964 में ये फिल्म आई थी, संगीत ओपी नैयर का था। लेकिन जो गीत मैं आपको सुनाऊंगी उसके बारे में खास पता क्या है, वो ये है कि जब इस फिल्म का ऑडियो एल्बम रिलीज हुआ था तब इस गीत को बेहद लोकप्रिय माना गया। ऑडियो एल्बम की बात कर रही हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, ऑन स्क्रीन ये फिल्म में गीत नहीं था। जी हाँ, जब सिनेमा घर में रिलीज हुई थी कश्मीर की कली 1964 में, तो एडिटिंग के दौरान इस गीत को काट दिया गया था। इसीलिए आपको ये ऑडियो में सुनाई जरूर देता है लेकिन फिल्म में दिखाई नहीं देता। फिलहाल इस गीत का आप आनंद लीजिए आशा जी की आवाज में। गीत के बाद आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। मैं अर्पना आपके साथ रहूंगी 11:10 पर, लेकर हाजिर गीत मेरे मनमीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे। और

0: बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि एआई की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari Srivastav. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। आपने ट्यून इन किया हुआ है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये।

तो चलिए अब इसके बाद बातें करते हैं गीत मेरे मनमीत में और क्या क्या है खास जो होने वाला है। तो पहले दो गीतों के बारे में आपको बता दूं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज होगी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का होगा। फिल्म का नाम है साजन। और इसके बाद जो गीत आप सुनेंगे उसके बारे में भी आपको बता दूं, जी हाँ, संगीत है एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, आवाज होगी मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है सूरज और चंदा। तो बैक टू बैक इन दो फिल्मों से आप गीत सुनिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11:11:40 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। आने वाले दो गीत आपको पता है किसके हैं? जी हाँ, पहला गीत है जावेद अख्तर का लिखा, आशा जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में होगा। संगीत आजी बर्मन का है, फिल्म का नाम है सागर। और इसके बाद आप सुनेंगे मोहम्मद रफी, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में गीत, फिल्म का नाम है आहुति। और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, गीत आनंद बख्शी के लिखे हुए थे। इन दो गीतों का आनंद आप लीजिए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

101.1 MHz पर गीत मेरे मन मीत, और ये है लता जी की आवाज, साथ होगा किशोर कुमार का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

जी हाँ दोस्तों, ये ना सिर्फ हमारी है, ना सिर्फ आपकी है, ये है हम सब की अपनी आकाशवाणी। और आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर FM गोल्ड, गीत मेरे मनमीत। और आज आपके संग है अर्पना। अगला गीत आप सुनेंगे आरडी बर्मन का संगीत पथ, गुलशन बावरा का लिखा हुआ ये गीत है, फिल्म का नाम है पुकार। और इसके बाद जो गीत होगा वो संगीत पथ है राजेश रोशन का, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज होगी, फिल्म का नाम है बातों बातों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, गीत मेरे मनमीत।

जी हाँ, सुनते कहते बातों बातों में प्यार तो हो ही जाएगा जब ऐसे ऐसे मधुर गीत चलेंगे। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 11:55 और 35 सेकंड हो चुके हैं। अगले गीत के बारे में आपको बता दूं, लता जी की आवाज में होगा ये गीत। SD बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है जिद्दी। 1964 में ये फिल्म आई थी और इसी गीत के साथ अर्पणा चाहेगी इजाजत। गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दे इजाजत। हंसते मुस्कुराते यूं ही हमेशा रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा, नमस्कार। लीजिए इस गीत का आनंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत फंड जारी करने और उसके उपयोग की समीक्षा को लेकर बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा 3.0 को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से SSA, PM पोषण, उल्लास, PM श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वयन के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी तथा इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थित में भारत में सबस्ट्रेट निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने कल नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड इंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी श्रीवास्तव. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
2: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars, and modern fencing, to establish an unbreachable, leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police, and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added,

0: वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

खट्टा मीठा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, वरना इस दुनिया में हर किसी को दिल से चाहने वाले कहाँ नसीब होते हैं। कुछ पल जो तुम्हारे साथ गुजारे, वही आज भी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे लगते हैं। वक्त गुजर गया, मौसम बदल गए, मगर उस मोहब्बत की खुशबू अब भी दिल में वैसी ही बसी है।

हम दोनों फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। आज मोहब्बत अपने सबसे हसीन अंदाज में एक नई दास्तान लिखने चली है। दो अजनबी दिलों की मुलाकात से शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे ख्वाब बनकर आंखों में उतरती गई। इसमें चाहत की मासूमियत है, इंतजार की बेचैनी है और वो एहसास भी, जो जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि महसूस करना सिखा देता है।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये नज्म सुनी। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में अमीर मीनाई ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे चांद बादलों से निकलकर धीरे धीरे अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। हर पल चेहरे की एक नई मासूमियत सामने आती है और देखने वाला बस उसी हुस्न में खोता चला जाता है। कुछ खूबसूरती शोर नहीं करती, वो बस आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती जाती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:30 और ठीक 38 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिकंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और बप्पी लाहिड़ी की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। प्यार कभी कम मत करना, चाहे जिंदगी कितने ही इम्तिहान ले ले। कभी रूट जाना, कभी शिकायत कर लेना, कभी खामोश भी हो जाना, मगर दिल से मोहब्बत कम मत होने देना। रिश्ते वही खूबसूरत लगते हैं जहां नाराजगी भी हो, तकरार भी हो, लेकिन साथ छोड़ देने का ख्याल कभी ना हो। सितम सह लेंगे, दर्द भी सह लेंगे, बस इतना वादा रहे कि प्यार हमेशा पहले जैसा बना रहे।

हाथ की सफाई फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। जब भी जिंदगी थका दे हम एक दूसरे का सुकून बने, जब भी आंखें नम हो एक दूसरे की मुस्कान बन जाएं, नाराजगी आए तो पल भर की हो मगर मोहब्बत उम्र भर की हो, ये वादा रहा।

और कौन फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। अमित खन्ना ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। पहली बार जब उसने मेरा हाथ थामा तो जैसे वक्त एक पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में हल्की सी हया थी, होठों पर धीमी सी मुस्कान। उस एक पल में जैसे सारी दुनिया बदल गई। दिल की धड़कनों ने कोई नया गीत छेड़ दिया। हवा भी कुछ ज्यादा ही सुरीली लगने लगी। उसके हाथ की गर्माहट अब भी मेरी हथेलियों में बसी है और वो धीमी सी आवाज आज भी कानों में वैसे ही गूंजती है। कुछ लम्हे छोटे होते हैं मगर पूरी जिंदगी बन जाते हैं।

0: कलाकार फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वक्त हुआ है 12:57 और ठीक 36 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेगी और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सिक्किम में मुख्य सचिव R. तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग क्लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग क्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
2: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable, leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure seed availability to farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi yesterday, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ।

आंखें फिल्म का गाना आपने सुना। सुमन कल्याणपुर की आवाज में गुलशन बावरा ने इसे लिखा और संगीत दिया दत्ता एम ने। नजर का मिलकर झुक जाना मोहब्बत की निशानी है। दिलों में कुछ अनकहा सा हो तो खामोशी भी कहानी है। लब चाहे कुछ ना कह पाए, आंखें सब कह जाती हैं। एक मासूम सी झिझक में ही चाहत की रवानी है।

अलिफ लैला फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और संगीत दिया श्याम सुंदर ने। क्या रात सुहानी है, चांदनी भी मुस्कुराई है, तेरी यादों की ठंडी हवा दिल को छू कर आई है, खामोश फिजाओं में भी एक मीठी सी कहानी है, लगता है आज फिर मोहब्बत ने दस्तक लगाई है।

आन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। आज मेरे मन में जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है, हर तरफ एक मीठी सी धुन बिखरी हुई महसूस होती है। बिना किसी वजह के दिल खुश है, हवा भी सुरीली लग रही है और शाम में एक अलग ही अपनापन उतर आया है। ऐसा लगता है जैसे किसी की याद चुपके से आकर मन के आंगन में बैठ गई हो और उसकी मौजूदगी से हर एहसास मधुर हो उठा हो।

भास्कर की आवाज में हजरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मेरा नादान बालमा जी की बात कहाँ समझ पाता है, मेरी आंखों की खामोशी, दिल की हल्की सी बेचैनी और छुपे हुए एहसास भी उससे अनकहे ही रह जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने मन की बात कह नहीं पाती और वो भोलेपन में मुस्कुराकर हर बात टाल देता है। फिर भी उसकी यही सादगी दिल को अच्छी लगती है, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत शब्दों से नहीं मासूम अदाओं से महसूस होती है।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया वसंत देसाई ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और

वक्त हुआ है 1:33 और ठीक 32 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहानी। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

सुना लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। शायद मोहब्बत जितनी गहरी होती है उसे खो देने का एहसास भी उतना ही गहरा हो जाता है। हर खुशी के साथ एक छोटी सी बेचैनी जुड़ जाती है कि ये खूबसूरत साथ कहीं वक्त की नजर न लग जाए। फिर भी दिल यही चाहता है कि ये रिश्ता यूं ही बना रहे, जैसे किसी मधुर गीत की धुन जो कभी खत्म नहीं होती।

हरियाली और रास्ता फिल्म से आपने गाना सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, मगर हर रास्ता फिर तेरी ही तरफ मुड़ जाता है। जितना तुझे भूलने की कोशिश करता हूं, उतना ही तेरा एहसास और गहरा हो जाता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि खामोशी में और भी करीब आ जाती हैं। दिल समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मोहब्बत का असर इतनी आसानी से कहाँ मिटता है।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं

मदारी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचान ही लिया है। तेरी बातों की मिठास, तेरी निगाहों का असर और तेरी मुस्कुराहट का जादू अब दिल से छुपा नहीं है। पहले जो एहसास सिर्फ एक मासूम आकर्षण लगता था, अब समझ आया कि वो धीरे धीरे मोहब्बत बन गया था। तू चुपचाप दिल में उतर गया और मुझे खबर भी ना हुई।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना लता और मुकेश की आवाज में। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 51 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नागिन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ।

हसीना मान जाएगी फिल्म से आपने गाना सुना, रफ़ी की आवाज़ में, रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसे लिखा अख्तर रोमानी ने और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। अलग अलग एहसास और जज्बात ही इंसानी जिंदगी में रंग भरते हैं। कभी दिल खुशी से झूम उठता है तो कभी किसी अनकहे दर्द की खामोशी भीतर उतर जाती है। मोहब्बत, इंतजार, उम्मीद, तन्हाई, अपनापन, बिछड़ना, यही सब मिलकर इंसान को सिर्फ जिंदा नहीं रखते बल्कि उसे महसूस करना सिखाते हैं। जिंदगी दरअसल उन लम्हों का नाम है जहां हर एहसास दिल पर कोई नई दास्तान लिख जाता है।

0: दाग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। एक हल्की सी बेचैनी है, कुछ मीठे ख्वाब हैं और तेरी यादों की धीमी सी धड़कन भी। लब खामोश हैं मगर दिल आज भी तेरे नाम की दास्तान दोहराना चाहता है। अगर तू पास बैठे तो शायद ये दिल अपने सारे राज मुस्कुरा कर खोल दे।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

सच्चा झूठा फिल्म का आपने गाना सुना, रफ़ी और लता की आवाज़ में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। तुम ही तुम मुझसे बातें करती हो तो दिल को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिल में भी कोई प्यार का इरादा छुपा है। तुम्हारी हर बात में एक अपनापन सा महसूस होता है, जैसे तुम सिर्फ बातें नहीं बल्कि अपने एहसास भी मेरे करीब ला रही हो। शायद यही वजह है कि अब तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी बातें दिल को पहले से ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं।

मेरे हमसफर फिल्म का गाना आपने सुना। लता और मुकेश की आवाज़ में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 49 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मेरे हुजूर फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। वो खुशी मिली है मुझको कि दिल खुशी से भर उठा है, बरसों से जिस एहसास का इंतज़ार था जैसे आज वो मेरे दामन में आकर ठहर गया हो। हर तरफ एक नई रोशनी, एक नया सुकून महसूस होता है। जी चाहता है कि ये पल यूं ही ठहर जाएं और इस खुशी की मिठास हमेशा दिल में बसी रहे।

दो बदन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने। दिल ने फिर वही पुरानी राहों पर उनकी आहट ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन इंतजार के सिवा कुछ हाथ ना लगा। यादें तो हर बार चली आती हैं बिना बुलाए बिना दस्तक दिए, बस जिनके लिए ये दिल धड़कता है वही जाने क्यों आने में देर कर देते हैं। कभी कभी लगता है कि उनकी याद ही उनका सबसे सच्चा पैगाम है, जो हर तन्हा पल में साथ निभाने चली आती हैं।

ये रात फिर ना आएगी। रफी और आशा की आवाज में आपने गीत सुना। अजीज कश्मीरी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। बिछड़ना अगर जरूरी है तो बिछड़ जाओ, मगर उम्मीद का एक दिया जलता रहने दो। दिल को ये तसल्ली रहे कि ये मुलाकात आखिरी नहीं है और किसी मोड़ पर फिर से राहें मिलेंगी। कभी किसी सुहानी शाम, किसी मुस्कुराते लम्हे में हम फिर आमने सामने होंगे और अधूरी बातें पूरी कर सकेंगे।

कोहरा फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: वक्त हुआ है 2:56 और ठीक 7 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ATA के पुनर्गठन या इसे हटाने के निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख

रात के 3:11 और 17 सेकंड हुए हैं। युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही लेकर आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, दिल जिसकी आवाज हम बहुत ज्यादा सुनते हैं और जो हमारे दिल के करीब होते हैं, वही अक्सर समझ नहीं पाते कि वो हमारे लिए कितने खास हैं। हम उनकी तस्वीर अपने दिल में बसाए रहते हैं और वो जैसे कुछ जानते ही नहीं। मिटा दी हमने जमाने से हर एक तस्वीर अपनी, मिटा दी हमने जमाने से हर एक तस्वीर अपनी, पर दिल में सिर्फ एक तेरी ही तस्वीर बाकी है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म माया से अभी आपने ये गीत सुना। मोहब्बत का कोई मौसम कोई मंजिल नहीं होती, मोहब्बत का कोई मौसम कोई मंजिल नहीं होती, ये वो दरिया है जिसका कोई साहिल नहीं होता। ना पूछो ये कहाँ कब और कैसे हो जाती है, ये वो सौदा है जो सोच समझ कर नहीं होता।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शक्ति से अभी आपने गीत सुना, जो छुपाए से ना छुपे वो अंदाज है मोहब्बत, जो छुपाए से ना छुपे वो अंदाज है मोहब्बत, जो सरेआम ना हो तो फिर कैसी वो मोहब्बत।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म ब्रह्मचारी से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत

कभी जो सपना था आज वो पा लिया है, कभी जो सपना था आज वो पा लिया है, तुम्हारी मोहब्बत को दिल में बसा लिया है। अब कोई तमन्ना नहीं इस दिल में बाकी, मैंने जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब सजा लिया है।

0: अभी आपने गीत सुना बिरजू उस्ताद फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। आइए अब अगला गीत सुनते हैं नाइट इन लंदन फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र

के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये केवल एक गीत नहीं बल्कि उम्र भर साथ में वफा और कभी ना मिटने वाली यादों का एक बेहद खूबसूरत वादा है, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप आए बहार आई फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में फिल्म बहारों के सपने से।

दोस्तों हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग क्लाइंग आज 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग क्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भी जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितवैयता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली

सुबह के 4:11 और 11 सेकंड हुए हैं और सुबह की इस ठंडी ठंडी हवा के साथ अरुणिमा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त तो उठ गए होंगे और अपने कर्म जो आज आपने करने हैं उन पर काम करने लग गए होंगे और करना भी चाहिए। इस दुनिया में रहना है तो पहचान बनानी होगी, ठहर कर नहीं लहरों से राह चुरा कर चलनी होगी। यहाँ बातों से नहीं कर्मों से सिक्का चलता है, किस्मत के भरोसे नहीं खुद की मेहनत से मुकद्दर बदलता है।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हाथी मेरे साथी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, इस दुनिया में हमें कई बार ना चाहते हुए भी दुनियादारी निभानी पड़ती है और मुस्कुराकर दुनिया के साथ चलना पड़ता है। आइए सुनते हैं दुनियादारी फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, मुस्कुराते हुए दुनियादारी तो निभानी ही पड़ेगी, और फूल और कांटे दोनों से ही दोस्ती करना सीखिए, यानी सुख और दुख दोनों में ही आप तालमेल बिठा सकें, ऐसा कुछ कीजिए। आइए सुनते हैं दुनिया झुकती है फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपके दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म जागृति से मोहम्मद रफी की आवाज में।

दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमें दुख की चिंता ज्यादा सताती है, जबकि ये निश्चित ही है कि दुख है तो सुख भी आएगा ही, और सुख है तो दुख भी आना लाजमी है। आइए सुनते हैं दोस्ती फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म कश्मीर की गली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध को त्याग कर प्यार करना सीखिए, फिर देखिए आपके जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। आइए सुनते हैं फूल और पत्थर फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जमीर से अभी आपने गीत सुना। मन की शक्ति जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, अगर आपका मन मजबूत है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना आसानी से कर सकते हैं। आइए सुनते हैं वाणी जयराम और साथियों की आवाज में फिल्म गुड्डी से ये गीत।

दोस्तों, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी मन की शक्ति को भी हमेशा बरकरार रखिए। और इसी के साथ ही अरुणिमा से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं की सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया जिला पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन गया के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कल म्यांमा के राष्ट्रपति की म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला AI सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह वाणिज्यिक पैमाने पर निगरानी, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स और ड्रोन आदि के लिए स्मार्ट विजन उपकरणों को शक्ति प्रदान करेगा। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह PSBA के सहयोग से विकसित किया गया है। PSBA देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पोर्टल www.unclaimedaassessedtsportal.in एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जो वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। और खेलों में, IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये भजन जो गाया है नंदिनी शरण ने।

दोस्तों, ये दुनिया रंग बिरंगी है और कौन अपना रंग कब बदल ले कुछ नहीं पता। और इस रंग बिरंगी पतंग यानी दुनिया को उड़ाने वाला कौन है इसका कुछ पता नहीं। आइए सुनते हैं पतंग फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

सुबह के समय पनघट के किनारे पर पानी भरने वाली गोपियों और राधा कृष्ण के नटखट और पवित्र प्रेम के माहौल को आप हूबहू अपनी आंखों के सामने ला सकते हैं इस गीत के माध्यम से जो गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं, मेला फिल्म से मुकेश की आवाज में।

शिकायत नहीं है तुझसे प्रभु, बस एक गुजारिश है। शिकायत नहीं है तुझसे प्रभु, बस एक गुजारिश है कि इस जलते हुए जहां पर रहम की एक बारिश हो। तू देख सके इंसानों के आंसू अपनी आंखों से, बस इतनी सी इस टूटे दिल की ख्वाहिश है। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म बहार से ये गीत।